शुभ सवेरा, नमस्कार। मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का, सुबह सवेरे उठकर हमारे साथ चलने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज सोमवार है। विक्रम संवत 2083 के श्रावण मास की पांचवी तिथि और शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। इस समय 7:40 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं और श्रावण के पहले सोमवार की अनंत बधाइयां।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दें उससे पहले कुछ बातें आज के दिन की, इस महीने की। दोस्तों, श्रावण केवल पंचांग का एक महीना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का उत्सव है। ये वो समय है जब प्रकृति भी हरियाली की चूनर ओढ़ लेती है और मनुष्य का मन भी भक्ति, प्रेम और पवित्रता से भीग उठता है। वर्षा की रिमझिम फुहारों के बीच शिवालयों में गूंजता हर हर महादेव का उद्घोष इस वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। तो इस पवित्र श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सावन का पहला सोमवार है। श्रोताओं, श्रावण मास भारतीय जीवन परंपरा का वो मधुर अध्याय है जहां प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे का हाथ थामे चलते हुए दिखाई देते हैं। सावन की पहली वर्षा जब धरती का स्पर्श करती है तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती, हमारा मन भी सुवासित हो उठता है। वृक्षों पर नई हरियाली, नई कोपलें, नए पत्ते, खेतों में लहलहाती फसलें, आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघ और रिमझिम बरसती फुहारें मानो सृष्टि का नवजीवन बन जाती हैं। हम जानते ही हैं कि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और आग के पुष्प अर्पित कर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। सोमवार के व्रत, रुद्राभिषेक, शिव महिम्न स्त्रोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और अंतर मन की शांति का तलाश करते हैं। तो श्रोताओं, सावन का जो महीना है वो हमें ये संदेश देता है कि जैसे बारिश धरती की धूल धोकर हमें नई ताजगी से भर देती है, वैसे ही श्रद्धा, संयम और सत्कर्म हमारे जीवन के विकारों को धोकर हमें भीतर से निर्मल बना देते हैं, साफ बना देते हैं। ये महीना केवल पूजा का नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सेवा, करुणा और आत्म अनुशासन का भी संदेश देता है। तो इसी संदेश के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास हम आज लेकर उपस्थित हैं आपके लिए। रोज की तरह सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि का प्रसारण होगा और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। वतन का राग कार्यक्रम होगा सुबह 8 बजे। इसमें आज हम चर्चा करेंगे पिंगली वेंकैया की। सुनो कहानी, ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुप्त धन। 9 बजे कला कल्लूरिणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे राम गोपाल बजाज की। हमारा विशेष कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 बजे। इसमें सुनिएगा डॉक्टर श्री राम परिहार का व्याख्यान नर्मदा अंचल की मूर्त और अमूर्त धरोहर। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 बजे आज़ाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे नित्यानंद साहा की। आज मैथिली चरण गुप्त जी की जयंती है तो शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम हम उन्हें समर्पित करेंगे। प्रसारण का समय रहेगा सुबह 11 बजे और 11:30 बजे सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे आज की पहली प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ,

हम जिस जगह रहते हैं उसकी बनावट और वहाँ की आवाजें हमारे मन और मस्तिष्क पर सीधा असर डालती हैं। ये सिर्फ शोर के कम ज्यादा होने की बात नहीं है, बल्कि यह उस वातावरण की बात है जिसमें हमारा दिमाग आराम करता है या फिर तनाव में आता है। शांत, गूंज रहित और कम आवाज वाले स्थानों में हमारे दिमाग में बनने वाली अल्फा और बीटा तरंगे बढ़ जाती हैं। ये तरंगे हमें शांत, संतुलित और एकाग्र अनुभव करवाती हैं। दूसरी ओर बहुत शोर वाले स्थानों में बीटा तरंगे बढ़ती हैं, जो हमारे अंदर तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ाती हैं। आपने गौर किया होगा, प्राचीन काल के पुराने मठ, मोटी दीवारों वाले आंगन या घिरे हुए घर प्राकृतिक रूप से दिमाग को आराम देने वाले होते थे। वहाँ बाहरी आवाजें कम पहुँचती थीं, जिससे मनुष्य का ध्यान धीरे धीरे भीतर की ओर जाता था। भारतीय घरों के पारंपरिक आंगन या चौक की बनावट भी इसी विज्ञान पर आधारित थी। हमारे आंगन में चारों ओर कमरे होने से हवा और रोशनी तो भरपूर ही मिलती थी, किंतु बाहरी शोर अंदर आते आते धीमा पड़ जाता था और ये जगह तनाव नहीं बढ़ाती थी, क्योंकि इसका ध्वनि वातावरण संतुलित रहता था। हमारी ये आंगन सिर्फ हमारी सांस्कृतिक परंपरा नहीं थे, बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक प्राकृतिक हीलिंग स्पेस भी थे।

आइए हम भी प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति को अनुभव करें और अपने अंदर खोजें, स्वयं को समझें, स्वयं को जानें और जीवन के कुछ सकारात्मक संकल्प लें।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद जैसे अक्षय निधि हैं, यही अक्षय निधि डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी के स्वर में आपके लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 180 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप।
2: युवो रजांसी सुयमासो अश्वा रथो यद्वाम परियणांसी दीयत हिरण्यया वाम पवयः पुरुषाय मन्ध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे। हे अश्विनी कुमारो, जिस समय आप दोनों का रथ समुद्र में अथवा अंतरिक्ष में संचरित होता है, उस समय आपके रथ को चलाने वाले अश्व संज्ञक गति साधन भी अंतरिक्ष मार्ग में नियमानुसार गति करते हैं। आपके रथ के स्वर्णिम दीप्ति वाले पहिए भी मेघमंडल के जल से भीगने लगते हैं। आप दोनों मधुर सोमरस का पान करके प्रभात वेला में ही इकट्ठे होकर जाते हैं। युवमत्य यस्याव नक्षथो यद्वी पत्मनो नर्यस्य प्रयज्योह स्वसा यद्वाम विश्वगूर्ति भराति वाजा येट्टे मधुपा विशेच। सर्वस्तुत्य तथा मधुर सोमपान करता अश्विनी कुमारो, आप दोनों निरंतर गतिशील आकाश में संचरण करने वाले मनुष्यों के कल्याणकारी पूजनीय सूर्य देव के आगमन से पहले ही आते हैं। तब बहिन उषा आपका सहयोग करती हैं और यज्ञ में यजमान बल तथा अन्न बढ़ाने के लिए आप दोनों की ही प्रशंसा करते हैं। युवम पय उस्री याया मधत्तम पक्व मामा यामव पूर्व्यम गोह अंतर यद्विनिनो वाम्रितप्सु हुआरो न शुचिर यजते हविष्मान। हे सत्यपालक अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने गौओं में पोषक दुग्ध उत्पन्न किया है तथा अप्रसूता गौओं में भी पौष्टिक दूध की संभावनाएं उत्पन्न की हैं। वन क्षेत्र में सांप के समान ही जागरूक रहकर पवित्र हविष्यान्न साथ रखने वाले यजमान आप दोनों के निमित्त दुग्ध द्वारा यज्ञ करते हैं। युवम ह घर्मम मधुमंत मत्रयेपो न क्षोदो वृणीतमेशे तद्वाम नरावश्विना पश्वइष्टि रथ्येव चक्रा प्रतियन्ति मध्वः। हे नेतृत्व संपन्न अश्विनी कुमारो, आप दोनों ने अत्रि ऋषि को सुख देने के लिए ही गर्मी को जल के समान शीतल और माधुर्य युक्त सुखकारी बनाया, तब आपके समीप रथ के पहियों के समान यज्ञ तथा सोम रस पहुंचे। आवाम दानाय ववृतीय दस्रा गोरोहेण तौग्रयो न जिव्रिहि अपहक्षोणी सचते माहिना वाम जूर्णो वाम क्षुरम हसो यजत्रा। हे शत्रु संहारक पूजनीय अश्विनी कुमारो, विजय का आकांक्षी तुग्र का पुत्र जिस प्रकार प्रशंसक वाणियों द्वारा आप दोनों से अनुदान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ, उसी प्रकार हम भी आपके सहयोग को पाने के लिए प्रयत्नशील हों। आपकी महिमा संपूर्ण द्यावा पृथ्वी में संव्याप्त है। हम अतिवृद्ध होते हुए भी आप दोनों की कृपा से जरा रूपी कष्ट से मुक्त होकर दीर्घ जीवन प्राप्त करें, इसीलिए आपकी स्तुति करते हैं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 180 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुति डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी की थी। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, हरियाली, वर्षा और भक्ति का पावन संगम लेकर आता है श्रावण मास। आज सावन का पहला सोमवार है, भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन। मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव का उद्घोष और श्रद्धा से उमड़ता जनसैलाब इस पावन पर्व की महिमा को और भी दिव्य बना देता है। तो आइए भक्ति संगीत के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें भगवान शंकर की आराधना से।

श्रोताओं, सावन की हर बूंद मानो भगवान शिव का नाम स्मरण कराती है। सावन का हर दिन भक्ति का संदेश देता है और सावन के पहले सोमवार से वो आस्था, वो भक्ति और भी गहरी हो जाती है।

मनुष्य को ऐसे गलत संस्कार दिए गए हैं कि वो ना तो जी भरकर कभी खुश हो पाता है, न कभी जी भरकर रो ही पाता है। एक संकोच उसे रोके रहता है। कुल मिलाकर मनुष्य जी भरकर जी ही नहीं पाता। किसी पहलू से, किसी आयाम में जी भरकर कोई काम उसने किया ही नहीं। सब कुछ अधूरा अधूरा है और ये अधूरापन उसे भीतर से खाली करता जाता है, असंतुष्ट करता जाता है। इस अधूरेपन को भरने का प्रयास है वंदना।

जीवन परमात्मा है, वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में, पशुओं में, मनुष्यों में, वो जो अनंत फैला हुआ है, परमात्मा उसी का नाम है। कहीं सोया है, कहीं जागा है, जहां जाग गया है वहां बुद्धत्व है, वहां प्रतिपल आनंद ही आनंद है।

श्रोताओं, अक्सर मनुष्य जीवन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन सच ये है कि जीवन समझने की बात है ही नहीं। जीवन तो जीने की बात है, स्वाद लेने की बात है। समझ का अर्थ होता है कि हम बिना स्वाद लिए समझने की चेष्टा में लगे हैं, हम बिना जिए जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोच कर देखें कि बिना भोजन किए कभी भूख मिट सकती है? समझने से कब किसकी भूख मिटी है? और भूख मिट जाए तो समझने की चिंता कौन करता है? इसलिए जीवन समझने का विषय नहीं है, जीवन जीने का विषय है, स्वाद लेने का विषय है। उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि जीवन क्या है, और ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं हो पाता।

श्रोताओं, इंसान ने एक बड़ी बुनियादी भूल सीख ली है और वो है जीवन को समझ के द्वारा भरने की। जीवन कभी समझ से भर ही नहीं सकता, इससे तो धोखा पैदा होगा। आप जीवन में प्रेम करें तो प्रेम को जानेंगे, प्रार्थना करें तो प्रार्थना को जानेंगे। आप अहंकार की सीढ़ियां थोड़ी उतरेंगे तो निरहंकार को जानेंगे। हम डूबेंगे जीवन में तभी परमात्मा का थोड़ा सा बोध पैदा होगा। इसीलिए कहा है कि जीवन समझने का विषय नहीं, जीने का विषय है।

तो श्रोताओं, इसके साथ ही संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।
3: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

राष्ट्रध्वज तिरंगा हमारी पहचान है। ये केवल तीन रंगों का संगम नहीं, ये भारत की आत्मा का उजास है। ये केवल ध्वज नहीं, हम भारतीयों की भावनाओं का स्पंदन है। इसके हर रंग में युग बोलता है, इसकी हर लहर में इतिहास डोलता है। हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है, जिसकी छाया में विभिन्न जाति धर्म और भाषा के बावजूद हम सब भारतीय हो जाते हैं। हमारे इसी राष्ट्रध्वज की कल्पना करने वाले, उसे आकार देने वाले महान देशभक्त थे पिंगली वेंकैया। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, कृषि विज्ञानी, भू विज्ञानी और अनेक भाषाओं के जानकार भी थे। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त सन 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास स्थित भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमंत रायुडू और माताजी का नाम वेंकट रत्नम्मा था। पिंगली वेंकैया की बुद्धि की प्रखरता बचपन से ही अद्वितीय थी। उनकी आरंभिक शिक्षा हिंदू हाई स्कूल मछलीपट्टनम में हुई। इसके बाद शिक्षा के लिए वो कोलंबो चले गए, जहां उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई की तथा परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलंबो के सिटी कॉलेज में उन्होंने राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। शिक्षा में उनकी गहरी रुचि थी, यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से भू विज्ञान में भी डिप्लोमा प्राप्त किया तथा एक भू वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। प्रकृति, मिट्टी, चट्टानों और फसलों में उनकी गहरी रुचि थी और यही रुचि उनके जीवन के विभिन्न वैज्ञानिक पड़ावों का आधार बनी। उनके भीतर जितनी ज्ञान की प्यास थी, उससे कहीं अधिक देश प्रेम की गहरी भावना थी। यही कारण है कि मात्र 19 वर्ष की आयु में वो भारतीय सेना में शामिल हो गए थे।

ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने के बाद पिंगली वेंकैया के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में चल रहे द्वितीय बोअर युद्ध के मोर्चे पर सेवा के लिए भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका की उस तपती रणभूमि में इतिहास ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगम रचा। यहीं उनकी भेंट युवा बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से हुई, जो वहां रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी के विचारों ने पिंगली वेंकैया के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। बोअर युद्ध के मैदान में एक टीस थी जो उनके स्वाभिमानी हृदय को बेचैन कर देती थी। जब भी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को सलामी देने के लिए विवश किया जाता, उनका मन विद्रोह कर उठता। वो स्वयं से प्रश्न करते कि इतने विशाल और गौरवशाली भारत देश का अपना कोई ध्वज क्यों नहीं है, जिसके नीचे पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा हो सके। और उनका यही विचार आगे चलकर राष्ट्रध्वज के निर्माण की अमर गाथा बन गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने रेलवे में गार्ड के रूप में नौकरी की, लेकिन राष्ट्र जागृति उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। उन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर लाहौर के प्रसिद्ध एंग्लो वैदिक कॉलेज में प्रवेश लिया तथा उर्दू, संस्कृत और जापानी भाषा का गहन अध्ययन किया। जापानी भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ देखने को मिली जब उन्होंने धारा प्रवाह जापानी भाषा में ऐतिहासिक भाषण दिया। सुनने वाले हैरान थे। लोग उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि आदरपूर्वक उन्हें जापान वेंकैया का नाम दे दिया। आगे चलकर उन्होंने मद्रास में प्लेग इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण लिया और वेल्लारी में प्लेग इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने आंध्र नेशनल कॉलेज मछलीपट्टनम में लंबे समय तक अध्यापन का कार्य भी किया तथा कृषि एवं भू विज्ञान के क्षेत्र में शोध किए। इस तरह कई भूमिकाओं में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनके लिए देश सर्वोपरि था। स्वदेशी आंदोलन हो, वंदे मातरम हो या होम रूल आंदोलन, वो पूरी निष्ठा से इसमें सक्रिय रहे। वो लगातार अधिवेशनों में शामिल होते रहते तथा अपने महत्वपूर्ण विचार रखा करते। वो देखते थे कि अधिवेशनों में भारत का कोई ध्वज नहीं फहराया जाता था। उन्हें लगता कि राष्ट्रध्वज किसी भी देश की साझी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक होता है। उनके मन में भारत के राष्ट्रध्वज के निर्माण की कल्पना जागने लगी और समय के साथ ये कल्पना एक संकल्प में बदल गई।

पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्र ध्वज को मुक्त गगन में लहराता हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने 5 साल तक 30 से भी अधिक स्वतंत्र देशों के राष्ट्र ध्वजों, उनके इतिहास, रंगों और संरचना का अध्ययन किया और एक पुस्तक भी प्रकाशित की, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें भारत के लिए संभावित 30 से भी अधिक ध्वज रूप प्रस्तुत किए गए थे। और तभी आया सन 1921 का साल। विजयवाड़ा में आयोजित अधिवेशन में वो गांधी जी से मिले और उनके समक्ष ध्वज प्रस्तुत किया। पिंगली वेंकैया का मूल ध्वज 2 रंगों का था। इसमें एक रंग लाल था, जो हिंदू समाज का प्रतीक था, और दूसरा रंग था हरा, जो मुस्लिम समाज का प्रतीक था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि अन्य सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीच में सफेद रंग भी जोड़ा जाए तथा इस सफेद रंग पर चरखा अंकित किया जाए, जो स्वावलंबन, श्रम और स्वदेशी का प्रतीक बने। और फिर सन 1931 में हुए कराची सम्मेलन में लाल की जगह केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस तरह पिंगली वेंकैया की कल्पना और संकल्प ने तिरंगे को आकार दिया और 22 जुलाई सन 1947 को, स्वतंत्रता से ठीक पहले, हमारा वर्तमान राष्ट्र ध्वज अंगीकार किया गया, जिसमें ध्वज के 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा यथावत रहे। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र रखा गया, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस तरह करोड़ों भारतीयों की आत्मा, संप्रभुता और गौरव की भावना को पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्र ध्वज में पिरो दिया। पिंगली वेंकैया एक समर्पित वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कंबोडियाई कपास पर गहन शोध किया तथा उसकी एक उत्कृष्ट संकर नस्ल भारत में विकसित की थी। इस वैज्ञानिक अवदान के लिए उन्हें संपूर्ण भारत में पट्टी वेंकैया यानी कपास वेंकैया के नाम से पुकारा गया। जन सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने महामारी प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया था तथा प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिंगली वेंकैया एक भूविज्ञानी भी थे। अपने भूविज्ञान अध्ययन का उपयोग करते हुए उन्होंने हीरे के खनन पर भी शोध किया। वो हीरा खनन और रत्नों के मूल्यांकन के अद्वितीय विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्हें डायमंड वेंकैया भी कहा जाने लगा। भारत की आजादी के बाद उन्होंने भारत सरकार के खनिज अनुसंधान विभाग में सलाहकार के रूप में कार्य किया और सन 1955 में हीरों पर लिखी उनकी पुस्तक द मदर ऑफ डायमंड्स प्रकाशित हुई। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 4 जुलाई सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पिंगली वेंकैया द्वारा परिकल्पित राष्ट्र ध्वज में लाल की जगह केसरिया रंग स्वीकारा गया, सफेद रंग और अशोक चक्र जोड़ा गया और ये रंग समुदाय नहीं, गुणों के प्रतीक बने। लेकिन आज भी हमारे तिरंगे में समाहित साहस, बलिदान, सत्य, शांति, समृद्धि, शक्ति और विश्वास के प्रतीकों में पिंगली वेंकैया की भावनाएं, उनका राष्ट्र प्रेम मुस्कुराता है। राष्ट्र अस्मिता के इस महाशिल्पी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आज आपकी हम सफर हूँ मैं सुनीता सिंह। हमारे कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, बस एक छोटे से अंतराल के बाद प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन।

बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा यानी भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिलती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंट के बोझ में अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंट लादने को प्रोत्साहित करते। ये दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता पड़ती। उसमें मजूरी दूनी कर दी जाती और मजूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते। एक एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे, पजावे की राख चढ़ाए, ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे, बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है। सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती थी। उसका शरीर इतना क्रश और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिह्वा और बाहू के जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें ना लड़कपन की चंचलता थी, न शरारत, न खिलंदड़पन। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी तक ना आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उस हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे देते। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसके समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्धा माता के सिवाय कोई नहीं है और वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी मां को खिलाता था। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था। लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था तक पहुंचा दिया था कि अब रोटियों के लाले पड़े थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन ने कहा, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी मां ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन बोला, बाबूजी नहीं, एक भी पैसा नहीं। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया, उसे कौड़ियां बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर ना होती, कभी नागा ना होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, पजावे में पानी भरा हुआ था, कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता ना चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था। उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आई नहीं, माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं अब ना बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं, पर मैं संकोच के मारे आपके पास ना आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, आपकी लालसा भी पूरी हो जाए। हरिदास भीतर गए। सारा घर भौतिक निस्सारता का परिचायक था। सुर्खी, कंकड़ और ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। केवल 2 कोठरियां गुजरने लायक थीं। मगन सिंह ने 1 कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा
कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरा नाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं, जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वो निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए, इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, हदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिन से उसका कहीं पता नहीं। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके, नहीं तो हमारी इतनी दशा हीन न होती। आज 3 दिन हुए वो मुझे बीजक आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया, तब से उसे छिपा कर रखे हूं। मगन बाहर है, अब मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वो बीजक है, उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिए, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी, आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसकी नियत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा, नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर ना हो। काम कष्ट साध्य था, नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और ना कभी करूंगा, क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो मनुष्य में एक बार भी विचलित ना हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं देवता है, मैं मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना बच्चे को फुसलाना है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिष भोजन से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती, आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी, बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते, अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते, पजावे की ओर बहुत कम जाते। विचारशील पुरुष थे, आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता है। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी। यहां तक कि दूसरा मास भी व्यतीत हुआ। अमावस की रात थी, हरिदास मलिन हृदय में बैठी कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा, तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूं, पर नहीं, कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया, चट्टान थी, तहखाना मिल गया। पर हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन ये थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया, 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे, किसी दवा से फायदा ना हुआ। इसी रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था, कहीं मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडा फोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे।
हरिदास की मृत्यु के पीछे ये बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा, पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती, कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़ों बड़ों का सिर नीचा कर दूं, कोई आंख ना मिला सके, इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले, वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था, जोड़ों को हटाना कठिन था, पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी, कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली लेकिन चट्टाने जरा भी ना हिली। तब वो लोहे की छड़ से काम लेने लगे, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने न खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से सहायता न मिल सकती थी। यहां तक कि फिर वही अमावस्या की रात आ गई, प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी। पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था, कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए। वो चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें युक्ति सूझी, क्यों ना बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को न छोड़ सके, सीधे बाजार की तरफ चले। 2 मील का रास्ता हवा की तरह तय किया, पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हीले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे। ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की शांत वृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, यहां तक कि मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर दिया। प्रभुदास यहां से चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे, प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे, चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई, अंधेरा गार सामने था, मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए है। प्रभात का समय था, प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरे रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से

पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विवल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। जान पड़ता था ये उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वो देवताओं की मनौतियां मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कही। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण थे तो केवल आंखों में। वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था, दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी, अन्य मित्रगण आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। ये वज्राघात है, विधाता की निर्दय लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थी। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था, सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी, ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ, अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गईं, प्राण निकल गए।

0: श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्तधन। फिर अपने अगले अंक में एक और कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र, अपने किस्सा को संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी। हमारी इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
2: हाजिर है कला, संस्कृति और अदब का आपका पसंदीदा कार्यक्रम कला कल्लोलनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की विशेष कड़ी किसी आम सफर की नहीं, बल्कि भारतीय रंगमंच के उस वट वृक्ष की दास्तान है, जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक अपनी सांसों से थिएटर को सींचा है। जी हाँ, रंगमंच महज लकड़ी का एक बेजान तख्ता या कुछ चमकदार रोशनियों का कौतूहल नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा का वह खुला चौक है, जहां समाज अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ नग्न खड़ा होता है। जब थिएटर का पर्दा उठता है तो सिर्फ एक नाटक शुरू नहीं होता, बल्कि जिंदगी अपने सारे मुखौटे उतारकर सच से आंखें मिलाती है। सिनेमा जहां कट और रीटेक के कंक्रीट के पीछे छुप सकता है, वहीं रंगमंच एक जलती हुई भट्टी है और यहां वही टिक सकता है जो तपने का मादा रखता हो। इस भट्टी में तपकर जो कुंदन बना और जिसने भारतीय थिएटर को एक नई गरिमा, एक नया अनुशासन और एक नया दर्शन दिया, उस महानायक का नाम है राम गोपाल बजाज। बजाज साहब का रंगमंच पर होना ऐसा है जैसे किसी घने पुराने जंगल में एक शांत और विशाल वटवृक्ष का होना।
3: वक्त की इस नाव पर सवार होकर आज हम सब रुख करते हैं बिहार के सहरसा जिले के उस कोशी अंचल की तरफ, जहां की लहरों में जितना बहाव है, आदरणीय बजाज साहब के भीतर की कला में भी उतनी ही गहराई है। 1 जुलाई 1940 को इसी अंचल की गोद में एक ऐसे बालक का जीवन शुरू हुआ जिसका बचपन बाहरी पाबंदियों से कहीं ज्यादा अपने भीतर के एक अनकहे सन्नाटे से गुजरा। राम गोपाल बजाज का बचपन घोर अभाव में बीता था। गांव या मोहल्लों में रामलीला का मंचन सजता या कोई पारंपरिक नौटंकी आती तो ये बालक सब कुछ भूलकर, अपनी पढ़ाई की किताबें छोड़कर, बस उन कलाकारों के चेहरों, उनकी बुलंद आवाजों और मंच की उस तिलिस्मी रोशनी को निहारता रहता। घर से डांट पड़ती, पाबंदियां लगती, मगर जो चिंगारी भीतर सुलग रही हो उसे बाहर की पाबंदियां भला कैसे बुझा सकती थी। वो छुप छुप कर नाटकों की किताबें पढ़ते और बचपन का यही मानसिक और कलात्मक संघर्ष दरअसल उनके भीतर के उस महान रंगकर्मी को जन्म दे रहा था।
2: रंगमंच की तरफ पहला झुकाव बजाज साहब ने खुद बताया था कि बचपन में उनके घर के पास एक मारवाड़ी पुस्तकालय था और पास में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या स्थानीय क्लबों के माध्यम से कभी कभी नाटक होते थे। बचपन में उन्होंने जहां पारसी थिएटर शैली के नाटक और स्थानीय रामलीलाएं देखी, उन नाटकों के संवादों का लहजा और मंच की दुनिया उनके बाल मन में ठहर गई थी। वह छुपकर नाटक देखने जाते थे क्योंकि घर में पता चलने पर सख्त मनाही थी। उनके भीतर कला को लेकर एक अजीब सी तड़प थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और कोशी अंचल की मिट्टी में पला बढ़ा वो मासूम बालक अब धीरे धीरे किशोरावस्था की दहलीज लांघकर जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस उम्र में जहां अमूमन लड़के दुनियादारी की फिक्र में खो जाते हैं, वहीं बजाज साहब के भीतर कला और वैराग्य का एक अद्भुत संगम आकार ले रहा था। गांव में जब कोई भी तीज त्योहार आता तो वे ढोलक और मजीरों की थाप पर होने वाले भजन कीर्तनों में पूरी तन्मयता से शामिल हो जाते। रामलीला के मंच पर सजने वाले किरदारों को एकटक निहारना, बंद कमरों में गीता के श्लोकों की गहराई को टटोलना और छुप छुप कर नई कहानियों और कविताओं को पढ़ना उनकी इस दीवानगी को और परवान चढ़ा रहा था।
3: उम्र के इस पड़ाव पर एक अजीब सा अल्हड़पन था, एक बेलौस बेफिक्री थी। ये जवानी का वो दौर था जहां आवारगी भी थी और कुछ नया सीखने सिखाने की असीम ललक भी। दोस्तों के साथ बेमकसद घूमना, घंटों कला और अदब पर बहस करना और जिंदगी के थपेड़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ना। इसी उठती जवानी के शोर और सूफियाना तन्हाई के बीच राम गोपाल बजाज के भीतर का वो अंगार तैयार हो रहा था जिसकी तपिश आगे चलकर पूरे भारतीय थिएटर को महसूस करनी थी।
2: दरभंगा के सीएम कॉलेजों की बंदिशों से आजाद होकर जब वो नौजवान घर से बाहर कोलकाता पहुंचा तो जेब पूरी तरह खाली थी। न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई सहारा। बजाज साहब स्वयं अपने इस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि जब वे कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन में बेबसी की हालत में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग घूम घूम कर चंपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। बस पेट की आग और उस सूनेपन के बीच इस खुददार नौजवान के दिमाग में एक विचार आया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। कम से कम दो आना तो मिलेगा ही, जिससे दो वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके और पेट भर सके।
3: कलकत्ता के उन मसरूफ और अजनबी सड़कों पर अपनी पहचान और वजूद तलाशते हुए बजाज साहब ने केवल थिएटर ही नहीं देखा बल्कि जिंदगी को बहुत करीब से भी महसूस किया। खुद को जिंदा रखने के लिए और पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए ताकि वे कलकत्ता में टिक सकें, लेकिन उनका असली ठिकाना था वहां के थिएटर, ऑडिटोरियम और नुक्कड़।
2: उस दौर में कलकत्ता में पारसी थिएटर का असर तो था ही, साथ ही इप्टा की प्रगतिशील चेतना भी चरम पर थी। बजाज साहब घंटों भूखे प्यासे रहकर और बांग्ला रंगमंच के उस असीम अनुशासन को अपनी आंखों से समेटते। उन्होंने वहां केवल अभिनय की तकनीकें नहीं सीखी बल्कि उन्होंने देखा कि कैसे रंगमंच समाज की विसंगतियों पर सीधे प्रहार करता है। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू किया।
3: और वो अक्सर कहा करते थे कि कलकत्ता ने उन्हें वो दृष्टि दी जिसने उनके भीतर के अकेलेपन को एक वैचारिक गहराई में बदल दिया। वे समझ गए थे कि थिएटर महज मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और यही तजुर्बा, यही तपन और कलकत्ता का यही कड़ा संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन का वो सबसे बड़ा आधार बना जिसने उन्हें सीधे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां भारतीय रंगमंच का एक नया इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू कर दिया।
2: कलकत्ता की गलियों में अपनी कलात्मक भूख और इस कड़े संघर्ष को जीने के बाद वे बिहार की राजधानी पटना आए और यहाँ से उन्होंने नए सिरे से अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। पर आर्थिक तंगी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। पटना विश्वविद्यालय में एमए हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई के दौरान फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इस स्वाभिमानी लड़के ने अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीती और इनाम के रूप में पुअर बॉयज फंड से अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च निकाला। लेकिन जब तक ये बात रूढ़िवादी बजाज खानदान को पता चली तो खानदान के लोगों को झूठी शान की ठेस लगी। वे गुस्सा हो गए कि हमारी बिरादरी का लड़का पुअर बॉयज फंड से क्यों पढ़ेगा। पर इस फक्कड़ कलाकार को किसी की झूठी शान की परवाह कहाँ थी। उन्होंने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रातों के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर पटना की सड़कों पर रिक्शा तक चलाया।
3: क्या बात है, संघर्षमयी मिट्टी से तपकर जब वे बाहर निकले तो उनका साहित्य से रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। बचपन में अपनी पूज्य दादी माँ को भगवत गीता और रुक्मणी मंगल का पाठ पढ़कर सुनाने वाले बजाज साहब अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के दीवाने हो चुके थे। आगे चलकर आधुनिक कविता के पुरोधा अज्ञे जी से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने बजाज साहब के भीतर के उस संवेदनशील कवि को पहचान लिया। पटना में रहते हुए जब वे एमए प्रीवियस पास कर चुके थे तभी उनकी मुलाकात हिंदी के महान कथाकार परेश्वरनाथ रेणु जी से हुई।
2: रेणु जी इस नौजवान की आंखों में चमक और प्रतिभा भांप गए। उन्होंने बजाज साहब को पटना की एक स्थानीय ड्रामा मंडली से मिलवाया। उन्हीं दिनों पटना में एक सज्जन मिले, हामिद साहब, जो किराए पर कमरे चलाया करते थे। हामिद साहब ने इस बेसहारा कलाकार को न केवल छत दी बल्कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी के इंटरव्यू का बुलावा आया तो अपनी जेब से कुछ पैसों की मदद भी की। हामिद साहब के उन्हीं पैसों का सहारा लेकर यह नौजवान दिल्ली पहुंचा। एमए फाइनल की परीक्षा देने से पहले ही उसका सिलेक्शन सीधे एनएसडी में हो गया। दिल्ली आकर उन्होंने रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब के कड़े अनुशासन में रंगमंच का काखा गा सीखा। सन 1965 में रामगोपाल बजाज जी का एनएसडी में चयन हो गया था।
3: और रामगोपाल बजाज पटना विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में मास्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके और दिल्ली स्थित एनएसडी चले गए। वे 1965 के बैच के छात्र रहे। उन्होंने अभिनय में अपना डिप्लोमा पूरा किया। एनएसडी में उन्हें प्यार से बड़े छोटे सभी बज्जू भाई बज्जू सर कहते थे। वो हमेशा से सभी का साथ देने वाले मददगार दोस्त साथी और शिक्षक रहे। उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी में अंग्रेजी का माहौल बहुत ज्यादा था। खुद रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब बड़े सलीके से अंग्रेजी बोलते थे, जबकि रामगोपाल बजाज जी की हिंदी बेहद मुकम्मल शुद्ध और साफ थी। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक सौदा हुआ। अलकाजी साहब ने बजाज साहब से कहा, तुम मुझे हिंदी सिखाना, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा।
2: भाषा का ऐसा अद्भुत आदान प्रदान रंगमंच के इतिहास में बिरला ही देखने को मिलता है। अलकाजी साहब हिंदी कविता और उसके ठहराव को सीखने के लिए इतने आतुर रहते थे कि कई बार सुबह बेहद तड़के भोर में ही बजाज साहब को बुला लिया करते और उनसे घंटों डूबकर हिंदी की कविताएं सुना करते थे।
3: अलकाजी साहब के उसी कड़े अनुशासन और प्यार की छांव में बज्जू भाई ने कई नाटकों में काम किया। उन्होंने अंधा युग, तुगलक जैसी कई ऐतिहासिक और कालजयी प्रस्तुतियों में साथ काम करके भारतीय रंगमंच का इतिहास बदल दिया। हालांकि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में उनके द्वारा साथ किए गए कुल नाटकों की कोई निश्चित संख्या दर्ज नहीं है, पर यह बात पूरी दुनिया जानती है कि इब्राहिम अलकाजी ने राम गोपाल बजाज को आधुनिक हिंदी रंगमंच का एक सशक्त, निडर और बेमिसाल अभिनेता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बजाज साहब आज भी जब अलकाजी साहब को याद करते हैं तो अंधा युग के वो दिन उनकी आंखों में एक जीवंत दृश्य की तरह तैरने लगते हैं।
2: न कोई जबां आड़े आई, न कोई दस्तूर आड़े आया, मुर्शिद ने जब मुरीद को अपनी रूह से मिलाया। एक दूजे को सौंप दी दोनों ने अपनी कायनात, उधर से इल्म बहा, इधर से अदब का दरिया आया। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की चौखट पर कदम रखने के बाद इस खुद्दार नौजवान ने जैसे रंगमंच को ही अपनी इबादत बना लिया था। बजाज साहब ने वहां केवल अभिनय की बारीकियों को ही नहीं साधा बल्कि नाटक की मुकम्मल रूह को समझा। मंच की रोशनियां कैसे भावनाओं को उभारती हैं, सेट कैसे एक बेजान जगह को जिंदा करता है और वेशभूषा जैसे किसी किरदार को वजूद देती है। उन्होंने इन सब विधाओं को पूरी लगन से सीखा और इसके साथ ही उनका नाता विश्व और हिंदी साहित्य के महान लेखकों से और गहरा होता गया।
3: लेकिन इन सब चमक धमक और कला के शोर के बीच कई बार रातों के सन्नाटे में घर की याद उन्हें घेर लेती थी। अपनी पूज्य दादी माँ की ममता और उनके आंचल की खुशबू को याद करते हुए इस संवेदनशील कलाकार की आंखें भर आती थीं। उस वक्त जब मंडी हाउस की भीड़ अपने चरम पर होती, तब इस युवा रंगकर्मी का दिल करता कि वे इस हुजूम से अलग होकर कहीं दूर बिल्कुल एकांत में चले जाएं। दरअसल बजाज साहब भीतर से हमेशा एक बेहद आध्यात्मिक इंसान रहे, जो बाहरी दुनिया के शोर से थककर एकांत के उसी सन्नाटे में खुद को भीतर से शांत करते थे, अपने जख्मों को सहलाते थे। उनके लिए अकेलापन का वो सूनापन कोई सजा नहीं थी बल्कि एक रूहानी वरदान था, जिसे महसूस करते हुए अक्सर सोचते थे, अकेलेपन से बढ़कर आनंद नहीं, आराम नहीं, स्वर्ग है वो एकांत जहां शोर नहीं, धूमधाम नहीं। ऐसे भावों को लेकर मुझे डीएच लॉरेंस की लिखित और दिनकर की अनुवादित वो कविता याद आ रही है।
2: देश और काल के प्रसार में शून्यता, अशब्दता, अपार में चांद जब घूमता है कौन सुख पाता है, भेद यह मेरी समझ में तब आता है, होता हूं जब मैं अपने भीतर के प्रांत में, भीड़ से दूर किसी निभृत एकांत में, और तभी समझ यह पाता हूं पेड़ झूमता है किस मोद में, खड़ा हुआ एकाकी पर्वत की गोद में, बहता पवन मंद मंद है पत्तों के हिलने में छंद है। आह कितना आनंद है।
3: बिल्कुल, भीड़ से दूर अपने भीतर के इसी निभृत एकांत में बैठकर उन्हें ब्रह्मांड के इस परम सत्य का बोध होता था। प्रकृति के इस मूक संगीत, हिलते पत्तों के छंद और मंद मंद बहती हवा के इसी रूहानी आनंद ने उनके भीतर के अकेलेपन को एक दिव्य दार्शनिकता में बदल दिया, जिसने आगे चलकर उनके अभिनय और निर्देशन को एक अमर और कालजयी गहराई प्रदान की।
2: एनएसडी से शिक्षा पूरी करने के बाद रामगोपाल बजाज जी केवल एक छात्र नहीं रहे, वे सालों तक इस प्रतिष्ठित संस्थान की फैकल्टी के रूप में नए कलाकारों को गढ़ते रहे और आगे चलकर नवंबर 1995 से सितंबर 2001 तक इसके निदेशक डायरेक्टर बने। बतौर निदेशक उनका यह कार्यकाल भारतीय रंगमंच का स्वर्ण युग साबित हुआ। वे सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि थिएटर के हर विभाग जैसे मेकअप, स्टेज लाइटिंग और प्रोडक्शन डिजाइनिंग के एक सिद्ध ऑलराउंडर थे, जिन्होंने स्कूल की अकादमिक और कलात्मक रीढ़ को मजबूत किया।
3: उन्होंने विस्तार, प्रकाशन और दस्तावेजीकरण जैसे कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान था भारत रंग महोत्सव। 1999 में आजादी की स्वर्ण जयंती पर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल और पूरी तरह उन्हीं की कल्पना से उपजा जश्न बचपन व बाल संगम। इन उत्सवों ने देश विदेश के थिएटर समूहों, वयस्कों, बच्चों और पारंपरिक लोक कलाकारों को एक वैश्विक मंच दिया। स्कूल की शिक्षा प्रणाली में थिएटर को अनिवार्य करने की जोरदार वकालत करने वाले बजाज साहब दिल्ली के मशहूर देशांतर थिएटर ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं।
2: मंच, रेडियो, टीवी और फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बजाज साहब के पास कविताओं के पाठ और उनकी प्रस्तुति का एक ऐसा जादुई हुनर है कि जब वे बोलते हैं तो शब्द जीवंत हो उठते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बुनियाद खड़ी करने में इब्राहिम अलकाजी की बड़ी भूमिका रही। ये भी असंदिग्ध है कि उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण की जो आधारशिला रखी, उसकी वजह से कई अच्छे अभिनेता और निर्देशक रंगमंच के क्षितिज पर आए।
3: अलकाजी साहब अपनी तरह के अद्वितीय रंग व्यक्तित्व हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं, किंतु उसके बाद एनएसडी के सबसे कल्पनाशील निदेशक बज्जू भाई ही हुए और इस संस्था की परिधि का विस्तार जितना उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सका। उनके चलाए हुए कुछ कार्यक्रम तो अब लगभग बंद ही हो गए हैं, जैसे कि श्रुति। बज्जू भाई द्वारा बनाई गई परिधि अब छोटी पड़ती जा रही है। बजाज साहब ने अपने कार्यकाल में हिंदी की नाट्य पत्रिका रंग प्रसंग की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में श्रुति कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हिंदी के वरिष्ठ या युवा लेकिन चर्चित कथाकार या कवि आकर रचना पाठ करते थे
2: और इसी कारण से हिंदी भाषी समाज और नाट्य विद्यालय का एक गहरा जीवंत रिश्ता बन गया था। बज्जू भाई ने ही बहावलपुर हाउस परिसर में सम्मुख थिएटर बनवाया और फिर अभिमंच बनाना शुरू किया, जो अंकुर जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। 1996 में बज्जू भाई ने बतौर निर्देशक स्कूल के दीक्षांत समारोह के अवसर पर एकल अभिनय नाट्य समारोह करवाया, जिसमें लक्ष्मण देशपांडे, वीणा पाणी चावला से लेकर नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं ने शिरकत की। उस दीक्षांत समारोह में धर्मवीर भारती मुख्य अतिथि रहे।
3: निर्देशन की बात करें तो एनएसडी और उसकी रिपेट्री कंपनी, जिसके वे 1988 से 1994 तक प्रमुख भी रहे, उनके नाटक भारतीय रंगमंच के मील के पत्थर बन गए। इस सफर की शुरुआत 1974 में सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जैसे कालजयी नाटक से हुई। इसके बाद 1977 में जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक स्कंदगुप्त, 1989 में मिर्जा गालिब के दर्द को समेटते कैदे हयात और 1992 में मोहन राकेश की अमर कृति आषाढ़ का एक दिन का निर्देशन कर उन्होंने निर्देशन कला की नई परिभाषाएं सीखी।
2: केवल निर्देशन ही नहीं, उनके भीतर का संवेदनशील लेखक भी उतना ही प्रखर था, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गिरीश कर्नाड के कन्नड़ नाटक ताले दंड का रक्त कल्याण के नाम से किया गया उनका शानदार हिंदी अनुवाद है। इस अनुदित नाटक का निर्देशन पहले रिपेटरी के लिए स्वयं उनके रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी ने और बाद में अस्मिता थिएटर के लिए अरविंद गौड़ ने किया। सचमुच कोशी अंचल की मिट्टी से निकला यह फक्कड़ और दार्शनिक कलाकार जब दिल्ली के मंडी हाउस के गलियारों में उतरा तो उसने न केवल खुद को साबित किया बल्कि समकालीन भारतीय थिएटर का पूरा भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
3: जी हाँ, रामगोपाल बजाज बज्जू भाई जी की देखरेख और मार्गदर्शन में भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की कई उत्कृष्ट पीढ़ियां तैयार हुईं। उनके प्रमुख शिष्यों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, आशुतोष राणा, सीमा विश्वास, गोविंद नामदेव, यशपाल शर्मा और स्वर्गीय श्री वल्लभ व्यास जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं, जिन्होंने उनसे अभिनय और थिएटर के कड़े अनुशासन की बारीकियां सीखकर आज पूरी दुनिया में अपनी कला का परचम लहराया है।
2: पद्मश्री से सम्मानित रामगोपाल बजाज केवल थिएटर के ही बेताज बादशाह नहीं रहे, बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के पर्दे पर भी उन्होंने अपनी अदाकारी का ऐसा रंग बिखेरा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों से अभिनय का ककहरा शुरू करने वाले बजाज साहब ने जब सिल्वर स्क्रीन की तरफ रुख किया तो वहां भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शेखर कपूर की मासूम 1983 हो या केतन मेहता की समीक्षकों द्वारा बेहद सराही गई मिर्च मसाला फिल्म 1985 हो या फिर यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म चांदनी 1989 हो, बजाज साहब ने हर बड़े निर्देशक के विजन में खुद को एक मुकम्मल अभिनेता के रूप में ढाला। उनकी अभिनय की रेंज इतनी व्यापक थी कि जहां एक तरफ वे लीक से हटकर दीपा मेहता की फायर 1996 जैसी फिल्मों का हिस्सा बने, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का परचम लहराया जब वे ग्लोबल स्टार जैकी चैन की मशहूर फिल्म द मिथ 2005 में एक मार्शल आर्ट्स शिक्षक की दमदार भूमिका में नजर आए।
3: और वक्त बदला, सिनेमा का मिजाज बदला, लेकिन बजाज साहब की कला का जादू हमेशा नया बना रहा। सिनेमा के बदलते दौर के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने आधुनिक सिनेमा और OTT की दुनिया में भी उतनी ही सहजता से प्रवेश किया। उनका संजीदा अभिनय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोरने वाली फिल्में मैंगो ड्रीम्स, इन प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता। उसकी कला वक्त के हर फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक और देश के इस महान ऑलराउंडर का ये फिल्मी सफर महज कुछ फिल्मों की सूची नहीं है, बल्कि ये गवाही है इस बात की कि जब थिएटर की माटी में तपा हुआ कोई फनकार कैमरे के सामने खड़ा होता है तो सिनेमा की स्क्रीन भी उसकी शख्सियत के आगे छोटी पड़ जाती है।
2: प्रोफेसर बजाज को भारतीय रंगमंच में उनके चौतरफा रचनात्मक योगदान के लिए कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, नेशनल प्रेस इंडिया अवार्ड, साहित्य कला परिषद सम्मान, नंदीकर सम्मान शामिल हैं। और उन्हें 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वे आधिकारिक और व्यक्तिगत क्षमताओं में थिएटर, फिल्म, जनसंचार के क्षेत्र में कार्यकारी बोर्ड, जनरल काउंसिलिंग और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के बोर्ड के सदस्य रहे हैं।
3: उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक के रूप में उनकी क्षमता के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामित के रूप में बोर्डों और समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया। उन्होंने सन 2000 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी के सदस्य के रूप में भी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2001 के लिए पैनोरोमा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
2: श्रोताओं, आज भले ही बज्जू भाई दिल्ली की इस भागदौड़ से दूर कहीं और वक्त बिता रहे हों, पर सच तो ये है कि मानसिक रूप से उनका दिल आज भी दिल्ली में ही धड़कता है। जब भी उनसे गुफ्तगू हुई है, मंडी हाउस के गलियारों और NSD के किस्से उनकी बातों में जीवंत हो उठते हैं। रामगोपाल बजाज के प्रिय कवि रहे हैं अज्ञेय। उनकी कविता जो बज्जू सर को बहुत पसंद है, हम उन्हें अर्पित करते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, वह दो खंभों के बीच है रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ। वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर रोशनी जो पड़ रही है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर, असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं, और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, खंभे नहीं, रस्सी को नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच।
3: रेडियो आजाद हिंद की तरफ से हम सभी के प्यारे बज्जू सर, बज्जू भाई को दिल से ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों, खूब जिएं और अपनी कला से हम सभी को हमेशा यूं ही बहुत कुछ सिखाते रहें। आपकी ये अद्भुत रंगमंच की यात्रा, आपका फक्कड़पन, आपका स्वाभिमान और आपका कड़ा संघर्ष हम सभी के लिए, आने वाली हर पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का एक अटूट स्रोत बना रहे। प्रणाम बज्जू भाई।
2: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में बस आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, लेखन दीपक नेमा, और आपके साथ था मैं विजयकांत नायक,
3: और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का।
2: ये नर्मदा के पूरे संभार को, पूरे के पूरे संपदा को संग्रहित करके हमारे सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी। हमको अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जरूरत है।
1: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में राष्ट्रीय विमर्श के तहत, जिसमें नर्मदा अंचल की मूर्त और अमूर्त धरोहर पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का वक्तव्य।
3: मैं श्री श्रीराम परिहार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। लोक कथाएं, परिक्रमा, अनुष्ठान एवं मौखिक परंपराएं, श्री श्रीराम परिहार जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाता है।

नर्मदे, सबको नर्मदेहर, नर्मदा नर्मदा हर्ष को देने वाली, संपत्ति को देने वाली, खुशी को देने वाली, समृद्धि को देने वाली, जीवन को देने वाली, जीवन की तरलता को भरने वाली, जीवन की चमक को भरने वाली, जीवन में आर्द्रता पैदा करने वाली, जीवन में निर्मलता देने वाली और जीवन को अविराम गति से बहते रहने की अटूट शक्ति देने वाली नर्मदा को हम प्रणाम करते हैं। विषय इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना गहरा और इतना फैलाव वाला है कि वर्षों तक हम नर्मदा की इस पावन महिमा का यदि संग्रहण और आलेखन करेंगे तब भी हम उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपनी बात कहूँगा, मैंने देखा है ये केवल जल की बहती हुई धारा नहीं है। यदि पांच तत्व में से एक तत्व जल है और जल यदि सृष्टि की रचना का एक बहुत महत्वपूर्ण उपादान है तो उसी जल की जीवित शक्ति के रूप में नर्मदा धरती के ऊपर बह रही है। स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में यह तो सनातन नदी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषि कह रहा है कि ये प्रलय काल में भी भगवान विष्णु के दाएं पांव में रेखा बन करके लिपटी हुई है। तो मुझे लगा कि जब हिमालय नहीं था तब विंध्याचल था और जब माँ गंगा नहीं रही होगी तब नर्मदा रही होगी। एक शाश्वत, एक अनादि नदी है ये, इसके किनारे हमने जन्म लिया, कितने बड़भागी हैं, कितने पुण्यभागी हैं, कितने पुण्यात्मा हैं हम, तो क्या इसके गोद में जन्म लेने का जैसे हम माँ के साथ व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार हमको माँ के साथ, नर्मदा के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरा अटल विश्वास है हम पुराने लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन जो नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी हुई, इनको कुछ भी बुरा भला कहो, इनको यदि बदल दिया, इनकी मानसिकता यदि बदल दी तो नर्मदा को शाश्वत धारा के रूप में, उसका चाहे हम किसी भी रूप में संग्रहण करें, उसका दस्तावेजीकरण करें, असंख्य संपदा फैली हुई है, कितने आयाम फैले हुए हैं। अभी जब मैं पहली बार नर्मदा परिक्रमा पर 2011 में गया था, दूसरी बार 2021 में गया था और तीसरी बार जब 15 मार्च से लेकर मैं अभी जब लौटा तो डिंडोरी और मंडला के बीच का जो परिदृश्य है, जो 15 साल पहले का परिदृश्य था वो अभी का परिदृश्य है, बहुत अंतर आ गया है, इतना ज़्यादा अंतर आ गया है। ये अंतर प्रकृति में नहीं आया, मनुष्य की मानसिकता में आया है। मानसिकता ये तो बनी कि श्रीराम परिहार परिक्रमा पर जा रहा है, उसके देखा देखी दूसरा भी जा रहा है, लेकिन परिक्रमा तो वह कर रहा है जो नंगे पांव, हाथ में लकोटी और कंधे पर एक गमछा लिए पद यात्रा, माँ की सेवा, माँ की सेवा नहीं जीवन के उद्धार के लिए जो जा रहा है वह परिक्रमा है। वैसे तो परिक्रमा के बहुत अलग अलग संसाधन आ गए हैं, रेग आ गए हैं, लेकिन परिक्रमा से केवल एक बात जरूर जुड़ी है, वह है आस्था। आस्था किसके प्रति? आस्था नदी के प्रति। नदी नहीं, वह नदी के रूप में जो जीवित बह रही है, जल के रूप में जो बह रही है। जल केवल क्या नदी के रूप में बहता है कि जल हमारे भीतर भी बहता है? बिल्कुल सच मानिए, नर्मदा सामने खड़ी होकर के बात करती है, आप बात करने लायक बनिए तो सही, अब बेटा बनिए, माँ तो सब उपस्थित हो जाएगी। और ये सच बात है, सैकड़ों परिक्रमा वासियों के मुँह से मैंने सुना है कि जब जब आप परिक्रमा में अकेले संकट से घिरेंगे, कोई ना कोई किसी बहाने, वृद्धा के रूप में, पशु के रूप में, किसी आवाज़ के रूप में, किसी अनजानी पुकार के रूप में, किसी पक्षी की आवाज़ के रूप में, वह माँ जरूर बताएगी। तीनों परिक्रमा में मैंने ये प्रमाण पाए हैं, तीनों परिक्रमा में संकट के समय।
आस्था होनी चाहिए, गहरी आस्था होनी चाहिए। परिक्रमा क्या हम दिखावे के लिए करते हैं? यदि करते हैं तो मत करिए। मेरा दोस्त गया तो हम भी चले जाएं, ये आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक नर्मदा को समझना, यानी जल की सतत प्रवाह को समझना। आप सोचिए साथियों, ऐसी भीषण गर्मी में पिछले 3-4 दिन से सारी नदियाँ सूख रही, महानदी भी बिल्कुल अजस्र नदी है, बड़ी नदी है महानदी भी। महानदी में भी आप राजिम के पास जाएंगे ना तो जरा सी जलधारा मिलेगी इस समय, लेकिन नर्मदा में तो कोई पानी कम नहीं होता, पानी सूखता नहीं, पानी विरल नहीं होता। पानी स्वच्छतम नदी देखना हो तो मेरे ओंकारेश्वर के ऊपर थोड़ा सा जोगा का किला है, जो नाभि कुंड से, नाभि स्थल से थोड़ा सा नीचे, वहाँ नर्मदा की पवनता देखिए। सहस्रधारा जो मंडला के पास है और सहस्रधारा जो महेश्वर के पास है, वहाँ से जब नर्मदा किलोल करती हुई अटखेलिया बहती हुई निकलती है, वहाँ निर्मलता देखिए। तो एक बात तो जरूर है, ये मैंने भी महसूस की है कि माँ कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती। कितने परिक्रमावासी कुछ नहीं ले जाते, 2 जोड़ी कपड़े, 1 कमंडल और 1 लकड़ी, और कभी पाँव में चप्पल, और कोई तो बिना चप्पल के उभानी पाँव जाते हैं, लेकिन वो मांग कर खाते हैं। पेड़ के नीचे सोते, स्कूल में सो जाते हैं, धर्मशाला में सो जाते हैं, किसी ओटले पर सो जाते हैं, किसी मंदिर के चबूतरे पर सो जाते हैं, और नहीं। आज आप सोचिए ये कैसी आस्था है नर्मदा के किनारे की। पूरे निमाड़ में तो मैंने प्रमाण पाया है, और पूरे बुंदेलखंड में, और पूरे डिंडोरी से लेकर मंडला तक तो प्रमाण पाया है। सैकड़ों लोक कथाएँ हैं, सैकड़ों आस्थाएँ हैं, सैकड़ों मान्यताएँ हैं, मन्नते नहीं मान्यता मान है, और सैकड़ों हमारी धारणाएं हैं जो मौखिक रूप से रात में कही जाती है। मेरे को नर्मदा जी मिली। एक बात मैं कहूँ कि हमने सबने पढ़ा है, हमको सबको पढ़ाया है कि नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। डिंडोरी और मंडला के बीच में मैंने देखा नर्मदा पश्चिम से पूरब की ओर भी बहती है। लगभग 10 किलोमीटर की जगह ऐसी है जहाँ पर, वहाँ पर बुड़नेर नदी आकर के नर्मदा में मिलती है, और बुड़नेर के संगम पर ही अब ये शोधार्थियों का, ये पुरातत्व विभाग का काम है कि वहीं जमनग्नि ऋषि का आश्रम भी है और वहीं परशुराम की जन्मस्थली है। और हम कहते हैं कि यहाँ इंदौर के पास जाना पाँव, जहाँ से चंबल निकलती है, वहाँ भी जमनग्नि ऋषि का आश्रम है और वहाँ भी परशुराम की जन्मस्थली है। वहाँ पर अखंड कीर्तन हो रहा है और बुड़नेर नदी आकर के मिलती है, और नर्मदा जी ऐसी पूरब पश्चिम से पूरब की ओर बह रही, बिल्कुल पूरब की, और फिर जैसे ही मंडला आता है ऐसे मोड़ लेती है, और नर्मदा यहाँ मंडला सीधे बंजर नदी आकर के मिलती है, यहाँ बुड़नेर नदी आकर के मिलती है। डिंडोरी से लेकर मंडला के बीच में जो वन खंड है, जो वन प्रदेश है, वही नर्मदा को अजस्र रूप से जल की स्रोतस्वनी नदी बनाते हैं। लेकिन जब 15 साल पहले जब गया था तो वहाँ जंगल थे, अब छोटी छोटी खेत हैं, उसमें मसूर हो रही है और उसमें अलसी पैदा हो रही है, इतने छोटे छोटे खेत उसमें पैदा हो, अभी मसूर को उखाड़ा जाता, मसूर काटी नहीं जाती, मसूर को उखाड़ा जाता। तो जल जीवन, समाज, मान्यताएं, आस्थाएं, पुरातत्व, लोक देवता, वृक्ष, अब क्या कैसा कहेंगे कि जैसे ही मंडला जिला समाप्त होता है और पहाड़ियां समाप्त होती है, सागुन के पेड़ समाप्त हो जाते हैं, और जैसे डिंडोरी जिला लगता है और सरई और साजा के पेड़ हरे भरे, इस गर्मी में सरई तो जैसे अवतार ले लिया हो। ये वनस्पति का जो भूमि के आधार पर की, जलवायु के आधार पर की, वातावरण के आधार पर की, हम जमीन के आधार पर की, हम वहाँ की मिट्टी के आधार पर किस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर इस नदी के इस पार तो सागुन लगा हुआ है और सरई बिल्कुल नहीं है, और नदी के उस पार जो है सरई शुरू हो जाती है, लेकिन उन सब में जो वनवासी रह रहे हैं, उन सब में जो नर्मदा पुत्र रह रहे हैं, वो नर्मदा के सहारे ही रहते हैं। वो नर्मदा के सहारे इसलिए रहते, उनके जीवन का अभिन्न अंग नर्मदा है, नर्मदा माँ है, वो ठीक कह रहे हैं। एक आश्रम है डिंडोरी से बिल्कुल नीचे, वहां नर्मदा जी
बस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हो रही है, एक अखंड साधु जो है पता नहीं कितने साल का, और इतनी ऊंचाई होगी उस साधु महात्मा की, और कोई गाय नहीं, कोई भैंस नहीं, लेकिन जितने लोग जाते हैं सब सबको चाय पिलाता है, नाराज हो गए कि चाय पी जाओ, और कुछ नहीं है तन पर, केवल अधो वस्त्र है छोटा सा, और कब से है बोले हमको नहीं मालूम। ये ऐसे आश्रमों में बड़े हुए सन्यासी जो नर्मदा के किनारे ऐसे मोड़ खा करके आती, इधर भी चट्टान इधर भी चट्टान, मैंने बहुत पैदल उनके किनारे किनारे यात्रा की, जितनी जगह जाओगे नर्मदा का रूप अलग मिलेगा, दूसरा रूप उस तरह का नहीं मिलेगा। जितने घाट पर जाओगे नर्मदा का सौंदर्य यहाँ अलग है तो वहां अलग है, सूलपाणेश्वर में अलग है तो मीठी तलाई में अलग है, सागर संगम में अलग है और कोटेश्वर में अलग है, सब जगह अलग है, धर्मपुरी में अलग है, धर्मपुरी में तो दीप बनाती है और बीच में शिवलिंग है, मेरे ओंकारेश्वर में भी वैडूरमणि पर्वत पर ओम ओम आकार की आकृति में शिव बैठे हुए हैं, और इधर से कावेरी इधर से नर्मदा, कैसा अद्भुत, कितनी संरचना, भू संरचना का सौंदर्य जैसे अवतार ले लिया, भूमि का सौंदर्य तो अपने पास है लेकिन नर्मदा ने भूमि के सौंदर्य में टीकी लगाई है, कुमकुम का टीका लगाया है, अक्षत लगाया है, आरती उतारी है। ये नर्मदा जितनी जगह, यदि अमृतलाल बेगड़ कहते हो तो प्रपातों की नदी है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन प्रपात खत्म हो गए हैं नर्मदा सागर बांध में, प्रपात खत्म हो गए सरदार सरोवर में, कम से कम 15 प्रपात समाप्त हुए हैं। लेकिन दूसरी समृद्धि आई है, नर्मदा का पानी बेटा बनकर के खेती में सिंचाई कर रहा है, और नर्मदा के पानी से बिजली बनकर के बेटी बनकर के घर घर में प्रकाश कर रही है, तो एक बेटा सिंचाई कर रहा है, दूसरा उसी जल से पैदा हुई बेटी, तुलसी कहते हैं कि पुत्री पवित्र करे कुल दोऊ, तो बिजली पैदा हो रही है नर्मदा के जल से तो प्रकाशित हो रही, घर प्रकाशित होगा तो पीढ़ियां प्रकाशित होगी, घर प्रकाशित होगा तो संस्कार समृद्ध होंगे, घर प्रकाशित होगा तो स्वच्छता होगी, घर प्रकाशित होगा तो गाय को रोटी मिलेगी, घर प्रकाशित होगा तो तुलसी के किनारे शाम को दीपक जलेगा, घर प्रकाशित होगी तो माँ की ममता लहराएगी, घर प्रकाशित होगा तो पिता का आंचल हमारे ऊपर होगा, घर पिता होगी तो माँ के दूध से हम राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रभक्त बनकर के योग्य नागरिक बनेंगे। इतना घर पवित्र यदि हमारी माँ नर्मदा करती है, और ये नर्मदा के किनारे किनारे पैदल यात्रा करने का जो आनंद है वो अखंड आनंद है, वो अनिर्वचनीय है, वो शताब्दियों के पुण्य, जब 100 जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के वो बड़भागी हैं जो नर्मदा के किनारे किनारे पैदल यात्रा करते हैं। कितनी बूढ़ी माएँ हैं, देखिए कैसे पीढ़ियाँ जुड़ रही है, एक ने त्याग दिया अगली पीढ़ी, तो मैं कहता हूँ कि ये जो सामने पीढ़ी बैठी हुई है इसकी, इसको थोड़ा सा सही दिशा देने की जरूरत है, ये परिवर्तन लाएगी, ये नर्मदा के पूरे संभार को, पूरे के पूरे संपदा को संग्रहित करके हमारे सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी। हमको अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम तो पता नहीं नदी किनारे के कैसे सूखे पेड़ है जो एक दिन बहाव में बह जाएंगे, अगले 90 वर्ष का भारत तो ये बनाएंगे, अगले 80 वर्ष का भारत ये बनाएंगे, इनकी आंखों में लाल डोरे बना दीजिए, लाल रेखाएं पतली रेखाएं बना दीजिए उनमें रंग काम के भरने के, तो ये हमारे बच्चे करेंगे। एक क्रम से कितना अपार है, मठ है, मंदिर है, आश्रम है, साधु है, सन्यासी है, आस्था है, जीवन है, जमीन है, पशु पक्षी है, पक्षियों के कितने पेड़, कितने प्रकार के फलदार, कितने प्रकार के औषधियां, कितने प्रकार की, आप माई की बगिया से लेकर के और कपिल धारा तक जाएंगे तो 10 बेटियां हमारे नर्मदा की औषधि लेकर के बेचती हुई मिलेंगी। हाँ बोले मैं तो यही काम कर रही हूँ, मुझे पिताजी ने बताया था औषधि का ज्ञान पारंपरिक रूप से, और वो ठीक हो जाती।

और ये जो संस्थाएं जुड़ी हुई है ये इस ज्ञान को यदि अभिलेखीकरण करेंगी तो फिर हम उसको पाठ्यक्रम में लाएंगे। कल से नया पाठ पढ़ेंगे, नया पाठ का मतलब नर्मदा के नए स्वरूप से हम परिचित होंगे। बहुत काम है, क्योंकि एक सनातन नदी को जानने के लिए सनातन परंपराओं से गुजरते हुए शाश्वत शब्दों में अभिलेखन करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को जोड़ना है, भारतवर्ष को जोड़ना है। और सच मानिए कि पूरे नर्मदा खंड में अमरकंटक से लेकर के नर्मदा कुंड से लेकर के रत्नाकर सागर में, पुराणों में देखिए, ग्रंथों में देखिए, रत्नाकर सागर में मिलती है जाकर के नर्मदा जी, रत्नाकर सागर में मिलती है। और वो जो जहां मिलती है वहां 70 किलोमीटर का चौड़ाई है। वहां पर नर्मदा जी जहां समुद्र में मिलती है वहां कितनी विराट हो जाती है, 70 किलोमीटर। गंगा तो डेल्टा बनाती है सागर संगम में, वहां पर कपिल ऋषि के आश्रम में, लेकिन नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा समग्र रूप में जाकर के समुद्र में समाहित होती है। और वो जहाज वाला बताता है, नाव वाला बताता है कि बोले भैया ये 70 किलोमीटर की, उसी पर तो हम बैठ करके पार करते हैं ना, परिक्रमा में जाते हैं तो उसी पर बैठ करके पार करते हैं। वही कहते हैं कि भाई ये नर्मदा जी मिलती, तो हाथ जोड़ लेते, मस्तक जोड़ लेते और आंखें तो अश्रु की बूंदे अभिषेक कर देती है नर्मदा को। इससे जुड़िए, ये नदी जीवन देने वाली नदी, ये नदी मध्य प्रदेश का उद्धार करने वाली नदी, ये जीवन, ये नर्मदा भीतर से हमको पवित्र करने वाली नदी। और यदि भीतर से पवित्र हो गया मनुष्य तो पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व पवित्र हो जाएगा। एक नदी पवित्रता का संकल्प लेकर के अपने तटों पे बह रही है, निरंतर आवाज दे रही है, आओ मेरे पुत्रों, मैं तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी रीति, तुम्हारी नीति, तुम्हारा गौरव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा मान, तुम्हारा बड़प्पन, तुम्हारे जीवन की सार्थकता और तुम्हारी जीवन लेने का धर्म बताने के लिए तो बह रही हूँ। मेरे नदी के, मेरे मेरे जल में पांव डुबो करके आचमन तो करो, पूरा संसार, पूरा तुम्हारा समग्र जीवन पवित्र हो जाएगा। ऐसी पवित्र नदी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये मेरी माँ है, ये जगत दात्री है, ये पतित पावनी है, ये मेकल सुता है और ये शिव कन्या है। शिव और नर्मदा का अटूट रिश्ता है। शिव है तो नर्मदा है, नर्मदा है तो शिव है। ऐसे शिव की पुत्री शांकरी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सब से विदा लेता हूं। मुझे अवसर दिया, वंदे मातरम।

ये था आज का खास कार्यक्रम जिसमें आपने वक्तव्य सुना डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती पर रविवार को रवींद्र भवन के अंजनी सभागार में आयोजित संगीतमय संध्या छूकर मेरे मन को में उनके सदाबहार गीतों ने श्रोताओं को स्वर्णिम दौर की यादों में डुबो दिया। KKFC म्यूजिक इंडिया और किशोर कुमार फैन क्लब द्वारा संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में सिंगर्स ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। गायक डॉक्टर राजेश ने छूकर मेरे मन को, नीले नीले अंबर पर और ये क्या हुआ जैसे गीत सुनाकर खूब तालियां बटोरी। अजय मिश्रा ने देखो वीर जवानों, राजेंद्र मालवीय ने देखा ना हायरे और डॉक्टर TN दुबे ने जिंदगी का सफर यह है ये कैसा सफर प्रस्तुत किया। वहीं मिहिका ने मुस्कान झूठी है गाया। संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रवीण कश्यप को किशोर कुमार सम्मान से विभूषित किया गया।

रविन्द्र भवन के गौरांजनी सभागार में रविवार को अजित म्यूजिक एकेडमी की ओर से आयोजित संगीत में संध्या राग रंग में फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर की यादें ताजा हो गईं। मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार को संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में एकेडमी के संस्थापक एवं संगीतज्ञ अजीत कलोसिया ने बताया कि कार्यक्रम में 5 वर्ष से 75 वर्ष तक के विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। आगाज प्रार्थना गीत ए मालिक तेरे बंदे हम से हुआ, फिर राज्यवर्धन जानौद और मिसिका ने डुएट से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। गीत था ये तेरा घर ये मेरा घर, वहीं कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का ये गीत भी गाया गया। अन्य गायकों ने जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, गुनगुना रहे हैं भंवरे ये तेरा घर ये मेरा घर, दिल की नज़र से, अच्छा जी मैं हारी गीतों पर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाई। आकाशवाणी की गायिका अक्षिका चौहान ने झुमका गिरा रे और पत्ता पत्ता बूटा बूटा की प्रस्तुति देकर समा बांधा।

श्रोताओं, भारत की सदियों पुरानी बुनाई और हस्तशिल्प परंपरा को करीब से देखने का अवसर भोपाल वासियों को 6 से 9 अगस्त तक मिलेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और मानव संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में बिछौना प्रदर्शनी में पारंपरिक हस्तनिर्मित कालीन, दरी, गलीचे और चटाइयों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत की समृद्ध बुनाई परंपरा, शिल्प कौशल और लोक तथा जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

और श्रोताओं, भोपाल शहर में आज होने वाले कुछ इवेंट्स की जानकारी आपको दे दें। भरतनाट्यम इवनिंग नृत्य लता में शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। नृत्य गुरु डॉक्टर लता मुंशी अपनी शिष्याओं के साथ नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपरा, भाव और भक्ति की प्रस्तुति देंगी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर परिचर्चा और रचना पाठ का आयोजन किया गया है। गुप्त जी के साहित्य की वर्तमान समय में प्रासंगिकता, इस विषय पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार कांति शुक्ला उर्मी करेंगी। इस परिचर्चा का स्थान है दुष्यंत संग्रहालय। समय है दोपहर 1 बजे से और नृत्य लता कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं रविन्द्र भवन में। समय शाम 6:30 बजे। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। अब परिक्रमा का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। आज की इस सभा में आपके साथ हूँ मैं, सुनीता सिंह। फिलहाल आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ कुछ देशभक्ति गीत।

अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशगान। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति रचनाएं। उम्मीद है आज के ये गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम आजाद हिंद में। मैं तारीख
2: और मैं इतिहास, हम दोनों प्रस्तुत करते हैं आपका पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम
1: आजाद हिंद। जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं देशभक्ति के गीत, क्रांतिकारी घटनाएं और उनसे जुड़े मुकदमे और क्रांति कथाएं, जिन्हें सुनकर आज भी हम प्रेरणा ले सकते हैं।
2: हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अपनी उस क्रांति विरासत की एक झलक दिखलाएं, जिस पे कोई भी देशवासी गर्व कर सके कि हम उस देश के वासी हैं जहां ऐसे देशभक्त वीर जन्मे थे और जिनके बलिदानों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो सका था।
1: मगर इतिहास, 15 अगस्त 1947 को सारा भारत आजाद नहीं हुआ था। गोवा तब भी पुर्तगालियों के ही अधीन था और यही बात देशवासियों के दिलों में चुभती थी कि शेष भारत की तरह गोवा अभी भी आजाद नहीं है।
2: उस समय गोवा को आजाद कराने के लिए जोरों से आंदोलन शुरू हो चुके थे। सारे भारतवासी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और अपनी जान कुर्बान करने को आतुर थे। इन्हीं में से एक थे नित्यानंद साहा जी, जो कि गोवा आंदोलन में 3 अगस्त 1955 को गोली खा के शहीद हो गए थे।
1: नित्यानंद साहा पूर्वी बंगाल के मैमनसिंह में जन्मे थे, जो कि अब बांग्लादेश में है। वे बंगाल की उस धरती में जन्मे थे जहाँ की आबो हवा में ही क्रांति बसती थी, जहाँ वंदे मातरम शब्द में इतना ओज था कि उसे सुनकर ही नौजवान अपने प्राणों का मोह छोड़कर देश के लिए कुर्बान हो जाते थे।

0: उन दिनों बहुत जोरदार तरीके से गोवा की आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा था। सारे देश से लोग आ आके इसमें अपना योगदान दे रहे थे और गोवा को आजाद करवाने की योजनाएं बन रही थीं।
1: जहां एक ओर सारे भारत में आजादी मिलने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ गोवा की गुलामी देशवासियों को रास नहीं आ रही थी। दरअसल ये एक छोटी सी फांस थी जो कि सारे भारतवासियों के मन में थी कि गोवा की आजाद हुए बिना ये आजादी अधूरी सी है। हालात कुछ यूं थे कि पूछे न हाल इस दिले खाना खराब का,

0: सारे देशवासी एक बार फिर एकजुट थे। उन्होंने कमर कस ली थी कि अब चाहे जो भी हो जाए मगर गोवा को स्वतंत्र करा के ही रहेंगे, और इसके लिए वे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थे।
1: सबका यही सोचना था कि जब हम ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ के फेंक सकते हैं तो पुर्तगालियों को क्यों नहीं। अब भाई का कोई काम नहीं है, और भाई हो भी क्यों, हम भारत भूमि के सपूत हैं, हमको किसी का भय नहीं।

0: जब मन में देशभक्ति की भावना हिलोरें मार रही हों और दिलों में आज़ादी का जुनून हो, तो कोई भी देशभक्त रुक ही नहीं सकता। फिर सामने चाहे आंधी आए या फिर तूफान, वो देशभक्तों को रोक नहीं सकता। और क्रांतिकारियों के दल सारे भारत से गोवा पहुंचने लगे।
1: उधर पुर्तगालियों ने क्रांतिकारियों को रोकने के लिए सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए थे, और जैसे ही क्रांति दल वहां पहुंचा, उन्होंने उन पर गोलियों की बौछार कर दी और बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हो गए।
0: मगर अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख के भी क्रांतिकारियों का जोश कम नहीं होता था, बल्कि वो दुगने उत्साह से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते थे, क्योंकि ये फैसले की घड़ी थी, या तो मर जाओ या आगे बढ़ो।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी, आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। जी हाँ, इस कार्यक्रम के लिए आपको इंतजार करना है बस कुछ पलों का। एक छोटे से अंतराल के बाद हम हाजिर होते हैं ये कार्यक्रम लेकर।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। और आज इस कार्यक्रम में बात होगी महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। श्रोताओं नमस्कार। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में यह के निज नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। श्रोताओं, ये पंक्तियां हैं महान राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की, जो हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया और इस तरह ब्रजभाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपने काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।
1: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के प्रखर नक्षत्र और माँ भारती के वरद पुत्र मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्याबाई था। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। माता पिता दोनों ही परम वैष्णव थे। मैथिली शरण जी के पिता एक निष्ठावान प्रसिद्ध राम भक्त थे। राम भक्ति और काव्य रचना मैथिली शरण जी को विरासत में मिली थी।
0: मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा झांसी के राजकीय विद्यालय में हुई, किंतु उसमें उनका मन नहीं रमा और उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। तब पिता ने इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया था। इसी तरह उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रजभाषा में कविता रचना आरंभ कर दी।
1: काव्य लेखन की शुरुआत उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी कविताएं प्रकाशित करवा के की। इन्हीं पत्रिकाओं में से एक सरस्वती नाम की पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलती थी। उसमें मैथिली जी की कविताएं प्रकाशित होती थी। 1910 में उनका पहला प्रबंध काव्य रंग में भंग प्रकाशित हुआ। भारत भारती के प्रकाशन के साथ ही वे एक लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित हो गए। उन्होंने जयद्रथ वध काव्य संग्रह प्रकाशित किया। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाद वध और ब्रजांगना का अनुवाद भी किया।
0: मैथिली शरण गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक तरफ वैष्णव भावना से भरा था तो साथ ही जागरण और सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से जुड़ा भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय मैथिली शरण जी के आदर्श रहे। महात्मा गांधी जी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पहले ही मैथिली शरण जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। अनग से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वो गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बने रहे। सन 1936 में गांधी जी ने मैथिली काव्य मान ग्रंथ भेंट करते हुए मैथिली शरण जी को राष्ट्रकवि का संबोधन दिया।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकालने वाले निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी दोनों पक्के मित्र थे। उनके मिलने का स्थान प्रताप प्रेस ही रहा करता था। एक बार 1915 में मुंबई से लौटते हुए गणेश शंकर जी पहले पहल चिरगांव में मैथिली शरण जी के घर पहुंचे। भोजन में गणेश जी ने दाल रोटी खाने की इच्छा जाहिर की, जबकि मैथिली जी उन्हें साग पूड़ी खिलाने जा रहे थे। उनकी इच्छा का ध्यान रखते हुए उन्हें दाल रोटी परोसी गई। यहीं से दोनों की मित्रता पक्की हो गई और फिर मैथिली शरण जी हमेशा गणेश शंकर जी की पसंद का ध्यान रखने लगे। अपनी कलम के वार से दोनों साहित्यकार देश को आजादी दिलाने के प्रयास में लगे थे। दोनों महापुरुष विशाल हृदय की संवेदना वाले थे, उनके हृदय उदार थे। काव्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी से संपूर्ण देश में राष्ट्रभक्ति की भावना उन्होंने भर दी थी। राष्ट्र प्रेम की इस तेज धारा का प्रवाह बुंदेलखंड क्षेत्र के चिरगांव से कविता के माध्यम से हो रहा था। बाद में राष्ट्र प्रेम की इस धारा को देश भर में प्रवाहित किया था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने।
0: जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रस धार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पिताजी के आशीर्वाद से वो राष्ट्रकवि के सोपान तक पदासीन हुए। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें 2 बार राज्यसभा की सदस्यता प्रदान की। हिंदी में मैथिली शरण जी की काव्य साधना हमेशा स्मरणीय रहेगी। बुंदेलखंड में जन्म लेने के कारण मैथिली जी बोलचाल में बुंदेलखंडी भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। धोती और बंडी पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर एक संत के रूप में वो अपनी हवेली में बैठे रहा करते थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना से हिंदी को समृद्ध किया। मैथिली शरण जी के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भर गए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वास और झूठे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति के नवीनतम रूप की कामना करते थे।
1: मैथिली शरण गुप्त जी को काव्य क्षेत्र का शिरोमणि कहा जाता है। मैथिली शरण जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार भारत भारती है। भारत भारती सन 1914 में प्रकाशित हुआ। भारत भारती उन दिनों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र बन गई थी। इसमें उन्होंने समकालीन प्रश्न को मुखर करने का प्रयास किया है। इस काव्य पुस्तक में अपने देश के प्रति निष्ठा और प्रेम दर्शाया गया है। इस कृति में 3 खंडों में भारत के उत्थान पतन की कथा को अतीत, वर्तमान और भविष्य खंडों में चित्रित किया गया है। इसमें कवि ने परतंत्र देश के समकालीन राष्ट्र प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए देशवासियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया है, साथ ही साथ उनसे देशभक्ति और देश के उद्धार के पथ पर चलने का आह्वान किया है।
0: श्रोताओं, भारत भारती का अतीत खंड, ये भाग भारत वर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूरी तरह से विवश करता है। उस समय के दर्शन, धर्मकाल, प्राकृतिक संपदा, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था जैसे तत्वों को संक्षिप्त रूप में स्मरण करवाया गया है। निरपेक्षता का ध्यान रखते हुए निंदा और प्रशंसा की बातें बताई गई हैं। जैसे मुगल काल के कुछ क्रूर शासकों की निंदा हुई है, तो अकबर जैसे मुगल शासक का बखान भी हुआ है। अंग्रेजों की उनके आविष्कार और आधुनिकीकरण के प्रचार के कारण प्रशंसा भी हुई है। भारत वर्ष के दर्शन पर वे कहते हैं, पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है, गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, व्यास और कणाद है। नीति पर उनके द्विपद ऐसे हैं, सामान्य नीति समेत ऐसे राजनीतिक ग्रंथ हैं, संसार के हित जो प्रथम पुण्याचरण के पंथ है। और श्रोताओं, सूत्र ग्रंथ के संदर्भ में ऋषियों की विद्वता पर वो लिखते हैं, उन ऋषि गणों ने सूक्ष्मता से काम कितना है लिया, आश्चर्य है, घट में उन्होंने सिंधु को हे भर दिया।
1: अश्रोताओं, अब बात करते हैं भारत भारती के वर्तमान खंड की। दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। अपनी हुई आत्मविस्मृति पर वे कहते हैं, हम आज क्या से क्या हुए, भूले हुए हैं हम इसे, है ध्यान अपने मान का, हम में बताओ अब किसे, पूर्वज हमारे कौन थे हमको नहीं ये ज्ञान भी, है भार उनके नाम पर दो अंजलि जलदान भी।
0: नैतिक और धार्मिक पतन के लिए मैथिली शरण जी ने उपदेशकों, संत महंतों और ब्राह्मणों की निष्क्रियता और मिथ्य व्यवहार को दोषी मान शब्द बाण चलाए। इस तरह कविवर की लेखनी सामाजिक दुर्दशा के मुख्य कारणों को खोज उनके सुधार की मांग करती है। हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की निष्क्रियता को उजागर करते हुए भी वर्तमान खंड आशा की गांठ को बांधे रखती है।
1: और अब बात करते हैं भारत भारती के भविष्य खंड की। अपने ज्ञान, विवेक और विचारों की सीमा को छूते हुए राष्ट्रकवि ने समस्या समाधान के हल खोजने और लोगों से उसके लिए आह्वान करने का भरसक प्रयास किया है। आर्य वंशज हिंदुओं को देश पुनर्स्थापना के लिए प्रेरित करते हुए वे कहते हैं, हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं, संसार में किस जाति के किस ठौर वैसे प्राप्त हैं, भव सिंधु में निज पूर्वजों के रीति से ही हम तरें, यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें।
0: पुस्तक की अंत की दो रचनाएं शुभकामना और विनय कवि की देशभक्ति की परिचायक है। तन में देश के प्रति श्रद्धा की ऊर्जा का संचार करने वाली ये दो रचनाएं किसी प्रार्थना से कम नहीं लगती। वो अमर लेखनी ईश्वर से प्रार्थना करती है, इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवन भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, जड़तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधा पूर्ण है, हे रंब अब अवलंब देकर विघ्न हर कहलाइए। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती काव्य संग्रह के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। भारत के राष्ट्रीय उत्थान में भारत भारती का योगदान अमिट है।
1: सन 1916-17 में मैथिली जी ने महाकाव्य साकेत का लेखन प्रारंभ किया। इसमें उन्होंने उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव को दूर किया है। उर्मिला के चरित्र के द्वारा मैथिली जी ने उस समय की स्त्रियों की दशा का सटीक चित्रण किया है। उर्मिला भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी है। रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के त्याग का वर्णन मिलता है, लेकिन उर्मिला के लिए बहुत कम पंक्तियां रची गई हैं, जबकि उनका त्याग भी विलक्षण है। पति लक्ष्मण भाई राम के साथ वनवास चले गए, तब 14 वर्ष उसने विरह की अग्नि में जलकर बिताए। मैथिली जी ने उस दर्द को महसूस करते हुए अपनी कल्पना शक्ति से यह मार्मिक रचना लिखी। इस रचना के द्वारा उन्होंने उपेक्षित और शोषित नारी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वे शोषण मुक्त समाज के पक्षधर हैं। उन्हें वही राम राज्य पसंद है जहां एक राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सभी सुखों का त्याग कर देता है।
0: साकेत में उर्मिला जी के विरह के दुखों का वर्णन करते हुए मैथिली शरण जी ने लिखा, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने तू वो हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिक अनी, ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगंबू सनी, तू ही उष्ण उसे रखेगी मेरी तपन मनी।
1: श्रोता 1931 में पंचवटी और साकेत छपकर आए। 1932 में यशोधरा का प्रकाशन हुआ। यशोधरा में उन्होंने लिखा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको ही अपनी पग बाधा ही पाते, मुझको उन्होंने बहुत माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते।
0: नारी सशक्तिकरण के अलावा मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के उत्थान और जन जागरण का स्वर प्रमुख होता है। भारत भारती के अलावा किसान, आर्य, जय भारत और मातृभूमि जैसी कविताओं में उनके देश और समाज के प्रति रुझान का साफ परिचय मिलता है। अपनी आर्य कविता संग्रह में उन्होंने लिखा है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वो कौन भारतवर्ष है, वो कौन भारतवर्ष है।
1: और श्रोताओं, आइए अब बात करते हैं मैथिली शरण जी की मुख्य कृतियों की। 1910 में सबसे पहले आया जयद्रथ वध, फिर 1912 में उनकी अमर कृति भारत भारती, 1925 में पंचवटी, 1933 में साकेत, 1932 यशोधरा, 1957 विष्णुप्रिया, झनकार आया 1929 में जय भारत 1952, द्वापर 1936 और फिर कुणाल गीत, अजित, अर्जन और विसर्जन और काबा करबला। इन रचनाओं के साथ ही गुप्त जी ने कुछ मौलिक नाटक भी लिखे हैं, जैसे अनग, चरणदास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय प्रतिरोध और विसर्जन।
0: उनकी कुछ अनुवाद की हुई कृतियां भी हैं। मैथिली शरण जी ने रुबाइयात उमर खय्याम और संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदता का अनुवाद भी किया। उन्हें कई सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले। 1936 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साकेत के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। 1946 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग में साहित्य वाचस्पति का सम्मान मिला। सन 1948 में लखनऊ विश्वविद्यालय से मानद डी लिट की उपाधि से विभूषित किया गया। हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1952 से 1964 तक वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। सन 1953 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1962 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। सन 1954 में मैथिली शरण जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: श्रोताओं, अपने इस साहित्यिक सफर के दौरान समृद्ध साहित्य का खजाना देकर 12 दिसंबर 1964 को चिरगांव में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना से हिंदी को समृद्ध किया। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत और नाटिकाएं लिखी। हिंदी कविता के इतिहास में मैथिली शरण जी का ये सबसे बड़ा योगदान है। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। साकेत में उर्मिला के दर्द को करुणा के साथ व्यक्त किया गया है कि इस करुण चित्रण को पढ़कर पाठक के मन में करुणा की ऐसी तरंग उठना अनिवार्य है कि आंखें बरबस ही नम हो जाएं और राष्ट्र कवि की साहित्यिक क्षमता को नमन कर उठें। कमल तुम्हारा दिन है और कुमुद यामिनी तुम्हारी है, कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान बारी है। धन्य कमल दिन जिसके, धन्य कुमुद रात साथ में जिसके, दिन और रात दोनों होते हैं हाय हाथ में किसके।
0: श्रोताओं, महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को हम शत शत नमन करते हैं। और आइए अंत में हम आपको सुना रहे हैं उनकी ही एक कविता जो हमने अपने स्कूल के दिनों में बहुत मन लगाकर पढ़ी है। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में,
1: स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में,
0: पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों की नोकों से,
1: मानो झूम रहे हूँ तरु भी मंद पवन के झोंकों से,
0: पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना,
1: जिसके बाहर स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना,
0: जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है,
1: भोगी अनुगामी योगी सा बना दृष्टिगत होता है,
0: बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है,
1: जिसकी सेवा में रत इसका तन मन जीवन है।
0: श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, जो आज केंद्रित था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी पर। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की।
2: शब्दों के शिल्पकार, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने विवेकानंद के बचपन की बातें तथा उनके रायपुर प्रवास के दिनों के बारे में जाना। लगभग 1.5 वर्षों तक रायपुर में रहकर नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ परिवार के साथ कलकत्ता लौट आए। रायपुर में नरेंद्र के स्वास्थ्य में काफी सुधार आ गया था। वे स्वस्थ, सबल और हष्टपुष्ट हो गए थे। बुद्धि काफी बढ़ गई थी तथा आत्मसम्मान के प्रति वे सचेत हो गए थे। ज्ञान में भी वे अपने हम उम्र साथियों से काफी आगे बढ़ गए थे। परंतु दीर्घ काल तक विद्यालय में नियमित अध्ययन नहीं करने के कारण कलकत्ते में शिक्षक गण उन्हें 10वीं कक्षा में भर्ती करने को तैयार न थे। बाद में विशेष अनुमति के फलस्वरूप उन्हें उसी कक्षा में ले लिया गया। नरेंद्र मेधावी तो थे ही, अल्प समय में ही उन्होंने अनपढ़े विषयों को जान लिया और सन 1879 में प्रवेशिका परीक्षा दी। परीक्षा फल प्रकाशित होने पर सभी आश्चर्यचकित हो गए। नरेंद्र सिर्फ पास ही नहीं हुए बल्कि उस वर्ष विद्यालय से वे अकेले ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। इस सफलता के लिए उनके पिता ने उन्हें एक चांदी की घड़ी दी थी।
1: नरेंद्र शुद्ध किताबी कीड़ा नहीं होना चाहते थे। वे मनपसंद विषयों को अधिक समय देते। इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी, इसलिए मार्शमैन, एल्फिंस्टन आदि विद्वानों की भारतीय इतिहास की पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली। अंग्रेजी और बंगला साहित्य भी उन्होंने खूब पढ़ा, परंतु गणित उस ओर तो ध्यान ही नहीं देते थे। प्रवेशिका परीक्षा के मात्र 2 दिन पहले उन्होंने देखा कि रेखा गणित तो छुआ ही नहीं। तब सारी रात जाकर पढ़ने लगे और 24 घंटों में रेखा गणित की 4 पुस्तकें पढ़कर परीक्षा दे दी।
0: इन्हीं दिनों उन्होंने पुस्तक पढ़ने की एक नई रीति की खोज की। उन्होंने एक बार कहा था,
2: ऐसा अभ्यास हो गया था कि किसी पुस्तक को पंक्तिशः नहीं पढ़ने पर भी मैं उसे समझ लेता था। हर पैराग्राफ की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़कर ही उसका भाव ग्रहण कर लेता। ये शक्ति जब और बढ़ गई तब पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पृष्ठ की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़कर ही समझ लेता।
1: नरेंद्र बड़े ही साहसी और न्यायपरायण थे। कलकत्ते में उन दिनों रंगशालाओं का सूत्रपात हुआ था, जहां नरेंद्र प्रायः नाटक देखने जाया करते थे। एक बार की बात है, नरेंद्र एक रंगशाला में नाटक देख रहे थे। अचानक वहीं का एक चपरासी रंगमंच पर चढ़ाया और नाटक के बीच में ही एक अभिनेता को रोककर कहा,
3: यह आपकी गिरफ्तारी का वारंट है, आपको गिरफ्तार किया जाता है, अदालत का आदेश है, मेरे साथ चलिए।
0: अचानक इस रुकावट से सभी अभिनेता और दर्शक सकपका गए। नाटक रुक गया, नरेंद्र से रहा नहीं गया, वे गरज उठे,
3: स्टेज से बाहर निकल जाओ, जब तक नाटक खत्म ना हो बाहर खड़े रहो, इस तरह लोगों को तंग करने का क्या मतलब।
0: सभी दर्शकों ने उनका समर्थन करते हुए कहा, निरुपाय हो चपरासी बाहर चला गया। सभी ने नरेंद्र की पीठ थपथपाई।
3: वाह नरेंद्र, बहुत अच्छी बात, अगर तुम नहीं होते तो आज का नाटक बंद ही हो जाता।
0: नाटक फिर से शुरू हुआ। विद्यालय में पढ़ते समय ही नरेंद्र वक्तत्व कला में पारंगत हो गए थे। एक बार मेट्रोपॉलिटन स्कूल में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होना था। उसी दिन एक प्रिय शिक्षक का विदाई समारोह भी होना था। सभी छात्रों ने मांग की कि नरेंद्र ही छात्रों की ओर से विदाई भाषण देगा और वो भी अंग्रेजी में।
1: नरेंद्र उन दिनों अंग्रेजी जानते तो थे, पर दोस्तों के साथ बातें करना और मंच पर भाषण देना अलग बात थी। उस अनुष्ठान का समापतित्व कर रहे थे श्री सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, जो अपने भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। नरेंद्र राजी हो गए और निर्भीक होकर आधे घंटे तक अपने प्रिय शिक्षण की विदाई पर भाषण दिया कि उनके स्थानांतरण से छात्रगण कितने दुखी हैं और विद्यालय की कितनी क्षति हुई। सभापति महोदय ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। बाद में एक बार उन्होंने नरेंद्र के लिए कहा था कि भारत में मैंने जितने वक्ताओं को सुना है उनमें नरेंद्र सर्वोत्तम है।
0: सिर्फ भाषण कला ही नहीं, वाद विवाद में भी वे निपुण थे। कहानी सुनाना, सहपाठियों को विभिन्न विषय आसानी से समझा देना, किसी भी तर्क सभा या विचार विमर्श में भाग लेना उनके लिए बहुत ही सामान्य बात थी। उनकी ईश्वर प्रदत्त सुंदर आकृति, गंभीर आवाज, सुमधुर संगीत और काव्य पाठ उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देते थे।
1: आइए अब उनकी संगीत चर्चा के विषय में कुछ जानें। स्वामी विवेकानंद एक मेधावी सन्यासी, एक महान सुधारक, एक उत्साही देशभक्त, एक प्रचंड वक्ता और एक सुयोग्य संगठक के रूप में अपने सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। परंतु बहुत लोगों को ये पता नहीं कि वे एक महान संगीतज्ञ भी थे।
0: पहले पहल उन्होंने अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा लेना शुरू की। खासकर संगीत प्रेमी विश्वनाथ जब रायपुर में थे, तब उन्होंने नरेंद्र को अपने पास पाकर कई प्रकार के गाने सिखाए। कार्यवश जब विश्वनाथ पश्चिमी भारत में थे, तब ठुमरी, टप्पा, गजल आदि उन्होंने सीखे थे, तथा मौका मिलते ही अपने पुत्र को भी इन सब में उत्साहित और प्रवीण कर दिया था। बाद में उस्ताद से नरेंद्रनाथ ने संगीत विद्या शास्त्रीय नियम के अनुसार सीखी थी। उन्होंने वेणी उस्ताद या वेणी माधव अधिकारी महोदय से संगीत की शिक्षा पाई थी। उस्ताद अहमद खान साहब से उन्होंने ध्रुपद व ख्याल सीखा और ब्रह्म समाज के एक सदस्य श्री काशी घोषाल से उन्होंने इसराज एवं मृदंग सीखा। दूसरे शिक्षकों से उन्होंने तबला और सितार भी सीखा था।
1: परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी की एकनाथ पंडित नामक एक वरिष्ठ संगीतज्ञ से मुलाकात हुई। पंडित जी ध्रुपद गायक थे। स्वामी जी के गाने के साथ स्वामी जी मृदंग पर संगत करने लगे। स्वामी जी के इस मृदंग वादन से गायक और श्रोता पूर्णतः संतुष्ट हुए, और जब सबको पता चला कि वे स्वयं भी अच्छे गायक हैं, तो लोगों ने उनसे गाने का अनुरोध किया। वे तानपुरा उठाकर ध्रुपद का आलाप लेने लगे। जब वे गीत के लय पर आए तो कोई भी मृदंग पर संगत नहीं कर पाया। सहसा उन्होंने तानपुरा एकनाथ पंडित के हाथ में सौंपते हुए मृदंग उठा लिया और स्वयं ही अपनी संगत करने लगे। इस अद्भुत घटना पर विस्मित होकर पंडित जी ने कहा था, स्वामी जी, आप केवल गायक ही नहीं, नायक भी हैं।
0: नायक की उपाधि ऐसे संगीतज्ञ को दी जाती है जिसमें सफल प्रदर्शन, संगीत रचना की क्षमता, संगीत शास्त्रों का ज्ञान और श्रोताओं को अभिभूत करने की क्षमता हो। जानकारों को मालूम है कि ध्रुपद गायन जिसमें षट प्राण और षट संगत लगते हैं, उसके साथ मृदंग से स्वयं ही संगत कर पाना प्रायः असंभव सा है। इन दोनों को एक साथ अकेले ही सफलतापूर्वक कर दिखाना एक अतिमानवीय कार्य है।
1: उनके समकालीन बंगाल के संगीतज्ञों में प्रमुख थे रविंद्रनाथ ठाकुर, श्रैलोक्यनाथ सान्याल और द्विजेंद्रनाथ ठाकुर। स्वामी जी ने सुव्यवस्थित ढंग से ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन और टप्पा का अध्ययन किया था। वे एक रचनाकार भी थे। उन्होंने संस्कृत, बंगला और हिंदी में अनेक गीतों की रचना की थी और उन्हें विभिन्न शास्त्रीय रागों एवं तालों में निबद्ध भी किया था, जिनमें से सबसे प्रमुख है खंडन भव बंधन, जो राग यमन और ताल चौताल में है। यही भजन आज भी रामकृष्ण आश्रम के सभी केंद्रों में गाई जाने वाली दैनिक प्रार्थना है।

0: गायन के सभी अंगों में ध्रुपद उनका सबसे प्रिय था। वे कहा करते थे,
1: ख्याल टप्पा बंद करके ध्रुपद गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छंदों के उच्चारण से देश में प्राण संचार कर देना होगा।
0: वे गायन के बारे में और भी बहुत कुछ कहा करते थे। गायन में भावों के उपयोग को वे श्रेष्ठ मानते थे, ये एक पूर्व वर्णित प्रसंग में आप जान चुके हैं। वे कहते थे,
1: भाई ध्रुपद और ख्याल गायन एक विज्ञान है, परंतु भजन, कीर्तन, माथुर और विरह तथा ऐसी अन्य रचनाओं में सच्चा संगीत निहित है, क्योंकि उनमें भाव है। भाव ही संगीत की आत्मा है, रहस्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल भाव मात्र ही संगीत है, पर ऐसी बात नहीं। दूसरी ओर भाव विहीन परंतु संगीत के व्याकरण शास्त्र पर आधारित शब्दों की कसरत भी संगीत नहीं है। लोक संगीत की मधुरता, शास्त्रीय संगीत का विज्ञान और कीर्तन का भाव, इन्हें मिलाने से ही आदर्श संगीत की सृष्टि होगी।
2: स्वर चिन्ह और श्रुतियों के बारे में उनका कहना था,
1: जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं, उन्हें तो टप्पा कर्कश ही लगता है। क्या आप सोचते हैं कि टप्पा को नाक से गाते हुए बिजली के समान एक सुर से दूसरे सुर दौड़ना कोई उत्कृष्ट संगीत है? नहीं, जब तक प्रत्येक सुर में ठहराव ना हो, संगीत की सृष्टि नहीं हो सकती। तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक स्वर के पीछे दूसरा स्वर इतनी द्रुत गति से आता है, तो केवल संगीत की सुषमा ही नष्ट नहीं होती, वरन एक प्रकार का बेसुरापन पैदा हो जाता है।
2: स्वामी जी को पाश्चात्य संगीत के बारे में भी अच्छा ज्ञान था। उसमें गहराई तक बैठने के बाद उन्होंने उसके बारे में उच्च धारणा बना ली थी। उन्होंने कहा था,
1: जब मैंने पाश्चात्य संगीत को ध्यान पूर्वक सुनना शुरू किया और उसके शास्त्रीय पक्ष का अध्ययन किया, तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सभी कलाओं का यही हाल है, पर हमारे संगीत

0: सन 1879 में प्रवेशिका परीक्षा में पास होकर नरेंद्रनाथ जब कॉलेज में भर्ती हुए उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। परीक्षा की तैयारी करते समय 3 वर्षों का पाठ केवल 1 वर्ष में ही समाप्त कर लेने पर उनको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा था। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन तो करने लगे पर मलेरिया से पीड़ित होकर उन्हें उस वर्ष के लिए कॉलेज छोड़ना पड़ा। दूसरे वर्ष वे जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में भर्ती होकर एफए पढ़ने लगे।
1: जिस समय नरेंद्रनाथ एकाग्र चित्त से दर्शन शास्त्र या उच्च साहित्य संबंधी पुस्तक पढ़ते होते उस समय वे एक दूसरे ही व्यक्ति प्रतीत होते थे। एफए परीक्षा के पहले ही उन्होंने मिल आदि पाश्चात्य न्याय शास्त्रविदों की पुस्तकों को पढ़ लिया था और ह्यूम व हर्बर्ट स्पेंसर आदि के दार्शनिक ग्रंथों को भी आत्मसात कर लिया था।
0: उस कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी साहब बड़े पंडित, कवि और दार्शनिक थे। नरेंद्रनाथ और ब्रजेंद्रनाथ आदि कुछ प्रतिभाशाली छात्र उनके विशेष प्रिय थे। वे उनके पास नियमित रूप से दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते थे। हेस्टी साहब एक दिन कॉलेज में नरेंद्र का दार्शनिक विश्लेषण करते सुन बहुत संतुष्ट हुए और कहा, नरेंद्र दर्शन शास्त्र के अति उत्तम छात्र हैं। इंग्लैंड और जर्मनी के सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा एक भी छात्र नहीं जो इनके समान मेधावी हो।
1: पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन शास्त्रों की आलोचना ने नरेंद्र के हृदय में एक विराट द्वंद्व पैदा कर दिया। उनका जन्मगत संस्कार और गहरा विश्वास चारों ओर की स्थिति के संघर्ष में आकर डगमगाने लगा। डेकार्ट का अहमवाद, ह्यूम और बेन की नास्तिकता, डार्विन का विकासवाद और सबसे ऊपर स्पेंसर का अज्ञेयवाद इत्यादि विभिन्न विचारधारा में बहते हुए नरेंद्रनाथ सत्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठे। क्रमशः बढ़ती हुई ज्ञान पिपासा लेकर नरेंद्र जितना ही अग्रसर हुए उतना ही वे समझने लगे कि परम सत्य को प्राप्त करना हो तो केवल विचार बुद्धि द्वारा दार्शनिक सूक्ष्म तत्वों की मीमांसा में लगे रहने से काम नहीं चलेगा, परंतु उपाय क्या है।
0: अतः वे सत्य की खोज में अपने मन को केवल दर्शन, साहित्य, विज्ञान एवं इतिहास की चर्चा में ना लगाकर जीते जागते आदर्श की खोज करने लगे। नरेंद्रनाथ सत्य की उपलब्धि की प्रेरणा से ही ब्राह्म समाज में गए थे। वे साधारण ब्राह्म समाज के सदस्य तो बने पर कुछ बंधे हुए मतवाद और नियमित उपासना आदि द्वारा उनकी आध्यात्मिक तृष्णा शांत नहीं हुई। ब्राह्म समाज में सम्मिलित होने के पहले ही नरेंद्र राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पुस्तकों तथा लेखों से परिचित हो चुके थे। वे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र के पास भी आलोचना के लिए जाया करते थे, परंतु उपासना के विषय में वे समाज के दूसरे व्यक्तियों से सहमत ना हो सके। बुद्धिमान तथा दृढ़ निश्चय नरेंद्र दूसरों के विचार को बिना स्वयं विचार किए मान लेने वालों में से नहीं थे। लोगों के द्वारा आपत्ति करने पर वे पाश्चात्य दार्शनिकों की युक्तियों को समझते और लोगों को हार माननी पड़ती।
1: रविवार को अक्सर नरेंद्र उपासना के समय ब्रह्म संगीत गाकर सदस्यों को प्रसन्न करते थे, परंतु उनका वैराग्यशील मन ब्रह्म समाज में त्याग और धार्मिक बुद्धि की कमी देखकर सिर्फ उनकी उपासना से तृप्त न होता था।
0: उन दिनों नरेंद्रनाथ महर्षि देवेंद्रनाथ के कहने पर अधिक से अधिक समय ध्यान करते थे। यही नहीं, उन्होंने निरामिष भोजन भी शुरू कर दिया। जमीन पर सोते थे, सफेद धोती और चादर पहनते थे, यानी शारीरिक कठोरता का पालन करते थे। उन्हीं दिनों उन्होंने पास ही में अपनी नानी के घर में ऊपर 2 मंजिले पर एकांत में एक कमरे की इच्छा जाहिर की। इस पर किसी ने आपत्ति भी नहीं की। वे उस कमरे में अध्ययन, संगीत और शेष समय साधना, भजन और ध्यान किया करते थे।
1: इस तरह दिन बीतते गए पर उनकी सत्य की खोज पूरी नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई। अतः वे इस निष्कर्ष पर आए कि सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की शरण चाहिए जिसने स्वयं उस सत्य का साक्षात्कार किया हो। उन्होंने उसी समय प्रण कर लिया था कि या तो इस जीवन में सत्य को प्राप्त कर

0: करना होगा, नहीं तो प्राण त्याग देंगे।
1: पाश्चात्य दार्शनिकों के विचारधाराओं से आलोकित तथा युक्तिवादी ब्राह्म समाज के सदस्य होते हुए भी वे सद्गुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठे।
2: कलकत्ते के शिमला मोहल्ले में सुरेंद्रनाथ मित्र महोदय एक दिन अपने घर पर श्री रामकृष्ण देव को ले आए। उस दिन एक उत्सव का आयोजन किया गया, काफी लोग उसमें शामिल हुए। उन्हें रामकृष्ण देव का दर्शन जो करना था।
1: उस दिन किसी अच्छे गायक के न मिलने पर मित्र महोदय पड़ोस से नरेंद्र को बुला लाए। सन 1881 के नवंबर मास में श्री रामकृष्ण देव के साथ नरेंद्रनाथ की पहली मुलाकात हुई। उस दिन वे नरेंद्र का गाना सुनकर अति संतुष्ट हुए और बड़े आग्रह के साथ पूछताछ करके उन्होंने नरेंद्र से एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में आने का अनुरोध भी किया।
2: इस बीच एफए परीक्षा के लिए व्यस्त रहने के कारण नरेंद्र दक्षिणेश्वर जाने की बात भूल गए। परीक्षा समाप्त होने पर उनके पिता उनसे विवाह के लिए आग्रह करने लगे, क्योंकि उनके भावी श्वसुर ने दहेज के रूप में 10,000 रुपए देने का वचन दिया था। पर नरेंद्र तो बचपन से ही विवाह के घोर विरोधी थे। किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना विश्वनाथ बाबू के स्वभाव में न था। उन्होंने स्वयं पुत्र से और कुछ नहीं कहा, पर रिश्तेदारों के द्वारा नरेंद्र को मनाने का प्रयत्न किया।
3: नरेंद्र, मैं बूढ़ा हो गया हूं रे, अब उचित समय है कि तुम विवाह करके अपना घर बचा लो।
4: बिली बेटा, तेरे पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं।
5: माँ, मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। आपको तो पता है मैंने बचपन में ही प्रण कर लिया था कि विवाह नहीं करूंगा।
4: बचपन की बातें छोड़, अब तो तू बड़ा हो गया है।
5: माफ करना माँ, मुझे अपनी राह पर अकेले ही चलना है। आप लोग उस यात्रा को मत रोकिए, मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ। मुझे अकेले ही सत्य की खोज करने दीजिए।
2: माता पिता दुखी मन से चुप हो गए। प्रसिद्ध डॉक्टर रामचंद्र दत्त उनके रिश्तेदार थे। उन्होंने नरेंद्र से कहा,
6: अगर वास्तव में सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो ब्रह्म समाज आदि स्थानों में ना भटक कर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें सही रास्ता दिखा देंगे।
2: नरेंद्र न जाने क्या सोचकर सहमत हुए और थोड़े दिनों बाद ही दो चार दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। उस दिन नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल गई।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की इस प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। समय हो रहा है इस सभा के समापन का। आपसे विदा लें उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको अवगत करा दें। आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। शाम 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम पिंगली वेंकैया पर केंद्रित होगा। सुनो कहानी, इस कार्यक्रम में शाम 6:30 आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन। शाम 7 बजे कला कल्लोलिनी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का ये कार्यक्रम राम गोपाल बजाज पर केंद्रित होगा। हमारा विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:30। इसमें सुनिएगा डॉक्टर श्रीराम परिहार का व्याख्यान, विषय नर्मदा अंचल की मूर्त और अमूर्त धरोहर। रात 8:30 आजाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे नित्यानंद साहा की। शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज रात 9 बजे चर्चा होगी मैथिली शरण गुप्त की। और रात 9:30 सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हमें उम्मीद है कि हमारे आज के सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे और आज सुबह की जो एक यात्रा हमारे साथ आपकी शुरू हुई वो खूबसूरत रही होगी। ये जो कार्यक्रम हमने आपको बताए ये आप सुन सकेंगे हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में, लेकिन दोपहर में भी हमारे कार्यक्रम आपके लिए जारी रहेंगे। 12 बजे तराने आज़ादी के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे और उसके बाद 1 बजे भारत भारती कार्यक्रम का आनंद लेंगे। इस तरह से कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो अब इस प्रसारण सभा से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आजादी के।

देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति रचना।

तराने आजादी के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से मुझे, नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर न आए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे पराग चौधरी का गायन, और उसके बाद प्रस्तुत किया जाएगा बांसुरी वादन अजय प्रसन्ना का। तो सबसे पहले लीजिए पेश है गायन पराग चौधरी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अभी आपने सुना गायन पराग चौधरी का, और उसके बाद लीजिए अब प्रस्तुत है अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाया पराग चौधरी का गायन। उसके बाद आपने आनंद लिया बांसुरी वादन का, जिसे पेश किया अजय प्रसन्न ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी, मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है, उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी। फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं, तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन और ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
3: मैं आई कम इन सर?
4: यस कम इन, फरमाइए।
3: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
4: नोटिस? मगर किस बात का?
3: कंपेंसेशन का सर।
4: कंपेंसेशन? मगर वो कैसा?
3: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
4: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
3: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
4: है?
3: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना, बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है। और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
4: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
3: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था, मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
4: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
3: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
4: क्या?
3: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
4: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है कोई फैक्ट्री नहीं, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
3: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
4: अच्छा,
3: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
4: क्या कह रहे हो?
3: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
4: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
3: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
4: और अगर हम ना बोल दें तो?
3: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
5: ओह नो।
3: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
4: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
3: शौक से करिए, 1 हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत
1: श्रीमान।
0: हुए हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: सर, मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कपाल भारती जी,
0: हाँ,
1: अरे वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो
2: ना ना ना ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी, वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने?
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं रही सर वो।
1: हाँ
0: ओ भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुर सेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: Sit down, मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: ये है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और ये है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर 7।
4: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधू एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
4: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? 7 ही ना।
4: हाँ, चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
4: हाँ
3: अंधे कवि। सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया, तुलसीदास।
4: तुलसीदास, मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ
3: जी,
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए अब बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा,
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे, ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
4: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
4: हाँ
3: सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी, अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए। अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
2: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है। आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे, सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
2: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2×2=4। सर 4 दिनों में।
2: थोड़ा सोचकर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
2: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
2: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
2: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी
2: और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
5: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
2: 12 पेंसिलों का, 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
5: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
2: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए, हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
5: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
2: सर 50 किलोमीटर का।
5: मगर कैसे?
2: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुरसेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
2: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
2: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
2: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
2: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
2: बहन छायावती ने।
0: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
2: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए, बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया। बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
2: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
2: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
2: जी।
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
2: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
2: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुरसेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
2: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कन्हैया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
5: जी सर।
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
5: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
5: सुनिए सर।
0: अरे वाह,
2: फिर
0: बुलाइए। चतुरसेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%। लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
2: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
2: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
0: चतुर सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
2: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
4: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
0: बताइए बताइए,
4: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे। वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
2: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर लाइए, ये चेक मुझे दे दीजिए।
0: बिल्कुल नहीं भुंजी, भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
2: सर,
0: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती और मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशील खत्री थे। बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ आते थे, हमेशा आदर सत्कार हुआ करता था, पूरे मोहल्ले में धूम थी। रोज ही दरवाजे पर किसी न किसी बहाने इष्ट मित्र एकत्रित होते थे, टेनिस खेलते थे, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी होता और क्या चाहिए। समाज की भी वो बहुत सेवा करते थे। समाज सुधार के लिए दिल्ली में सोसाइटी थी, बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से वो पूरा भी करते थे। जब उनका नौकर बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी सेवा की थी। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध नहीं था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में सर्वहारा वर्ग नशे करके गाते बजाते थे तो उन्हें बहुत शोक होता था। ये उनके प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी थी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए थे। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन शोक की लहर फैल गई थी। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदाशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश नहीं था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, वे सच्ची देश हितेशिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सत्कार करने में हम अद्वितीय हैं, हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मिस्टर राम रक्षा आवश्यकताओं से भी बेपरवाह नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 2 बल्कि कभी कभी 3 वक्तृताएं अवश्य तैयार करते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सुंदर होती थी। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते थे और आश्चर्यचकित होकर कहते थे, वाह, आपकी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब का ये जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सुद्योग में भाग लिया भी तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी, इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना या कुढ़ाना सास की आदत नहीं थी, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दिल्ली छोड़कर अयोध्या चली गई, तब से वहीं हैं। बाबू साहेब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाते हैं, किंतु वो दिल्ली आने का नाम कभी नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था, वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में वो साड़ू भी होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे, प्रातःकाल यमुना स्नान, गाय को अपने हाथों से झाड़ना पोछना, उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव नहीं मिलता था। परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वो सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मांग लिया करते थे। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, ना कोई दस्तावेज, ना स्टाम्प, ना साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वहां से आ गया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया था, उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे धीरे यही कोई 20,000 का अब मामला हो चुका था। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे, समझते थे कि उनके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है,
जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-4 साल बीत गए, सेठ जी के तकाजों की अपेक्षा मिस्टर राम रक्षा की मांग बढ़ गई, तो गिरधारी लाल को भी संदेह हो गया। वो एक दिन राम रक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो अच्छा होगा। ये कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र उन्होंने दिखा दिए। मिस्टर राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे थे, तो बोल उठे, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, थोड़ा जल्दी है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया, वे गुस्सा हो गए। आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है, 200 रुपये मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी, पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे, वे राम रक्षा के इस कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। उन्होंने कहा, मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में मान में ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, चाहूँ तो ऐसों को तो मैं नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह ऐसा रूखा बर्ताव, वो हाथ बांधे मेरे सामने ना खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान इलायची इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वो तिनक गए और बोल उठे, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने भी अकड़कर उत्तर दे दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशील हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर ना हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी कि हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा और वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुलाकर लाओ। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट। किंतु जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया। बहुत कुछ टटोला गया, कुछ हाथ नहीं था। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया था वो डूब गया। कलकत्ते के व्यापारियों से जो माल मंगाया था, रुपये चुकाने की तिथि सिर पर थी और रुपया वसूल नहीं हुआ। रात भर करवटे बदलते रहे चिंता में। अब क्या करना चाहिए, गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा कच्चा हाल उन्होंने सुना तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कठिन कार्य है। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है, वही हाल अब राम रक्षा की थी। वो पलंग से ना उठे, हाथ मुंह भी नहीं धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पढ़ने पर कोई साथी नहीं है, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़े। इस ख्याल से मित्रों को इस मामले की खबर तक नहीं थी। रोगी को जब जीने की आशा नहीं होती तो औषधि भी छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस कुत्थी को ना सुलझा पाए तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो गए। शाम को एकाएक उठकर देखा, सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और कुछ असावधानी से बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी ने भी घबरा कर बोला, क्यों, क्या हो गया? राम रक्षा ने कहा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, आप अपना रुपया जैसे चाहे वैसे वसूल कर लें। जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते, सेठ जी ने भी कह दिया। तब राम रक्षा ने अभिमान से कहा, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर मिस्टर राम रक्षा वहाँ से चले गए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी, 20,000 रुपये मूल, 5,000 रुपये ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ गया, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिक गई, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हुई। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी 10,000 के ऋणी वो रह गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली म्यूनिसिपलिटी के मेंबरों का चुनाव हुआ। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक और प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां, बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे।
बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमानी और मृदु भाषण में मुंशी साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का ये अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत पड़ता। एक बार अपने असाधारण श्रद्धा उमंग में उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वो आदमी है जिनकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जाति और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जाति चाकरी और चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता है, इस सेवा के योग्य कभी नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अन्योक्तिपूर्ण भाषण पर हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। क्या मैं बेईमान हूँ, ब्याज का धन खाता हूँ, विषयी हूँ, कुशल हूँ, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूँ नचा सकता हूँ। खुशामदियों ने आग पर तेल डाल दिया। इधर राम रक्षा अपने काम में तत्पर रहे, यहाँ तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई। आज वो प्रसन्न थे। गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको पता पड़ेगा कि धन संसार में सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी और वो मुझसे आंख न मिला पाएगा। शायद फिर मुझे मुंह ना दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंच गए। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुना दिया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने तो हर्ष के मारे आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा की जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई और उनका रंग फीका पड़ गया। खेद और लज्जा की मूर्ति बन गए। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों से आंसू डबडबा ही गए। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा ना लूट पाए। सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। सभा वर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंगों में ऐंठते, मूछों पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। आपकी बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर गया और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो नहीं बजाई, परंतु मुस्कुराकर मुंह फेर लिया और रंग में भंग पड़ गया। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आई तो रोने लगी। रोने से छुट्टी मिली तो उन्होंने गिरधारी लाल को कोसना शुरू कर दिया। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक अपने विचारों में डूबी रही। रात करवटे बदलने में बीत गई। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है, मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं है। इतना भी इस निर्दय कसाई ने नहीं देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से मिलकर एक रूप धारण हुआ और क्रोधाग्नि को दहलाकर और प्रबल हो गई। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं तब अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह इस स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न हो रही थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ। इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। और हुआ ये कि 9 बजे उससे रहा नहीं गया और उसने एक पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी कर ली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है।
किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता, कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे को पकड़वाया, मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी समय तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक सताई हुई स्त्री की ये मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता विवशता पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मरे हुए को मारने का उपाय वो फिर सोचने लगे। तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने कहा, कौन स्त्री? नौकर ने कहा, सरकार मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुष, रेशमी साड़ी पहने हैं, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं, बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारण सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, कोई भी कितना ही काम क्यों ना हो, ईश्वर उपासना उनके लिए जरूरी है, किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े आदमी की स्त्री उनसे मिलने आई है तो वो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना उचित समझ बैठे। ऐसा विचार करके वो बोल दिए, बुला लाओ। जब स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। अत्यंत कोमल वचनों में कारुणिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई हैं, तो आपने उन्हें

दिया, ये तो मैं पहले ही समझ गया था। ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं। ऐसे देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति तैयार हूँ। यहाँ सेठ साहूकार ने मुझे बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि लोग जहाँ लोभ का ध्यान रखते हैं, वहाँ मैं भलाई रखता हूँ। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो विश्वास मानिए, मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में ना फंस जाऊं, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है माता जी, आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो काम हो, उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी ने तो प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं आपके

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती और मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशील खत्री थे। बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ आते थे, हमेशा आदर सत्कार हुआ करता था। पूरे मोहल्ले में धूम थी, रोज ही दरवाजे पर किसी न किसी बहाने इष्ट मित्र एकत्रित होते थे, टेनिस खेलते थे, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी होता और क्या चाहिए। समाज की भी वो बहुत सेवा करते थे। समाज सुधार के लिए दिल्ली में सोसाइटी थी, बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से वो पूरा भी करते थे। जब उनका नौकर बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी सेवा की थी। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध नहीं था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में सर्वहारा वर्ग नशे करके गाते बजाते थे तो उन्हें बहुत शोक होता था। ये उनके प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी थी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए थे। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन शोक की लहर फैल गई थी। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदाशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थीं, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश नहीं था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, वे सच्ची देश हितेशिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सत्कार करने में हम अद्वितीय हैं, हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मिस्टर राम रक्षा आवश्यकताओं से भी बेपरवाह नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 2 बल्कि कभी कभी 3 वक्तृताएं अवश्य तैयार करते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सुंदर होती थी। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते थे और आश्चर्यचकित होकर कहते थे, वाह, आपकी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब का ये जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सुद्योग में भाग लिया भी तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी, इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना या कुढ़ाना सास की आदत नहीं थी, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दिल्ली छोड़कर अयोध्या चली गईं। तब से वहीं हैं। बाबू साहेब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाते हैं, किंतु वो दिल्ली आने का नाम कभी नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था, वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में वो साड़ू भी होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे, प्रातःकाल यमुना स्नान, गाय को अपने हाथों से झाड़ना पोछना, उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव नहीं मिलता था। परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वो सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मांग लिया करते थे। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, ना कोई दस्तावेज, ना स्टाम्प, ना साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वहां से आ गया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया था, उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे धीरे यही कोई 20,000 का अब मामला हो चुका था। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे, समझते थे कि उनके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है, जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-4 साल बीत गए, सेठ जी के तकाजों की अपेक्षा मिस्टर राम रक्षा की मांग बढ़ गई, तो गिरधारी लाल को भी संदेह हो गया। वो एक दिन राम रक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो अच्छा होगा। ये कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र उन्होंने दिखा दिए। मिस्टर राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे थे, तो बोल उठे, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, थोड़ा जल्दी है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया, वे गुस्सा हो गए। आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है, 200 रुपये मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी, पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे, वे राम रक्षा के इस कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। उन्होंने कहा, मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में मान में ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, चाहूँ तो ऐसे को तो मैं नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह ऐसा रूखा बर्ताव, वो हाथ बांधे मेरे सामने ना खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान इलायची इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वो तिनक गए और बोल उठे, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने भी अकड़कर उत्तर दे दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशील हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी कि हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा और वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुलाकर लाओ। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट। किंतु जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया, बहुत कुछ टटोला गया, कुछ हाथ नहीं था। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया था वो डूब गया। कलकत्ते के व्यापारियों से जो माल मंगाया था, रुपया चुकाने की तिथि सिर पर थी और रुपया वसूल नहीं हुआ। रात भर करवटे बदलते रहे चिंता में। अब क्या करना चाहिए, गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा कच्चा हाल उन्होंने सुना तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कठिन कार्य है। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है, वही हाल अब राम रक्षा की थी। वो पलंग से ना उठे, हाथ मुंह भी नहीं धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पढ़ने पर कोई साथी नहीं है, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़े। इस ख्याल से मित्रों को इस मामले की खबर तक नहीं थी। रोगी को जब जीने की आशा नहीं होती तो औषधि भी छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस कुत्थी को ना सुलझा पाए तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो गए। शाम को एकाएक उठकर देखा, सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और कुछ असावधानी से बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी ने भी घबरा कर बोला, क्यों, क्या हो गया। राम रक्षा ने कहा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, आप अपना रुपया जैसे चाहे वैसे वसूल कर लें। जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते, सेठ जी ने भी कह दिया। तब राम रक्षा ने अभिमान से कहा, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर मिस्टर राम रक्षा वहाँ से चले गए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी, 20,000 रुपये मूल, 5,000 रुपये ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ गया, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिक गई, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हुई। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी 10,000 के ऋणी वो रह गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली म्यूनिसिपलिटी के मेंबरों का चुनाव हुआ। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक और प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां, बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमानी और मृदु भाषण में मुंशी साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का ये अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत पड़ता। एक बार अपने असाधारण श्रद्धा उमंग में उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वो आदमी है जिनकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जाति और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जाति चाकरी और चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता है, इस सेवा के योग्य कभी नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अनुक्तिपूर्ण भाषण पर हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। क्या मैं बेईमान हूँ, ब्याज का धन खाता हूँ, विषयी हूँ, कुशल हूँ, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूँ नचा सकता हूँ। खुशामदियों ने आग पर तेल डाल दिया। इधर राम रक्षा अपने काम में तत्पर रहे, यहाँ तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई। आज वो प्रसन्न थे। गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको पता पड़ेगा कि धन संसार में सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी और वो मुझसे आंख न मिला पाएगा। शायद फिर मुझे मुंह ना दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंच गए। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुना दिया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने तो हर्ष के मारे आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा की जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई और उनका रंग फीका पड़ गया। खेद और लज्जा की मूर्ति बन गए। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों से आंसू डबडबा ही गए। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा ना लूट पाए। सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। सभा वर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंगों में ऐठते, मूछों पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। आपकी बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर गया और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो नहीं बजाई, परंतु मुस्कुरा कर मुंह फेर लिया और रंग में भंग पड़ गया। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आई तो रोने लगी। रोने से छुट्टी मिली तो उन्होंने गिरधारी लाल को कोसना शुरू कर दिया। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक अपने विचारों में डूबी रही। रात करवटे बदलने में बीत गई। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है, मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं है। इतना भी इस निर्दय कसाई ने नहीं देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से मिलकर एक रूप धारण हुआ और क्रोधाग्नि को दहलाकर और प्रबल हो गई। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं तब अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह इस स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न हो रही थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ, इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। और हुआ ये कि 9 बजे उससे रहा नहीं गया और उसने एक पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी कर ली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है। किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता, कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे को पकड़वाया, मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी समय तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक सताई हुई स्त्री की ये मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता विवशता पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मरे हुए को मारने का उपाय वो फिर सोचने लगे। तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने कहा, कौन स्त्री? नौकर ने कहा, सरकार मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुष, रेशमी साड़ी पहने हैं, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं, बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारण सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, कोई भी कितना ही काम क्यों ना हो, ईश्वर उपासना उनके लिए जरूरी है। किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े आदमी की स्त्री उनसे मिलने आई है, तो वो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना उचित समझ बैठे। ऐसा विचार करके वो बोल दिए, बुला लाओ। जब स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। अत्यंत कोमल वचनों में, कारुणिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई हैं, तो आपने उन्हें फिर एक बार दंडवत किया। चीनी और मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा आप श्री अयोध्या से आई हैं, आपकी नगरी का क्या कहना, देवताओं की पुरी है, बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए, और यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ माते? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बन गया। वो बोले, अच्छा तो मकान आपका यही इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं, ऐसे देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं, आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति तैयार हूं। यहां सेठ साहूकार ने मुझे बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूं। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि लोग जहां लोभ का ध्यान रखते हैं, वहां मैं भलाई रखता हूं। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो विश्वास मानिए मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में ना फंस जाऊं, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है माता जी, आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो काम हो, उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी ने तो प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूं, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा कर ही नहीं सकता। सेठ जी ने भी तत्पर होकर कहा, कहिए कहिए। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुंह का रंग उतर गया, सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे सारे गिर पड़े। उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा तब छोड़ूंगा, सेठ जी ने बोल दिया। तब स्त्री ने कहा, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार ना करोगे? बेटा ममता बुरी होती है, संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो बेटा, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा, मैं जब तक जीऊँगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीज गया, पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही इन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। तो वो बोल उठे, मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं है। यदि उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा ने जो मुझे पत्र भेजा है उसे देखकर मेरे शरीर में आग लग गई है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भीगी आंखों से बोली, बेटा इस स्त्री ने मुझे भी दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जुबान उसके वश में नहीं है, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम उसे भुला दो। तुम्हारा देश देश में नाम है बेटा। ये नेकी तुम्हारे नाम की और भी फैल जाएगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवा कर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा बेटा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई ना कोई पदवी जरूर मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात नहीं टालेंगे। सेठ जी के हृदय में अब गुदगुदी हो गई। यदि व्यवहार में वो पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जो माता जी कह रही हैं, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदे की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के कई चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उसने कहा, माताजी मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं और ना मिले तो तृष्णा नहीं, परंतु ये तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा? आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपये आते हैं, वो कैसे मिलेंगे? तब राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपये की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो बंगाल बैंक की पासबुक है, इसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपये से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बना दो। जब तक वो तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। मेरा राम रक्षा अच्छा रहे, इससे अधिक मुझे और नहीं चाहिए। ये कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के अथाह प्रेम ने सेठ जी को विहल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ही अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की लहर उठ गई, आंखें डबडबा आईं। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की एक उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता जी ये अपनी किताब ले लो, मुझे अब अधिक लज्जित ना करो। ये देखो राम रक्षा का नाम वही से उड़ा देता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद टाउन हॉल में बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन अहाते में प्रवेश हुई। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराते हुए उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उनके मैनेजिंग प्रोप्राइटर ही समझ लीजिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए ये बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य मिस्टर राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी वो बहुत उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ रहा था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना अब बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं। दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं, और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ तब मिसेज राम रक्षा ने अपना सुवर्ण कंकन धाय को उपहार दिया था और मनो मिठाई बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी नहीं हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधू की सूरत कभी नहीं देखना चाहती।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपके लिए लेकर आए हैं कजरी झूला गायन, जिसे पेश कर रहे हैं शशि कुमार पांडे।

एके बाद हमरे यहाँ बघेल खंड में बरसात केर सामन केर एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकगीत है, ओका कहा था हिंदुली। हिंदुली अपना बचन का सुनाई थे। हिंदुली बड़ा महत्वपूर्ण गीत है हमारे यहाँ के।

यहाँ हिंदुड़ी के बाद अपना पचन का कजरी सुनाई थे। जौन कजरी हमारे यहाँ बघेल खंड में गाई जाती, वह कजरी अपना पचन को सुनाई थे।

कजरी अपना वचन के सुनाए थे, और कजरी के बाद यह कजरी लगभग अंतिम प्रस्तुति है। कजरी विशेष रूप से हमारे यहाँ बघेलखंड में अवरे अंचलन की मेरे गाई जाती, वह कजरी बघेलखंड के अपना वचन के सुनाए थे।

हमारे यहाँ के एक बड़ा महत्वपूर्ण गीत है, हम ओका अपने छ सुनावा चाहला है, भूल दनिया ओका कहा था, तो दुई लाइन एक वर्षा गीत के, ओके बाद बीच में भोले बाबा केर गीत, और ओके बाद फिर वही वर्षा गीत से समापन, माने एमा हम दुई ठो गीत इकट्ठा अपना बचन के सुनाइला है।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज आपने सुना कजरी झूला गायन, जिसे पेश कर रहे थे शशि कुमार पांडे। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 180 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप।
3: युवो रजांसी सुयमासो अश्वा रथो यद्वाम परियणांसि दीयत हिरण्यया वाम पवयः पुरुषाय मन्ध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे। हे अश्विनी कुमारो, जिस समय आप दोनों का रथ समुद्र में अथवा अंतरिक्ष में संचरित होता है, उस समय आपके रथ को चलाने वाले अश्वसंज्ञक गति साधन भी अंतरिक्ष मार्ग में नियमानुसार गति करते हैं। आपके रथ के स्वर्णिम दीप्ति वाले पहिए भी मेघमंडल के जल से भीगने लगते हैं। आप दोनों मधुर सोमरस का पान करके प्रभात वेला में ही इकट्ठे होकर जाते हैं। युवमत्य यस्याव नक्षथो यद्वी पत्मनो नरियस्य प्रयज्योह स्वसा यद्वाम विश्वगूर्ति भराति वाजायेट्टे मधुपाविशेच। सर्वस्तुत्य तथा मधुर सोमपान करता अश्विनी कुमारो, आप दोनों निरंतर गतिशील आकाश में संचरण करने वाले मनुष्यों के कल्याणकारी पूजनीय सूर्य देव के आगमन से पहले ही आते हैं। तब बहन उषा आपका सहयोग करती हैं और यज्ञ में यजमान बल तथा अन्न बढ़ाने के लिए आप दोनों की ही प्रशंसा करते हैं। युवं पय उस्री याया मधत्तम पक्व मामायामव पूर्व्यम गोह अंतर यद्विनिनो वामृतप्सु ह्वारो न शुचिर यजते हविष्मान। हे सत्यपालक अश्विनी कुमारो, आप दोनों ने गौओं में पोषक दुग्ध उत्पन्न किया है तथा अप्रसूता गौओं में भी पौष्टिक दूध की संभावनाएं उत्पन्न की हैं। वन क्षेत्र में सांप के समान ही जागरूक रहकर पवित्र हविष्यान्न साथ रखने वाले यजमान आप दोनों के निमित्त दुग्ध द्वारा यज्ञ करते हैं। युवम ह घर्मम मधुमंत मत्रयेपो न क्षोदो वृणीतमेशे तद्वाम नरावश्विना पश्वइष्टि रथ्येव चक्रा प्रतियन्ति मध्वः। हे नेतृत्व संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने अत्रि ऋषि को सुख देने के लिए ही गर्मी को जल के समान शीतल और माधुर्य युक्त सुखकारी बनाया। तब आपके समीप रथ के पहियों के समान यज्ञ तथा सोमरस पहुँचे। आवाम दानाय ववृतीय दस्रा गोरोहेण तौग्रयो न जिव्रिहि अपह क्षोणी सचते माहिना वाम जूर्णो वाम क्षुरम हसो यजत्रा। हे शत्रु संहारक पूजनीय अश्विनी कुमारो, विजय का आकांक्षी तुग्र का पुत्र जिस प्रकार प्रशंसक वाणियों द्वारा आप दोनों से अनुदान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ, उसी प्रकार हम भी आपके सहयोग को पाने के लिए प्रयत्नशील हों। आपकी महिमा संपूर्ण द्यावा पृथ्वी में संव्याप्त है। हम अतिवृद्ध होते हुए भी आप दोनों की कृपा से जरा रूपी कष्ट से मुक्त होकर दीर्घ जीवन प्राप्त करें, इसीलिए आपकी स्तुति करते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 180 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

0: इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।
2: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
3: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
4: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
3: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
4: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
3: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमारी पहचान है। ये केवल तीन रंगों का संगम नहीं, ये भारत की आत्मा का उजास है। ये केवल ध्वज नहीं, हम भारतीयों की भावनाओं का स्पंदन है। इसके हर रंग में युग बोलता है, इसकी हर लहर में इतिहास डोलता है। हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है, जिसकी छाया में विभिन्न जाति धर्म और भाषा के बावजूद हम सब भारतीय हो जाते हैं। हमारे इसी राष्ट्रध्वज की कल्पना करने वाले, उसे आकार देने वाले महान देशभक्त थे पिंगली वेंकैया। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, कृषि विज्ञानी, भूविज्ञानी और अनेक भाषाओं के जानकार भी थे। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त सन 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास स्थित भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमंत रायुडू और माताजी का नाम वेंकट रत्नम्मा था। पिंगली वेंकैया की बुद्धि की प्रखरता बचपन से ही अद्वितीय थी। उनकी आरंभिक शिक्षा हिंदू हाई स्कूल मछलीपट्टनम में हुई। इसके बाद शिक्षा के लिए वो कोलंबो चले गए, जहां उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई की तथा परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलंबो के सिटी कॉलेज में उन्होंने राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। शिक्षा में उनकी गहरी रुचि थी, यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से भूविज्ञान में भी डिप्लोमा प्राप्त किया तथा एक भूवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। प्रकृति, मिट्टी, चट्टानों और फसलों में उनकी गहरी रुचि थी और यही रुचि उनके जीवन के विभिन्न वैज्ञानिक पड़ावों का आधार बनी। उनके भीतर जितनी ज्ञान की प्यास थी, उससे कहीं अधिक देश प्रेम की गहरी भावना थी। यही कारण है कि मात्र 19 वर्ष की आयु में वो भारतीय सेना में शामिल हो गए थे।

ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने के बाद पिंगली वेंकैया के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में चल रहे द्वितीय बोअर युद्ध के मोर्चे पर सेवा के लिए भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका की उस तपती रणभूमि में इतिहास ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगम रचा। यहीं उनकी भेंट युवा बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से हुई, जो वहां रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी के विचारों ने पिंगली वेंकैया के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। बोअर युद्ध के मैदान में एक टीस थी जो उनके स्वाभिमानी हृदय को बेचैन कर देती थी। जब भी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को सलामी देने के लिए विवश किया जाता, उनका मन विद्रोह कर उठता। वो स्वयं से प्रश्न करते कि इतने विशाल और गौरवशाली भारत देश का अपना कोई ध्वज क्यों नहीं है, जिसके नीचे पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा हो सके। और उनका यही विचार आगे चलकर राष्ट्रध्वज के निर्माण की अमर गाथा बन गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने रेलवे में गार्ड के रूप में नौकरी की, लेकिन राष्ट्र जागृति उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। उन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर लाहौर के प्रसिद्ध एंग्लो वैदिक कॉलेज में प्रवेश लिया तथा उर्दू, संस्कृत और जापानी भाषा का गहन अध्ययन किया। जापानी भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ देखने को मिली जब उन्होंने धारा प्रवाह जापानी भाषा में ऐतिहासिक भाषण दिया। सुनने वाले हैरान थे। लोग उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि आदरपूर्वक उन्हें जापान वेंकैया का नाम दे दिया। आगे चलकर उन्होंने मद्रास में प्लेग इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण लिया और वेल्लारी में प्लेग इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने आंध्र नेशनल कॉलेज मछलीपट्टनम में लंबे समय तक अध्यापन का कार्य भी किया तथा कृषि एवं भू विज्ञान के क्षेत्र में शोध किए। इस तरह कई भूमिकाओं में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनके लिए देश सर्वोपरि था। स्वदेशी आंदोलन हो, वंदे मातरम हो या होम रूल आंदोलन, वो पूरी निष्ठा से इसमें सक्रिय रहे। वो लगातार अधिवेशनों में शामिल होते रहते तथा अपने महत्वपूर्ण विचार रखा करते। वो देखते थे कि अधिवेशनों में भारत का कोई ध्वज नहीं फहराया जाता था। उन्हें लगता कि राष्ट्रध्वज किसी भी देश की साझी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक होता है। उनके मन में भारत के राष्ट्रध्वज के निर्माण की कल्पना जागने लगी और समय के साथ ये कल्पना एक संकल्प में बदल गई।

पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रध्वज को मुक्त गगन में लहराता हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने 5 साल तक 30 से भी अधिक स्वतंत्र देशों के राष्ट्रध्वजों, उनके इतिहास, रंगों और संरचना का अध्ययन किया और एक पुस्तक भी प्रकाशित की, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें भारत के लिए संभावित 30 से भी अधिक ध्वज रूप प्रस्तुत किए गए थे। और तभी आया सन 1921 का साल। विजयवाड़ा में आयोजित अधिवेशन में वो गांधी जी से मिले और उनके समक्ष ध्वज प्रस्तुत किया। पिंगली वेंकैया का मूल ध्वज 2 रंगों का था। इसमें एक रंग लाल था, जो हिंदू समाज का प्रतीक था, और दूसरा रंग था हरा, जो मुस्लिम समाज का प्रतीक था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि अन्य सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीच में सफेद रंग भी जोड़ा जाए तथा इस सफेद रंग पर चरखा अंकित किया जाए, जो स्वावलंबन, श्रम और स्वदेशी का प्रतीक बने। और फिर सन 1931 में हुए कराची सम्मेलन में लाल की जगह केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस तरह पिंगली वेंकैया की कल्पना और संकल्प ने तिरंगे को आकार दिया और 22 जुलाई सन 1947 को, स्वतंत्रता से ठीक पहले, हमारा वर्तमान राष्ट्रध्वज अंगीकार किया गया, जिसमें ध्वज के 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा यथावत रहे। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र रखा गया, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस तरह करोड़ों भारतीयों की आत्मा, संप्रभुता और गौरव की भावना को पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रध्वज में पिरो दिया। पिंगली वेंकैया एक समर्पित वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कंबोडियाई कपास पर गहन शोध किया तथा उसकी एक उत्कृष्ट संकर नस्ल भारत में विकसित की थी। इस वैज्ञानिक अवदान के लिए उन्हें संपूर्ण भारत में पट्टी वेंकैया यानी कपास वेंकैया के नाम से पुकारा गया। जन सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने महामारी प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया था तथा प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिंगली वेंकैया एक भूविज्ञानी भी थे। अपने भूविज्ञान अध्ययन का उपयोग करते हुए उन्होंने हीरे के खनन पर भी शोध किया। वो हीरा खनन और रत्नों के मूल्यांकन के अद्वितीय विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्हें डायमंड वेंकैया भी कहा जाने लगा। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने भारत सरकार के खनिज अनुसंधान विभाग में सलाहकार के रूप में कार्य किया और सन 1955 में हीरों पर लिखी उनकी पुस्तक द मदर ऑफ डायमंड्स प्रकाशित हुई। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 4 जुलाई सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पिंगली वेंकैया द्वारा परिकल्पित राष्ट्रध्वज में लाल की जगह केसरिया रंग स्वीकारा गया, सफेद रंग और अशोक चक्र जोड़ा गया और ये रंग समुदाय नहीं, गुणों के प्रतीक बने। लेकिन आज भी हमारे तिरंगे में समाहित साहस, बलिदान, सत्य, शांति, समृद्धि, शक्ति और विश्वास के प्रतीकों में पिंगली वेंकैया की भावनाएं, उनका राष्ट्र प्रेम मुस्कुराता है। राष्ट्र अस्मिता के इस महाशिल्पी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्तधन।

बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा यानी भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिलती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंट के बोझ में अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंट लादने को प्रोत्साहित करते। ये दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता पड़ती। उसमें मजूरी दूनी कर दी जाती और मजूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते। एक एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है। सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती थी, उसका शरीर इतना क्रश और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिह्वा और बाहु के जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें ना लड़कपन की चंचलता थी, न शरारत, न खिलंदड़पन। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी तक ना आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उस हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे देते। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसके समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्धा माता के सिवाय कोई नहीं है और वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी मां को खिलाता था। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था। लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था तक पहुंचा दिया था कि अब रोटियों के लाले पड़े थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन ने कहा, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी मां ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन बोला, बाबूजी नहीं, एक भी पैसा नहीं। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया, उसे कौड़ियां बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर ना होती, कभी नागा ना होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, पजावे में पानी भरा हुआ था, कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता ना चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था। उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आई नहीं, माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं अब ना बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं, पर मैं संकोच के मारे आपके पास ना आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, आपकी लालसा भी पूरी हो जाए। हरिदास भीतर गए। सारा घर भौतिक निस्सारता का परिचायक था। सुर्खी, कंकड़ और ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। केवल 2 कोठरियां गुजरने लायक थीं। मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा
कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरा नाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं, जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वो निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए, इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, हदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिन से उसका कहीं पता नहीं। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके, नहीं तो हमारी इतनी दशा हीन न होती। आज 3 दिन हुए वो मुझे बीजक आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया, तब से उसे छिपा कर रखे हूं। मगन बाहर है, मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वो बीजक है, उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिए, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी, आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसकी नियत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा, नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर ना हो। काम कष्ट साध्य था, नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और ना कभी करूंगा। क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो मनुष्य में एक बार भी विचलित ना हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं देवता है। मैं मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना बच्चे को फुसलाना है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिष भोजन से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती, आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी, बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते, अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते, पजावे की ओर बहुत कम जाते। विचारशील पुरुष थे, आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता है। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी। यहां तक कि दूसरा मास भी व्यतीत हुआ। अमावस की रात थी, हरिदास मलिन हृदय में बैठी कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा, तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूं, पर नहीं, कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया, चट्टान थी। तहखाना मिल गया, पर हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन ये थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया, 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे, किसी दवा से फायदा ना हुआ। इसी रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था, कहीं मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडा फोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे।
हरिदास की मृत्यु के पीछे ये बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा, पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती, कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़ों बड़ों का सिर नीचा कर दूं, कोई आंख ना मिला सके। इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था, जोड़ों को हटाना कठिन था। पुराने जमाने का पक्का मसाला था, कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी। कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली लेकिन चट्टाने जरा भी ना हिली। तब वो लोहे की छड़ से काम लेने लगे, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने न खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से सहायता न मिल सकती थी। यहां तक कि फिर वही अमावस्या की रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी। पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था। कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए। वो चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों ना बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को न छोड़ सके। सीधे बाजार की तरफ चले, 2 मील का रास्ता हवा की तरह तय किया। पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हीले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे? ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की शांत वृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, यहां तक कि मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर दिया। प्रभुदास यहां से चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे, प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे, चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई। अंधेरा गार सामने था, मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए है। प्रभात का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरे रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे, करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थीं। मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था, इसी घर में रहता था। आकर बोला, पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं, आज मैं न चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विवल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। जान पड़ता था ये उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वो देवताओं की मनौतियां मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कही। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण थे तो केवल आंखों में। वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था, दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी। अन्य मित्रगण
आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। ये वज्राघात है, विधाता की निर्दय लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थीं। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ, अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गईं, प्राण निकल गए।

0: श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्तधन। फिर अपने अगले अंक में एक और कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र अपने किस्सा को संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
2: हाजिर है कला, संस्कृति और अदब का आपका पसंदीदा कार्यक्रम कला कल्लोलनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की विशेष कड़ी किसी आम सफर की नहीं, बल्कि भारतीय रंगमंच के उस वट वृक्ष की दास्तान है, जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक अपनी सांसों से थिएटर को सींचा है। जी हाँ, रंगमंच महज लकड़ी का एक बेजान तख्ता या कुछ चमकदार रोशनियों का कौतूहल नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा का वह खुला चौक है, जहां समाज अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ नग्न खड़ा होता है। जब थिएटर का पर्दा उठता है तो सिर्फ एक नाटक शुरू नहीं होता, बल्कि जिंदगी अपने सारे मुखौटे उतारकर सच से आंखें मिलाती है। सिनेमा जहां कट और रीटेक के कंक्रीट के पीछे छुप सकता है, वहीं रंगमंच एक जलती हुई भट्टी है और यहां वही टिक सकता है जो तपने का मादा रखता हो। इस भट्टी में तपकर जो कुंदन बना और जिसने भारतीय थिएटर को एक नई गरिमा, एक नया अनुशासन और एक नया दर्शन दिया, उस महानायक का नाम है राम गोपाल बजाज। बजाज साहब का रंगमंच पर होना ऐसा है जैसे किसी घने पुराने जंगल में एक शांत और विशाल वटवृक्ष का होना।
3: वक्त की इस नाव पर सवार होकर आज हम सब रुख करते हैं बिहार के सहरसा जिले के उस कोशी अंचल की तरफ, जहां की लहरों में जितना बहाव है, आदरणीय बजाज साहब के भीतर की कला में भी उतनी ही गहराई है। 1 जुलाई 1940 को इसी अंचल की गोद में एक ऐसे बालक का जीवन शुरू हुआ जिसका बचपन बाहरी पाबंदियों से कहीं ज्यादा अपने भीतर के एक अनकहे सन्नाटे से गुजरा। राम गोपाल बजाज का बचपन घोर अभाव में बीता था। गांव या मोहल्लों में रामलीला का मंचन सजता या कोई पारंपरिक नौटंकी आती तो ये बालक सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई की किताबें छोड़कर बस उन कलाकारों के चेहरों, उनकी बुलंद आवाजों और मंच की उस तिलिस्मी रोशनी को निहारता रहता। घर से डांट पड़ती, पाबंदियां लगती, मगर जो चिंगारी भीतर सुलग रही हो उसे बाहर की पाबंदियां भला कैसे बुझा सकती थी। वो छुप छुप कर नाटकों की किताबें पढ़ते और बचपन का यही मानसिक और कलात्मक संघर्ष दरअसल उनके भीतर के उस महान रंगकर्मी को जन्म दे रहा था।
2: रंगमंच की तरफ पहला झुकाव बजाज साहब ने खुद बताया था कि बचपन में उनके घर के पास एक मारवाड़ी पुस्तकालय था और पास में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या स्थानीय क्लबों के माध्यम से कभी कभी नाटक होते थे। बचपन में उन्होंने जहां पारसी थिएटर शैली के नाटक और स्थानीय रामलीलाएं देखी, उन नाटकों के संवादों का लहजा और मंच की दुनिया उनके बाल मन में ठहर गई थी। वह छुपकर नाटक देखने जाते थे क्योंकि घर में पता चलने पर सख्त मनाही थी। उनके भीतर कला को लेकर एक अजीब सी तड़प थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और कोशी अंचल की मिट्टी में पला बढ़ा वो मासूम बालक अब धीरे धीरे किशोरावस्था की दहलीज लांघकर जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस उम्र में जहां अमूमन लड़के दुनियादारी की फिक्र में खो जाते हैं, वहीं बजाज साहब के भीतर कला और वैराग्य का एक अद्भुत संगम आकार ले रहा था। गांव में जब कोई भी तीज त्योहार आता तो वे ढोलक और मजीरों की थाप पर होने वाले भजन कीर्तनों में पूरी तन्मयता से शामिल हो जाते। रामलीला के मंच पर सजने वाले किरदारों को एकटक निहारना, बंद कमरों में गीता के श्लोकों की गहराई को टटोलना और छुप छुप कर नई कहानियों और कविताओं को पढ़ना उनकी इस दीवानगी को और परवान चढ़ा रहा था।
3: उम्र के इस पड़ाव पर एक अजीब सा अल्हड़पन था, एक बेलौस बेफिक्री थी। ये जवानी का वो दौर था जहां आवारगी भी थी और कुछ नया सीखने सिखाने की असीम ललक भी। दोस्तों के साथ बेमकसद घूमना, घंटों कला और अदब पर बहस करना और जिंदगी के थपेड़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ना। इसी उठती जवानी के शोर और सूफियाना तन्हाई के बीच राम गोपाल बजाज के भीतर का वो अंगार तैयार हो रहा था जिसकी तपिश आगे चलकर पूरे भारतीय थिएटर को महसूस करनी थी।
2: दरभंगा के सीएम कॉलेजों की बंदिशों से आजाद होकर जब वो नौजवान घर से बाहर कोलकाता पहुंचा तो जेब पूरी तरह खाली थी। न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई सहारा। बजाज साहब स्वयं अपने इस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि जब वे कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन में बेबसी की हालत में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ लोग घूम घूम कर चंपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। बस पेट की आग और उस सूनेपन के बीच इस खुद्दार नौजवान के दिमाग में एक विचार आया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, कम से कम दो आना तो मिलेगा ही, जिससे दो वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके और पेट भर सके।
3: कलकत्ता के उन मसरूफ और अजनबी सड़कों पर अपनी पहचान और वजूद तलाशते हुए बजाज साहब ने केवल थिएटर ही नहीं देखा बल्कि जिंदगी को बहुत करीब से भी महसूस किया। खुद को जिंदा रखने के लिए और पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए ताकि वे कलकत्ता में टिक सके, लेकिन उनका असली ठिकाना था वहाँ के थिएटर, ऑडिटोरियम और नुक्कड़।
2: उस दौर में कलकत्ता में पारसी थिएटर का असर तो था ही, साथ ही इप्टा की प्रगतिशील चेतना भी चरम पर थी। बजाज साहब घंटों भूखे प्यासे रहकर और बांग्ला रंगमंच के उस असीम अनुशासन को अपनी आंखों से समेटते। उन्होंने वहां केवल अभिनय की तकनीकें नहीं सीखी बल्कि उन्होंने देखा कि कैसे रंगमंच समाज की विसंगतियों पर सीधे प्रहार करता है। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू किया।
3: और वो अक्सर कहा करते थे कि कलकत्ता ने उन्हें वो दृष्टि दी जिसने उनके भीतर के अकेलेपन को एक वैचारिक गहराई में बदल दिया। वे समझ गए थे कि थिएटर महज मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और यही तजुर्बा, यही तपन और कलकत्ता का यही कड़ा संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन का वो सबसे बड़ा आधार बना जिसने उन्हें सीधे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां भारतीय रंगमंच का एक नया इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू कर दिया।
2: कलकत्ता की गलियों में अपनी कलात्मक भूख और इस कड़े संघर्ष को जीने के बाद वे बिहार की राजधानी पटना आए और यहाँ से उन्होंने नए सिरे से अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। पर आर्थिक तंगी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। पटना विश्वविद्यालय में एमए हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई के दौरान फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इस स्वाभिमानी लड़के ने अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीती और इनाम के रूप में पुअर बॉयज फंड से अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च निकाला। लेकिन जब तक ये बात रूढ़िवादी बजाज खानदान को पता चली तो खानदान के लोगों को झूठी शान की ठेस लगी। वे गुस्सा हो गए कि हमारी बिरादरी का लड़का पुअर बॉयज फंड से क्यों पढ़ेगा। पर इस फक्कड़ कलाकार को किसी की झूठी शान की परवाह कहाँ थी। उन्होंने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रातों के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर पटना की सड़कों पर रिक्शा तक चलाया।
3: क्या बात है, संघर्षमयी मिट्टी से तपकर जब वे बाहर निकले तो उनका साहित्य से रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। बचपन में अपनी पूज्य दादी माँ को भगवद गीता और रुक्मणी मंगल का पाठ पढ़कर सुनाने वाले बजाज साहब अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के दीवाने हो चुके थे। आगे चलकर आधुनिक कविता के पुरोधा अग्गे जी से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने बजाज साहब के भीतर के उस संवेदनशील कवि को पहचान लिया। पटना में रहते हुए जब वे एमए प्रीवियस पास कर चुके थे तभी उनकी मुलाकात हिंदी के महान कथाकार परेश्वरनाथ रेणु जी से हुई।
2: रेणु जी इस नौजवान की आंखों में चमक और प्रतिभा भांप गए। उन्होंने बजाज साहब को पटना की एक स्थानीय ड्रामा मंडली से मिलवाया। उन्हीं दिनों पटना में एक सज्जन मिले, हामिद साहब, जो किराए पर कमरे चलाया करते थे। हामिद साहब ने इस बेसहारा कलाकार को न केवल छत दी बल्कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी के इंटरव्यू का बुलावा आया तो अपनी जेब से कुछ पैसों की मदद भी की। हामिद साहब की उन्हीं पैसों का सहारा लेकर यह नौजवान दिल्ली पहुंचा। एमए फाइनल की परीक्षा देने से पहले ही उसका सिलेक्शन सीधे एनएसडी में हो गया। दिल्ली आकर उन्होंने रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब के कड़े अनुशासन में रंगमंच का काखा गा सीखा। सन 1965 में रामगोपाल बजाज जी का एनएसडी में चयन हो गया था।
3: और रामगोपाल बजाज पटना विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में मास्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके और दिल्ली स्थित एनएसडी चले गए। वे 1965 के बैच के छात्र रहे। उन्होंने अभिनय में अपना डिप्लोमा पूरा किया। एनएसडी में उन्हें प्यार से बड़े छोटे सभी बज्जू भाई बज्जू सर कहते थे। वो हमेशा से सभी का साथ देने वाले मददगार दोस्त साथी और शिक्षक रहे। उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी में अंग्रेजी का माहौल बहुत ज्यादा था। खुद रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब बड़े सलीके से अंग्रेजी बोलते थे, जबकि रामगोपाल बजाज जी की हिंदी बेहद मुकम्मल शुद्ध और साफ थी। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक सौदा हुआ। अलकाजी साहब ने बजाज साहब से कहा, तुम मुझे हिंदी सिखाना, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा।
2: भाषा का ऐसा अद्भुत आदान प्रदान रंगमंच के इतिहास में बिरला ही देखने को मिलता है। अलकाजी साहब हिंदी कविता और उसके ठहराव को सीखने के लिए इतने आतुर रहते थे कि कई बार सुबह बेहद तड़के भोर में ही बजाज साहब को बुला लिया करते और उनसे घंटों डूबकर हिंदी की कविताएं सुना करते थे।
3: अलकाजी साहब के उसी कड़े अनुशासन और प्यार की छाव में बज्जू भाई ने कई नाटकों में काम किया। उन्होंने अंधा युग, तुगलक जैसी कई ऐतिहासिक और कालजयी प्रस्तुतियों में साथ काम करके भारतीय रंगमंच का इतिहास बदल दिया। हालांकि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में उनके द्वारा साथ किए गए कुल नाटकों की कोई निश्चित संख्या दर्ज नहीं है, पर यह बात पूरी दुनिया जानती है कि इब्राहिम अलकाजी ने राम गोपाल बजाज को आधुनिक हिंदी रंगमंच का एक सशक्त, निडर और बेमिसाल अभिनेता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बजाज साहब आज भी जब अलकाजी साहब को याद करते हैं तो अंधा युग के वो दिन उनकी आंखों में एक जीवंत दृश्य की तरह तैरने लगते हैं।
2: न कोई जबां आड़े आई, न कोई दस्तूर आड़े आया, मुर्शिद ने जब मुरीद को अपनी रूह से मिलाया। एक दूजे को सौंप दी दोनों ने अपनी कायनात, उधर से इल्म बहा, इधर से अदब का दरिया आया। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की चौखट पर कदम रखने के बाद इस खुद्दार नौजवान ने जैसे रंगमंच को ही अपनी इबादत बना लिया था। बजाज साहब ने वहां केवल अभिनय की बारीकियों को ही नहीं साधा बल्कि नाटक की मुकम्मल रूह को समझा। मंच की रोशनियां कैसे भावनाओं को उभारती हैं, सेट कैसे एक बेजान जगह को जिंदा करता है और वेशभूषा जैसे किसी किरदार को वजूद देती है। उन्होंने इन सब विधाओं को पूरी लगन से सीखा और इसके साथ ही उनका नाता विश्व और हिंदी साहित्य के महान लेखकों से और गहरा होता गया।
3: लेकिन इन सब चमक धमक और कला के शोर के बीच कई बार रातों के सन्नाटे में घर की याद उन्हें घेर लेती थी। अपनी पूज्य दादी माँ की ममता और उनके आंचल की खुशबू को याद करते हुए इस संवेदनशील कलाकार की आंखें भर आती थी। उस वक्त जब मंडी हाउस की भीड़ अपने चरम पर होती, तब इस युवा रंगकर्मी का दिल करता कि वे इस हुजूम से अलग होकर कहीं दूर बिल्कुल एकांत में चले जाएं। दरअसल बजाज साहब भीतर से हमेशा एक बेहद आध्यात्मिक इंसान रहे, जो बाहरी दुनिया के शोर से थककर एकांत के उसी सन्नाटे में खुद को भीतर से शांत करते थे, अपने जख्मों को सहलाते थे। उनके लिए अकेलापन का वो सूनापन कोई सजा नहीं थी बल्कि एक रूहानी वरदान था, जिसे महसूस करते हुए अक्सर सोचते थे, अकेलेपन से बढ़कर आनंद नहीं, आराम नहीं, स्वर्ग है वो एकांत जहां शोर नहीं, धूमधाम नहीं। ऐसे भावों को लेकर मुझे डीएच लॉरेंस की लिखित और दिनकर की अनुवादित वो कविता याद आ रही है।
2: देश और काल के प्रसार में शून्यता, अशब्दता, अपार में चांद जब घूमता है कौन सुख पाता है, भेद यह मेरी समझ में तब आता है, होता हूं जब मैं अपने भीतर के प्रांत में, भीड़ से दूर किसी निभृत एकांत में, और तभी समझ यह पाता हूं पेड़ झूमता है किस मोद में, खड़ा हुआ एकाकी पर्वत की गोद में, बहता पवन मंद मंद है पत्तों के हिलने में छंद है, आह कितना आनंद है।
3: बिल्कुल, भीड़ से दूर अपने भीतर के इसी निभृत एकांत में बैठकर उन्हें ब्रह्मांड के इस परम सत्य का बोध होता था। प्रकृति के इस मूक संगीत, हिलते पत्तों के छंद और मंद मंद बहती हवा के इसी रूहानी आनंद ने उनके भीतर के अकेलेपन को एक दिव्य दार्शनिकता में बदल दिया, जिसने आगे चलकर उनके अभिनय और निर्देशन को एक अमर और कालजयी गहराई प्रदान की।
2: एनएसडी से शिक्षा पूरी करने के बाद रामगोपाल बजाज जी केवल एक छात्र नहीं रहे, वे सालों तक इस प्रतिष्ठित संस्थान की फैकल्टी के रूप में नए कलाकारों को गढ़ते रहे और आगे चलकर नवंबर 1995 से सितंबर 2001 तक इसके निदेशक डायरेक्टर बने। बतौर निदेशक उनका यह कार्यकाल भारतीय रंगमंच का स्वर्ण युग साबित हुआ। वे सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि थिएटर के हर विभाग जैसे मेकअप, स्टेज लाइटिंग और प्रोडक्शन डिजाइनिंग के एक सिद्ध ऑलराउंडर थे, जिन्होंने स्कूल की अकादमिक और कलात्मक रीढ़ को मजबूत किया।
3: उन्होंने विस्तार, प्रकाशन और दस्तावेजीकरण जैसे कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान था भारत रंग महोत्सव। 1999 में आजादी की स्वर्ण जयंती पर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल और पूरी तरह उन्हीं की कल्पना से उपजा जश्न बचपन व बाल संगम। इन उत्सवों ने देश विदेश के थिएटर समूहों, वयस्कों, बच्चों और पारंपरिक लोक कलाकारों को एक वैश्विक मंच दिया। स्कूल की शिक्षा प्रणाली में थिएटर को अनिवार्य करने की जोरदार वकालत करने वाले बजाज साहब दिल्ली के मशहूर देशांतर थिएटर ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं।
2: मंच, रेडियो, टीवी और फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बजाज साहब के पास कविताओं के पाठ और उनकी प्रस्तुति का एक ऐसा जादुई हुनर है कि जब वे बोलते हैं तो शब्द जीवंत हो उठते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बुनियाद खड़ी करने में इब्राहिम अलकाजी की बड़ी भूमिका रही। ये भी असंदिग्ध है कि उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण की जो आधारशिला रखी, उसकी वजह से कई अच्छे अभिनेता और निर्देशक रंगमंच के क्षितिज पर आए।
3: अलकाजी साहब अपनी तरह के अद्वितीय रंग व्यक्तित्व हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं, किंतु उसके बाद एनएसडी के सबसे कल्पनाशील निदेशक बज्जू भाई ही हुए और इस संस्था की परिधि का विस्तार जितना उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सका। उनके चलाए हुए कुछ कार्यक्रम तो अब लगभग बंद ही हो गए हैं, जैसे कि श्रुति। बज्जू भाई द्वारा बनाई गई परिधि अब छोटी पड़ती जा रही है। बजाज साहब ने अपने कार्यकाल में हिंदी की नाट्य पत्रिका रंग प्रसंग की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में श्रुति कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हिंदी के वरिष्ठ या युवा लेकिन चर्चित कथाकार या कवि आकर रचना पाठ करते थे
2: और इसी कारण से हिंदी भाषी समाज और नाट्य विद्यालय का एक गहरा जीवंत रिश्ता बन गया था। बज्जू भाई ने ही बहावलपुर हाउस परिसर में सम्मुख थिएटर बनवाया और फिर अभिमंच बनाना शुरू किया, जो अंकुर जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। 1996 में बज्जू भाई ने बतौर निर्देशक स्कूल के दीक्षांत समारोह के अवसर पर एकल अभिनय नाट्य समारोह करवाया, जिसमें लक्ष्मण देशपांडे, वीणा पाणी चावला से लेकर नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं ने शिरकत की। उस दीक्षांत समारोह में धर्मवीर भारती मुख्य अतिथि रहे।
3: निर्देशन की बात करें तो एनएसडी और उसकी रिपेट्री कंपनी, जिसके वे 1988 से 1994 तक प्रमुख भी रहे, उनके नाटक भारतीय रंगमंच के मील के पत्थर बन गए। इस सफर की शुरुआत 1974 में सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जैसे कालजयी नाटक से हुई। इसके बाद 1977 में जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक स्कंदगुप्त, 1989 में मिर्जा गालिब के दर्द को समेटते कैदे हयात और 1992 में मोहन राकेश की अमर कृति आषाढ़ का एक दिन का निर्देशन कर उन्होंने निर्देशन कला की नई परिभाषाएं सीखी।
2: केवल निर्देशन ही नहीं, उनके भीतर का संवेदनशील लेखक भी उतना ही प्रखर था, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गिरीश कर्नाड के कन्नड़ नाटक ताले दंड का रक्त कल्याण के नाम से किया गया उनका शानदार हिंदी अनुवाद है। इस अनुदित नाटक का निर्देशन पहले रिपेटरी के लिए स्वयं उनके रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी ने और बाद में अस्मिता थिएटर के लिए अरविंद गौड़ ने किया। सचमुच कोशी अंचल की मिट्टी से निकला यह फक्कड़ और दार्शनिक कलाकार जब दिल्ली के मंडी हाउस के गलियारों में उतरा तो उसने न केवल खुद को साबित किया बल्कि समकालीन भारतीय थिएटर का पूरा भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
3: जी हाँ, रामगोपाल बजाज बज्जू भाई जी की देखरेख और मार्गदर्शन में भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की कई उत्कृष्ट पीढ़ियां तैयार हुईं। उनके प्रमुख शिष्यों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, आशुतोष राणा, सीमा विश्वास, गोविंद नामदेव, यशपाल शर्मा और स्वर्गीय श्री वल्लभ व्यास जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं, जिन्होंने उनसे अभिनय और थिएटर के कड़े अनुशासन की बारीकियां सीखकर आज पूरी दुनिया में अपनी कला का परचम लहराया है।
2: पद्मश्री से सम्मानित रामगोपाल बजाज केवल थिएटर के ही बेताज बादशाह नहीं रहे, बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के पर्दे पर भी उन्होंने अपनी अदाकारी का ऐसा रंग बिखेरा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों से अभिनय का ककहरा शुरू करने वाले बजाज साहब ने जब सिल्वर स्क्रीन की तरफ रुख किया तो वहां भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शेखर कपूर की मासूम 1983 हो या केतन मेहता की समीक्षकों द्वारा बेहद सराही गई मिर्च मसाला फिल्म 1985 हो या फिर यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म चांदनी 1989 हो, बजाज साहब ने हर बड़े निर्देशक के विजन में खुद को एक मुकम्मल अभिनेता के रूप में ढाला। उनकी अभिनय की रेंज इतनी व्यापक थी कि जहां एक तरफ वे लीक से हटकर दीपा मेहता की फायर 1996 जैसी फिल्मों का हिस्सा बने, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का परचम लहराया जब वे ग्लोबल स्टार जैकी चैन की मशहूर फिल्म द मिथ 2005 में एक मार्शल आर्ट्स शिक्षक की दमदार भूमिका में नजर आए।
3: और वक्त बदला, सिनेमा का मिजाज बदला, लेकिन बजाज साहब की कला का जादू हमेशा नया बना रहा। सिनेमा के बदलते दौर के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने आधुनिक सिनेमा और OTT की दुनिया में भी उतनी ही सहजता से प्रवेश किया। उनका संजीदा अभिनय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोरने वाली फिल्में मैंगो ड्रीम्स, इन प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता। उसकी कला वक्त के हर फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक और देश के इस महान ऑलराउंडर का ये फिल्मी सफर महज कुछ फिल्मों की सूची नहीं है, बल्कि ये गवाही है इस बात की कि जब थिएटर की माटी में तपा हुआ कोई फनकार कैमरे के सामने खड़ा होता है तो सिनेमा की स्क्रीन भी उसकी शख्सियत के आगे छोटी पड़ जाती है।
2: प्रोफेसर बजाज को भारतीय रंगमंच में उनके चौतरफा रचनात्मक योगदान के लिए कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, नेशनल प्रेस इंडिया अवार्ड, साहित्य कला परिषद सम्मान, नंदीकर सम्मान शामिल हैं। और उन्हें 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वे आधिकारिक और व्यक्तिगत क्षमताओं में थिएटर, फिल्म, जनसंचार के क्षेत्र में कार्यकारी बोर्ड, जनरल काउंसिलिंग और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के बोर्ड के सदस्य रहे हैं।
3: उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक के रूप में उनकी क्षमता के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामित के रूप में बोर्डों और समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया। उन्होंने सन 2000 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी के सदस्य के रूप में भी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2001 के लिए पैनोरोमा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
2: श्रोताओं, आज भले ही बज्जू भाई दिल्ली की इस भागदौड़ से दूर कहीं और वक्त बिता रहे हों, पर सच तो ये है कि मानसिक रूप से उनका दिल आज भी दिल्ली में ही धड़कता है। जब भी उनसे गुफ्तगू हुई है, मंडी हाउस के गलियारों और NSD के किस्से उनकी बातों में जीवंत हो उठते हैं। रामगोपाल बजाज के प्रिय कवि रहे हैं अज्ञेय। उनकी कविता जो बज्जू सर को बहुत पसंद है, हम उन्हें अर्पित करते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं, वह दो खंभों के बीच है, रस्सी पर मैं जो नाचता हूं। वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है, दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं, उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर रोशनी जो पड़ रही है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर, असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, खंभे नहीं, रस्सी को नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच।
3: रेडियो आजाद हिंद की तरफ से हम सभी के प्यारे बज्जू सर, बज्जू भाई को दिल से ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों, खूब जिएं और अपनी कला से हम सभी को हमेशा यूं ही बहुत कुछ सिखाते रहें। आपकी ये अद्भुत रंगमंच की यात्रा, आपका फक्कड़पन, आपका स्वाभिमान और आपका कड़ा संघर्ष हम सभी के लिए, आने वाली हर पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का एक अटूट स्रोत बना रहे। प्रणाम बज्जू भाई।
2: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में बस आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, लेखन दीपक नेमा, और आपके साथ था मैं विजयकांत नायक,
3: और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का।
2: ये नर्मदा के पूरे संभार को, पूरे के पूरे संपदा को संग्रहित करके हमारे सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी। हमको अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जरूरत है।
1: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में राष्ट्रीय विमर्श के तहत, जिसमें नर्मदा अंचल की मूर्त और अमूर्त धरोहर पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का वक्तव्य।
3: मैं श्री श्रीराम परिहार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। लोक कथाएं, परिक्रमा, अनुष्ठान एवं मौखिक परंपराएं, श्री श्रीराम परिहार जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाता है।

नर्मदे, सबको नर्मदे हर, नर्मदा नर्मदा हर्ष को देने वाली, संपत्ति को देने वाली, खुशी को देने वाली, समृद्धि को देने वाली, जीवन को देने वाली, जीवन की तरलता को भरने वाली, जीवन की चमक को भरने वाली, जीवन में आर्द्रता पैदा करने वाली, जीवन में निर्मलता देने वाली और जीवन को अविराम गति से बहते रहने की अटूट शक्ति देने वाली नर्मदा को हम प्रणाम करते हैं। विषय इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना गहरा और इतना फैलाव वाला है कि वर्षों तक हम नर्मदा की इस पावन महिमा का यदि संग्रहण और आलेखन करेंगे तब भी हम उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपनी बात कहूँगा, मैंने देखा है ये केवल जल की बहती हुई धारा नहीं है। यदि पांच तत्व में से एक तत्व जल है और जल यदि सृष्टि की रचना का एक बहुत महत्वपूर्ण उपादान है तो उसी जल की जीवित शक्ति के रूप में नर्मदा धरती के ऊपर बह रही है। स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में यह तो सनातन नदी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषि कह रहा है कि ये प्रलय काल में भी भगवान विष्णु के दाएं पांव में रेखा बन करके लिपटी हुई है। तो मुझे लगा कि जब हिमालय नहीं था तब विंध्याचल था और जब माँ गंगा नहीं रही होगी तब नर्मदा रही होगी। एक शाश्वत, एक अनादि नदी है ये। इसके किनारे हमने जन्म लिया, कितने बड़भागी हैं, कितने पुण्यभागी हैं, कितने पुण्यात्मा हैं हम। तो क्या इसके गोद में जन्म लेने का जैसे हम माँ के साथ व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार हमको माँ के साथ, नर्मदा के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरा अटल विश्वास है हम पुराने लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन जो नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी हुई, इनको कुछ भी बुरा भला कहो, इनको यदि बदल दिया, इनकी मानसिकता यदि बदल दी तो नर्मदा को शाश्वत धारा के रूप में, उसका चाहे हम किसी भी रूप में संग्रहण करें, उसका दस्तावेजीकरण करें, असंख्य संपदा फैली हुई है, कितने आयाम फैले हुए हैं। अभी जब मैं तीसरी बार, पहली बार नर्मदा परिक्रमा पर 2011 में गया था, दूसरी बार 2021 में गया था और तीसरी बार जब 15 मार्च से लेकर मैं अभी जब लौटा तो डिंडोरी और मंडला के बीच का जो परिदृश्य है, जो 15 साल पहले का परिदृश्य था वो अभी का परिदृश्य है, बहुत अंतर आ गया है, इतना ज़्यादा अंतर आ गया है। ये अंतर प्रकृति में नहीं आया, मनुष्य की मानसिकता में आया है। मानसिकता ये तो बनी कि श्रीराम परिहार परिक्रमा पर जा रहा है, उसकी देखा देखी दूसरा भी जा रहा है, लेकिन परिक्रमा तो वह कर रहा है जो नंगे पांव, हाथ में लकोटी और कंधे पर एक गमछा लिए पद यात्रा, माँ की सेवा, माँ की सेवा नहीं जीवन के उद्धार के लिए जो जा रहा है वह परिक्रमा है। वैसे तो परिक्रमा के बहुत अलग अलग संसाधन आ गए हैं, रेग आ गए हैं, लेकिन परिक्रमा से केवल एक बात जरूर जुड़ी है, वह है आस्था। आस्था किसके प्रति? आस्था नदी के प्रति। नदी नहीं, वह नदी के रूप में जो जीवित बह रही है, जल के रूप में जो बह रही है। जल केवल क्या नदी के रूप में बहता है कि जल हमारे भीतर भी बहता है? बिल्कुल सच मानिए, नर्मदा सामने खड़ी होकर के बात करती है। आप बात करने लायक बनिए तो सही, अब बेटा बनिए, माँ तो सब उपस्थित हो जाएगी। और ये सच बात है, सैकड़ों परिक्रमा वासियों के मुँह से मैंने सुना है कि जब जब आप परिक्रमा में अकेले संकट से घिरेंगे, कोई ना कोई किसी बहाने, वृद्धा के रूप में, पशु के रूप में, किसी आवाज़ के रूप में, किसी अनजानी पुकार के रूप में, किसी पक्षी की आवाज़ के रूप में, वह माँ जरूर बताएगी। तीनों परिक्रमा में मैंने ये प्रमाण पाए हैं, तीनों परिक्रमा में संकट के समय।
आस्था होनी चाहिए, गहरी आस्था होनी चाहिए। परिक्रमा क्या हम दिखावे के लिए करते हैं? यदि करते हैं तो मत करिए। मेरा दोस्त गया तो हम भी चले जाएं, ये आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक नर्मदा को समझना यानी जल की सतत प्रवाह को समझना। आप सोचिए साथियों, ऐसी भीषण गर्मी में पिछले 3-4 दिन से सारी नदियाँ सूख रही, महानदी भी बिल्कुल अजस्र नदी है, बड़ी नदी है महानदी भी। महानदी में भी आप राजिम के पास जाएंगे ना तो जरा सी जलधारा मिलेगी इस समय, लेकिन नर्मदा में तो कोई पानी कम नहीं होता, पानी सूखता नहीं, पानी विरल नहीं होता। पानी स्वच्छतम नदी देखना हो तो मेरे ओंकारेश्वर के ऊपर थोड़ा सा जोगा का किला है, जो नाभि कुंड से, नाभि स्थल से थोड़ा सा नीचे, वहाँ नर्मदा की पवनता देखिए। सहस्रधारा जो मंडला के पास है और सहस्रधारा जो महेश्वर के पास है, वहाँ से जब नर्मदा किलोल करती हुई अटकेलिया बहती हुई निकलती है, वहाँ निर्मलता देखिए। तो एक बात तो जरूर है, ये मैंने भी महसूस की है कि माँ कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती। कितने परिक्रमावासी कुछ नहीं ले जाते, 2 जोड़ी कपड़े, 1 कमंडल और 1 लकड़ी, और कभी पाँव में चप्पल, और कोई तो बिना चप्पल के उभानी पाँव जाते हैं, लेकिन वो मांग कर खाते हैं। पेड़ के नीचे सोते, स्कूल में सो जाते हैं, धर्मशाला में सो जाते हैं, किसी ओटले पर सो जाते हैं, किसी मंदिर के चबूतरे पर सो जाते हैं। और नहीं, आज आप सोचिए ये कैसी आस्था है नर्मदा के किनारे की। पूरे निमाड़ में तो मैंने प्रमाण पाया है, और पूरे बुंदेलखंड में, और पूरे डिंडोरी से लेकर मंडला तक तो प्रमाण पाया है। सैकड़ों लोक कथाएँ हैं, सैकड़ों आस्थाएँ हैं, सैकड़ों मान्यताएँ हैं, मन्नते नहीं मान्यता मान है, और सैकड़ों हमारी धारणाएँ हैं जो मौखिक रूप से रात में कही जाती है। मेरे को नर्मदा जी मिली। एक बात मैं कहूँ कि हमने सबने पढ़ा है, हमको सबको पढ़ाया है कि नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। डिंडोरी और मंडला के बीच में मैंने देखा नर्मदा पश्चिम से पूरब की ओर भी बहती है। लगभग 10 किलोमीटर की जगह ऐसी है जहाँ पर, वहाँ पर बुड़नेर नदी आकर के नर्मदा में मिलती है, और बुड़नेर के संगम पर ही अब ये शोधार्थियों का, ये पुरातत्व विभाग का काम है कि वहीं जमनग्नि ऋषि का आश्रम भी है और वहीं परशुराम की जन्मस्थली है। और हम कहते हैं कि यहाँ इंदौर के पास जाना पाओ, जहाँ से चंबल निकलती है, वहाँ भी जमनग्नि ऋषि का आश्रम है और वहाँ भी परशुराम की जन्मस्थली है। वहाँ पर अखंड कीर्तन हो रहा है और बुड़नेर नदी आकर के मिलती है, और नर्मदा जी ऐसी पूरब पश्चिम से पूरब की ओर बह रही, बिल्कुल पूरब की, और फिर जैसे ही मंडला आता है ऐसे मोड़ लेती है, और नर्मदा यहाँ मंडला सीधे बंजर नदी आकर के मिलती है, यहाँ बुड़नेर नदी आकर के मिलती है। डिंडोरी से लेकर मंडला के बीच में जो वन खंड है, जो वन प्रदेश है, वही नर्मदा को अजस्र रूप से जल की स्रोतस्वनी नदी बनाते हैं। लेकिन जब 15 साल पहले जब गया था तो वहाँ जंगल थे, अब छोटे छोटे खेत हैं, उसमें मसूर हो रही है और उसमें अलसी पैदा हो रही है, इतने छोटे छोटे खेत उसमें पैदा हो, अभी मसूर को उखाड़ा जाता, मसूर काटी नहीं जाती, मसूर को उखाड़ा जाता। तो जल जीवन, समाज, मान्यताएं, आस्थाएं, पुरातत्व, लोक देवता, वृक्ष, अब क्या कैसा कहेंगे कि जैसे ही मंडला जिला समाप्त होता है और पहाड़ियां समाप्त होती है, सागुन के पेड़ समाप्त हो जाते हैं, और जैसे डिंडोरी जिला लगता है और सरई और साजा के पेड़ हरे भरे, इस गर्मी में सरई तो जैसे अवतार ले लिया हो। ये वनस्पति का जो भूमि के आधार पर की, जलवायु के आधार पर की, वातावरण के आधार पर की, हम जमीन के आधार पर की, हम वहाँ की मिट्टी के आधार पर किस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर इस नदी के इस पार तो सागुन लगा हुआ है और सरई बिल्कुल नहीं है, और नदी के उस पार जो है सरई शुरू हो जाती है। लेकिन उन सब में जो वनवासी रह रहे हैं, उन सब में जो नर्मदा पुत्र रह रहे हैं, वो नर्मदा के सहारे ही रहते हैं। वो नर्मदा के सहारे इसलिए रहते, उनके जीवन का अभिन्न अंग नर्मदा है, नर्मदा माँ है, वो ठीक कह रहे हैं। एक आश्रम है डिंडोरी से बिल्कुल नीचे, वहाँ नर्मदा जी
बस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हो रही है, एक अखंड साधु जो है पता नहीं कितने साल का, और इतनी ऊंचाई होगी उस साधु महात्मा की, और कोई गाय नहीं कोई भैंस नहीं, लेकिन जितने लोग जाते हैं सब सबको चाय पिलाता है, नाराज हो गए कि चाय पी जाओ, और कुछ नहीं है तन पर, केवल अधो वस्त्र है छोटा सा, वो कब से है बोले हमको नहीं मालूम। ये ऐसे आश्रमों में बड़े हुए सन्यासी जो नर्मदा के किनारे ऐसे मोड़ खा करके आती, इधर भी चट्टान इधर भी चट्टान, मैंने बहुत पैदल उनके किनारे किनारे यात्रा की, जितनी जगह जाओगे नर्मदा का रूप अलग मिलेगा, दूसरा रूप उस तरह का नहीं मिलेगा। जितने घाट पर जाओगे नर्मदा का सौंदर्य यहाँ अलग है तो वहां अलग है, सूलपाणेश्वर में अलग है तो मीठी तलाई में अलग है, सागर संगम में अलग है और कोटेश्वर में अलग है, सब जगह अलग है, धर्मपुरी में अलग है, धर्मपुरी में तो दीप बनाती है और बीच में शिवलिंग है, मेरे ओंकारेश्वर में भी वैडूरमणि पर्वत पर ओम ओम आकार की आकृति में शिव बैठे हुए हैं, और इधर से कावेरी इधर से नर्मदा, कैसा अद्भुत, कितनी संरचना, भू संरचना का सौंदर्य जैसे अवतार ले लिया, भूमि का सौंदर्य तो अपने पास है लेकिन नर्मदा ने भूमि के सौंदर्य में टीकी लगाई है, कुमकुम का टीका लगाया है, अक्षत लगाया है, आरती उतारी है। ये नर्मदा जितनी जगह, यदि अमृतलाल बेगड़ कहते हो तो प्रपातों की नदी है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन प्रपात खत्म हो गए हैं, नर्मदा सागर बांध में प्रपात खत्म हो गए, सरदार सरोवर में कम से कम 15 प्रपात समाप्त हुए हैं, लेकिन दूसरी समृद्धि आई है, नर्मदा का पानी बेटा बनकर के खेती में सिंचाई कर रहा है, और नर्मदा के पानी से बिजली बनकर के बेटी बनकर के घर घर में प्रकाश कर रही है, तो एक बेटा सिंचाई कर रहा है, दूसरा उसी जल से पैदा हुई बेटी, तुलसी कहते हैं कि पुत्री पवित्र करे कुल दो, तो बिजली पैदा हो रही है नर्मदा के जल से तो प्रकाशित हो रही, घर प्रकाशित होगा तो पीढ़ियां प्रकाशित होगी, घर प्रकाशित होगा तो संस्कार समृद्ध होंगे, घर प्रकाशित होगा तो स्वच्छता होगी, घर प्रकाशित होगा तो गाय को रोटी मिलेगी, घर प्रकाशित होगा तो तुलसी के किनारे शाम को दीपक जलेगा, घर प्रकाशित होगी तो माँ की ममता लहराएगी, घर प्रकाशित होगा तो पिता का आंचल हमारे ऊपर होगा, घर पिता होगी तो माँ के दूध से हम राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रभक्त बनकर के योग्य नागरिक बनेंगे। इतना घर पवित्र यदि हमारी माँ नर्मदा करती है, और ये नर्मदा के किनारे किनारे पैदल यात्रा करने का जो आनंद है वो अखंड आनंद है, वो अनिर्वचनीय है, वो शताब्दियों के पुण्य, जब 100 जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के वो बड़भागी हैं जो नर्मदा के किनारे किनारे पैदल यात्रा करते हैं। कितनी बूढ़ी माएँ हैं, देखिए कैसे पीढ़ियाँ जुड़ रही है, एक ने त्याग दिया अगली पीढ़ी, तो मैं कहता हूँ कि ये जो सामने पीढ़ी बैठी हुई है इसको थोड़ा सा सही दिशा देने की जरूरत है, ये परिवर्तन लाएगी, ये नर्मदा के पूरे संभार को पूरे के पूरे संपदा को संग्रहित करके हमारे सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी। हमको अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम तो पता नहीं नदी किनारे के कैसे सूखे पेड़ है जो एक दिन बहाव में बह जाएंगे, अगले 90 वर्ष का भारत तो ये बनाएंगे, अगले 80 वर्ष का भारत ये बनाएंगे, इनकी आंखों में लाल डोरे बना दीजिए, लाल रेखाएं पतली रेखाएं बना दीजिए उनमें रंग काम के भरने के, तो ये हमारे बच्चे करेंगे। एक क्रम से कितना अपार है, मठ है, मंदिर है, आश्रम है, साधु है, सन्यासी है, आस्था है, जीवन है, जमीन है, पशु पक्षी है, पक्षियों के कितने पेड़, कितने प्रकार के फलदार, कितने प्रकार के औषधियां, कितने प्रकार की, आप माई की बगिया से लेकर के और कपिलधारा तक जाएंगे तो 10 बेटियां हमारे नर्मदा की औषधि लेकर के बेचती हुई मिलेंगी। हाँ बोले मैं तो यही काम कर रही हूँ, मुझे पिताजी ने बताया था औषधि का ज्ञान पारंपरिक रूप से और वो ठीक हो जाती है, मैं तो 2-3 औषधि लेकर के आया भी, उनको लगाई भी, बोले आप लगा दीजिए गमले पे लगा दीजिए और उसको ऐसा ऐसा कर दीजिए, वैसे शायद हम नहीं कर पाए लेकिन उनको बोध ज्यादा है। वो किनारे पर बैठी हुई औषधियों का ज्ञान, पक्षियों का ज्ञान, बोले ये पक्षी बोल रहा है तो 7वें दिन बारिश होगी ही, ये पेड़ में हरी पत्ती आ गई है तो अब बोनी शुरू होने वाली होगी ही, किसी विज्ञान के पास है क्या ऐसा, अमरकंटक के डिंडोरी में घूमिए आप, ये सब ज्ञान उसके पास है, ये सब ज्ञान हमारे दादाओं के पास भी था, लेकिन इस ज्ञान को संग्रहित करेंगे और ये जो संस्थाएं जुड़ी हुई है ये इस ज्ञान को यदि अभिलेखीकरण करेंगे तो फिर हम उसको पाठ्यक्रम में लाएंगे, कल से नया पाठ पढ़ेंगे,
नया पाठ का मतलब नर्मदा के नए स्वरूप से हम परिचित होंगे, बहुत काम है, क्योंकि एक सनातन नदी को जानने के लिए सनातन परंपराओं से गुजरते हुए शाश्वत शब्दों में अभिलेखन करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को जोड़ना है, भारतवर्ष को जोड़ना है, और सच मानिए कि पूरे नर्मदा खंड में अमरकंटक से लेकर के नर्मदा कुंड से लेकर के रत्नाकर सागर में, पुराणों में देखिए, ग्रंथों में देखिए, रत्नाकर सागर में मिलती है जाकर के नर्मदा जी, रत्नाकर सागर में मिलती है। और वो जो जहां मिलती है वहां 70 किलोमीटर का चौड़ाई है। वहां पर नर्मदा जी जहां समुद्र में मिलती है वहां कितनी विराट हो जाती है, 70 किलोमीटर। गंगा तो डेल्टा बनाती है सागर संगम में, वहां पर कपिल ऋषि के आश्रम में, लेकिन नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा समग्र रूप में जाकर के समुद्र में समाहित होती है। और वो जहाज वाला बताता है, नाव वाला बताता है कि बोले भैया ये 70 किलोमीटर की, उसी पर तो हम बैठ करके पार करते हैं ना, परिक्रमा में जाते हैं तो उसी पर बैठ करके पार करते हैं। वही कहते हैं कि भाई ये नर्मदा मिलती तो हाथ जोड़ लेते, मस्तक जोड़ लेते, और आखिर तो अश्रु की बूंदे अभिषेक कर देती है नर्मदा को। इससे जुड़िए, ये नदी जीवन देने वाली नदी, ये नदी मध्य प्रदेश का उद्धार करने वाली नदी, ये जीवन, ये नर्मदा भीतर से हमको पवित्र करने वाली नदी। और यदि भीतर से पवित्र हो गया मनुष्य तो पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व पवित्र हो जाएगा। एक नदी पवित्रता का संकल्प लेकर के अपने तटों पे बह रही है, निरंतर आवाज दे रही है, आओ मेरे पुत्रों, मैं तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी रीति, तुम्हारी नीति, तुम्हारा गौरव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा मान, तुम्हारा बड़प्पन, तुम्हारे जीवन की सार्थकता और तुम्हारी जीवन लेने का धर्म बताने के लिए तो बह रही हूँ, मेरे नदी के, मेरे जल में पांव डुबो करके आचमन तो करो, पूरा संसार, पूरा तुम्हारा समग्र जीवन पवित्र हो जाएगा। ऐसी पवित्र नदी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये मेरी माँ है, ये जगत दात्री है, ये पतित पावनी है, ये मेकल सुता है, और ये शिव कन्या है। शिव और नर्मदा का अटूट रिश्ता है, शिव है तो नर्मदा है, नर्मदा है तो शिव है। ऐसे शिव

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मानस भवन में, जहां शनिवार की शाम 56वें गुरु वंदना महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस महोत्सव में।
1: पूरे विश्व में अगर भारत को जाना जाता है तो आईटी के कारण नहीं जाना जाता है, ज्ञान परंपरा को जाना जाता है। और आज जितने लोग सम्मानित हुए हैं उन्होंने उस भारतीय संस्कृति को, भारतीय कला को, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में अप्रतिम योगदान दिया है। मुझे वो पंक्तियां याद आ रही है, चूंकि हम मानस भवन में ही बैठे हैं तो कहा गया था ना कि मानस भवन में आए दिन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी पास। तो ये सबको मैं नमन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो मैं सबको नमन करते हुए बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

0: आइए रेडियो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए चलते हैं रीजनल साइंस सेंटर में, जहां रविवार सुबह केमिस्ट्री डे का आयोजन किया गया जिसमें स्टूडेंट्स शामिल हुए। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रीजनल साइंस सेंटर में।
1: वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग शो जिसका नाम है केमिकल क्यूरियोसिटी शो, जहां पर मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपको करना है उसमें पार्टिसिपेट, राइट? सो आर यू रेडी? एक्साइटमेंट नहीं लग रहा मुझे उस लेवल का, है ना? केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करने के लिए और थोड़ा सा क्यूरियस होने के लिए, आर यू रेडी? ग्रेट। सो लेट मी स्टार्ट विद माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें हम आपका करेंगे स्वागत, है ना? सो हु विल बी माय वॉलंटियर? एंड देयर इज अ मैसेज फॉर यू ऑल हियर। कैन यू रीड लाउडली? ओके, गो फॉर इट। सो वेलकम टू द केमिस्ट्री शो। सो नाउ केमिकली वी हैव वेलकम एंड इन एनी experiments like this is one of the experiment, observation is must, right? So you have to observe this paper and after some time we will discuss what is the chemistry behind it. Okay, thank you so much buddy, please have a seat. Thank you. Now I need 3 volunteers. Okay, yahan par aa jao, line se khade ho jao, hai na? Welcome ho gaya. So this for you, this for you, and this is for you. Okay, तीनों ने केमिस्ट्री क्विज एंजॉय किया, है ना? अब प्राइज मिले ना मिले कुछ तो सीखने मिला ना, ग्रेट। सो व्हाट इज द कलर ऑफ दिस लिक्विड? ठीक है, सो कलर, देयर इज नो कलर, एंड कलर एसिड ऐड कर दे फिर सब कुछ गायब हो जाएगा, राइट, विल बी कलरलेस कंप्लीटली। आई विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। कलर कलर की बात चल रही, तो चलो अब हम देखते हैं कि आपकी आंखों में कलर को देखने की क्षमता प्रॉपरली है या नहीं। ओके, विच कलर इज दिस? क्या बोल रहे हो यार, विच कलर इज दिस? कोई एक आंसर देना, बदलना नहीं बार बार, है ना? अच्छा अभी मुझे बताओ कौन सा कलर है। रेड कलर है। अब बताओ कौन सा कलर है? कुछ ऐड किया?
2: नो सर।
1: अब इसको यहां पर रहने देते हैं, है ना। सो केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होती है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साथ में होता है, और एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, और एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। सो ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल? सिंपल सी भाषा में इरिवर्सिबल मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वापस से हम उसका रिएक्टेंट में नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है कि प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टेंट में बदला जा सकता है। ओके, सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन टिल सर्टेन लिमिट ओनली। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं अभी ग्रीन कलर, कुछ देर बाद क्या होगा, रिवर्स होगी रिएक्शन और फिर रेड कलर आपको दिखेगा, फिर वापस से येलो कलर आ जाएगा। तो ये इसके अंदर भी एक इंडिकेटर है जिसका नाम है इंडिगो कार्माइन। इंडिगो कार्माइन इंडिकेटर जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा वो येलो से ग्रीन की तरफ अपना कलर शो करता है, राइट, और जितना ज्यादा उसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगा, अभी देखिए उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सो इट विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन, ब्राउन, रेड, है ना, और फिर येलो हो जाएगा, राइट। सो थ्री प्रोमिनेंट कलर वी कैन सी, वन इज येलो, रेड एंड ग्रीन। सो ये तीन कलर कहाँ दिखाई देते हैं हमें, मोस्टली ट्रैफिक लाइट्स। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज पॉपुलरली नोन एज ट्रैफिक लाइट रिएक्शन। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में, सो यू कैन सर्च ट्रैफिक लाइट रिएक्शन, सो यू विल नो।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन,

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार अजीमुल्ला खान।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम आजाद हिंद में। मैं तारीख
2: और मैं इतिहास, हम दोनों प्रस्तुत करते हैं आपका पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम
1: आजाद हिंद। जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं देशभक्ति के गीत, क्रांतिकारी घटनाएं और उनसे जुड़े मुकदमे और क्रांति कथाएं, जिन्हें सुनकर आज भी हम प्रेरणा ले सकते हैं।
2: हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अपनी उस क्रांति विरासत की एक झलक दिखलाएं, जिस पे कोई भी देशवासी गर्व कर सके कि हम उस देश के वासी हैं जहां ऐसे देशभक्त वीर जन्मे थे और जिनके बलिदानों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो सका था।
1: मगर इतिहास, 15 अगस्त 1947 को सारा भारत आजाद नहीं हुआ था। गोवा तब भी पुर्तगालियों के ही अधीन था और यही बात देशवासियों के दिलों में चुभती थी कि शेष भारत की तरह गोवा अभी भी आजाद नहीं है।
2: उस समय गोवा को आजाद कराने के लिए जोरों से आंदोलन शुरू हो चुके थे। सारे भारतवासी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और अपनी जान कुर्बान करने को आतुर थे। इन्हीं में से एक थे नित्यानंद साहा जी, जो कि गोवा आंदोलन में 3 अगस्त 1955 को गोली खा के शहीद हो गए थे।
1: नित्यानंद साहा पूर्वी बंगाल के मैमनसिंह में जन्मे थे, जो कि अब बांग्लादेश में है। वे बंगाल की उस धरती में जन्मे थे जहाँ की आबो हवा में ही क्रांति बसती थी, जहाँ वंदे मातरम शब्द में इतना ओज था कि उसे सुनकर ही नौजवान अपने प्राणों का मोह छोड़कर देश के लिए कुर्बान हो जाते थे।

0: उन दिनों बहुत जोरदार तरीके से गोवा की आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा था। सारे देश से लोग आ आके इसमें अपना योगदान दे रहे थे और गोवा को आजाद करवाने की योजनाएं बन रही थीं।
1: जहां एक ओर सारे भारत में आजादी मिलने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ गोवा की गुलामी देशवासियों को रास नहीं आ रही थी। दरअसल ये एक छोटी सी फांस थी जो कि सारे भारतवासियों के मन में थी कि गोवा की आजाद हुए बिना ये आजादी अधूरी सी है। हालात कुछ यूं थे कि पूछे न हाल इस दिले खाना खराब का,

0: सारे देशवासी एक बार फिर एकजुट थे। उन्होंने कमर कस ली थी कि अब चाहे जो भी हो जाए मगर गोवा को स्वतंत्र करा के ही रहेंगे, और इसके लिए वे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थे।
1: सबका यही सोचना था कि जब हम ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ के फेंक सकते हैं तो पुर्तगालियों को क्यों नहीं। अब भय का कोई काम नहीं है, और भय हो भी क्यों, हम भारत भूमि के सपूत हैं, हमको किसी का भय नहीं।

0: जब मन में देशभक्ति की भावना हिलोरे मार रही हो और दिलों में आजादी का जुनून हो, तो कोई भी देशभक्त रुक ही नहीं सकता। फिर सामने चाहे आंधी आए या फिर तूफान, वो देशभक्तों को रोक नहीं सकता। और क्रांतिकारियों के दल सारे भारत से गोवा पहुंचने लगे।
1: उधर पुर्तगालियों ने क्रांतिकारियों को रोकने के लिए सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए थे, और जैसे ही क्रांति दल वहां पहुंचा, उन्होंने उन पर गोलियों की बौछार कर दी और बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हो गए।
0: मगर अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख के भी क्रांतिकारियों का जोश कम नहीं होता था, बल्कि वो दुगने उत्साह से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते थे, क्योंकि ये फैसले की घड़ी थी, या तो मर जाओ या आगे बढ़ो।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने,

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। और आज इस कार्यक्रम में बात होगी महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। श्रोताओं नमस्कार। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में यह के निज नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयोग

0: तृप्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। श्रोताओं, ये पंक्तियां हैं महान राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की, जो हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया और इस तरह ब्रजभाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।
1: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के प्रखर नक्षत्र और माँ भारती के वरद पुत्र मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्याबाई था। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। माता पिता दोनों ही परम वैष्णव थे। मैथिली शरण जी के पिता एक निष्ठावान प्रसिद्ध राम भक्त थे। राम भक्ति और काव्य रचना मैथिली शरण जी को विरासत में मिली थी।
0: मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा झांसी के राजकीय विद्यालय में हुई, किंतु उसमें उनका मन नहीं रमा और उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। तब पिता ने इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया था। इसी तरह उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रजभाषा में कविता रचना आरंभ कर दी।
1: काव्य लेखन की शुरुआत उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी कविताएं प्रकाशित करवा के की। इन्हीं पत्रिकाओं में से एक सरस्वती नाम की पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलती थी। उसमें मैथिली जी की कविताएं प्रकाशित होती थी। 1910 में उनका पहला प्रबंध काव्य रंग में भंग प्रकाशित हुआ। भारत भारती के प्रकाशन के साथ ही वे एक लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित हो गए। उन्होंने जयद्रथ वध काव्य संग्रह प्रकाशित किया। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाद वध और ब्रजांगना का अनुवाद भी किया।
0: मैथिली शरण गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक तरफ वैष्णव भावना से भरा था तो साथ ही जागरण और सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से जुड़ा भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालवीय मैथिली शरण जी के आदर्श रहे। महात्मा गांधी जी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पहले ही मैथिली शरण जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। अनग से पूर्व की रचनाओं में, विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वो गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बने रहे। सन 1936 में गांधी जी ने मैथिली काव्य मान ग्रंथ भेंट करते हुए मैथिली शरण जी को राष्ट्रकवि का संबोधन दिया।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकालने वाले निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी दोनों पक्के मित्र थे। उनके मिलने का स्थान प्रताप प्रेस ही रहा करता था। एक बार 1915 में मुंबई से लौटते हुए गणेश शंकर जी पहले पहल चिरगांव में मैथिली शरण जी के घर पहुंचे। भोजन में गणेश जी ने दाल रोटी खाने की इच्छा जाहिर की, जबकि मैथिली जी उन्हें साग पूड़ी खिलाने जा रहे थे। उनकी इच्छा का ध्यान रखते हुए उन्हें दाल रोटी परोसी गई। यहीं से दोनों की मित्रता पक्की हो गई और फिर मैथिली शरण जी हमेशा गणेश शंकर जी की पसंद का ध्यान रखने लगे। अपनी कलम के वार से दोनों साहित्यकार देश को आजादी दिलाने के प्रयास में लगे थे। दोनों महापुरुष विशाल हृदय की संवेदना वाले थे। उनके हृदय उदार थे। काव्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी से संपूर्ण देश में राष्ट्रभक्ति की भावना उन्होंने भर दी थी। राष्ट्र प्रेम की इस तेज धारा का प्रवाह बुंदेलखंड क्षेत्र के चिरगांव से कविता के माध्यम से हो रहा था। बाद में राष्ट्र प्रेम की इस धारा को देश

0: भर में प्रवाहित किया था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने।
1: जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पिताजी के आशीर्वाद से वो राष्ट्रकवि के सोपान तक पदासीन हुए। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें 2 बार राज्यसभा की सदस्यता प्रदान की। हिंदी में मैथिली शरण जी की काव्य साधना हमेशा स्मरणीय रहेगी। बुंदेलखंड में जन्म लेने के कारण मैथिली जी बोलचाल में बुंदेलखंडी भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। धोती और बंडी पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर एक संत के रूप में वो अपनी हवेली में बैठे रहा करते थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना से हिंदी को समृद्ध किया। मैथिली शरण जी के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भर गए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वास और झूठे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति के नवीनतम रूप की कामना करते थे।
0: मैथिली शरण गुप्त जी को काव्य क्षेत्र का शिरोमणि कहा जाता है। मैथिली शरण जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार भारत भारती है। भारत भारती सन 1914 में प्रकाशित हुआ। भारत भारती उन दिनों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र बन गई थी। इसमें उन्होंने समकालीन प्रश्न को मुखर करने का प्रयास किया है। इस काव्य पुस्तक में अपने देश के प्रति निष्ठा और प्रेम दर्शाया गया है। इस कृति में 3 खंडों में भारत के उत्थान पतन की कथा को अतीत, वर्तमान और भविष्य खंडों में चित्रित किया गया है। इसमें कवि ने परतंत्र देश के समकालीन राष्ट्र प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए देशवासियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया है, साथ ही साथ उनसे देशभक्ति और देश के उद्धार के पथ पर चलने का आह्वान किया है।
1: श्रोताओं, भारत भारती का अतीत खंड, ये भाग भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूरी तरह से विवश करता है। उस समय के दर्शन, धर्मकाल, प्राकृतिक संपदा, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था जैसे तत्वों को संक्षिप्त रूप में स्मरण करवाया गया है। निरपेक्षता का ध्यान रखते हुए निंदा और प्रशंसा की बातें बताई गई हैं। जैसे मुगल काल के कुछ क्रूर शासकों की निंदा हुई है, तो अकबर जैसे मुगल शासक का बखान भी हुआ है। अंग्रेजों की उनके आविष्कार और आधुनिकीकरण के प्रचार के कारण प्रशंसा भी हुई है। भारतवर्ष के दर्शन पर वे कहते हैं, पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है, गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, व्यास और कणाद है। नीति पर उनके द्विपद ऐसे हैं, सामान्य नीति समेत ऐसे राजनीतिक ग्रंथ हैं, संसार के हित जो प्रथम पुण्याचरण के पंथ है। और श्रोताओं, सूत्र ग्रंथ के संदर्भ में ऋषियों की विद्वता पर वो लिखते हैं, उन ऋषि गणों ने सूक्ष्मता से काम कितना है लिया, आश्चर्य है, घट में उन्होंने सिंधु को हे भर दिया।
0: श्रोताओं, अब बात करते हैं भारत भारती के वर्तमान खंड की। दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। अपनी हुई आत्मविस्मृति पर वे कहते हैं, हम आज क्या से क्या हुए, भूले हुए हैं हम इसे, है ध्यान अपने मान का, हम में बताओ अब किसे, पूर्वज हमारे कौन थे, हमको नहीं ये ज्ञान भी, है भार उनके नाम पर, दो अंजलि जलदान भी।
1: नैतिक और धार्मिक पतन के लिए मैथिली शरण जी ने उपदेशकों, संत महंतों और ब्राह्मणों की निष्क्रियता और मिथ्य व्यवहार को दोषी मान शब्द बाण चलाए। इस तरह कविवर की लेखनी सामाजिक दुर्दशा के मुख्य कारणों को खोज उनके सुधार की मांग करती है। हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की निष्क्रियता को उजागर करते हुए भी वर्तमान खंड आशा की गांठ को बांधे रखती है।
0: और अब बात करते हैं भारत भारती के भविष्य खंड की। अपने ज्ञान, विवेक और विचारों की सीमा को छूते हुए राष्ट्रकवि ने समस्या समाधान के हल खोजने और लोगों से उसके लिए आह्वान करने का भरसक प्रयास किया है। आर्य वंशज हिंदुओं को देश पुनर्स्थापना के लिए प्रेरित करते हुए वे कहते हैं, हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं, संसार में किस जाति के किस ठौर वैसे प्राप्त हैं, भव सिंधु में निज पूर्वजों के रीति से ही हम तरें, यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें।
1: पुस्तक की अंत की दो रचनाएं शुभकामना और विनय कवि की देशभक्ति की परिचायक है। तन में देश के प्रति श्रद्धा की ऊर्जा का संचार करने वाली ये दो रचनाएं किसी प्रार्थना से कम नहीं लगती। वो अमर लेखनी ईश्वर से प्रार्थना करती है, इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवन भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, जड़तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधा पूर्ण है, हे रंब अब अवलंब देकर विघ्न हर कहलाइए। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती काव्य संग्रह के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। भारत के राष्ट्रीय उत्थान में भारत भारती का योगदान अमिट है।
0: सन 1916-17 में मैथिली जी ने महाकाव्य साकेत का लेखन प्रारंभ किया। इसमें उन्होंने उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव को दूर किया है। उर्मिला के चरित्र के द्वारा मैथिली जी ने उस समय की स्त्रियों की दशा का सटीक चित्रण किया है। उर्मिला भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी है। रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के त्याग का वर्णन मिलता है, लेकिन उर्मिला के लिए बहुत कम पंक्तियां रची गई हैं, जबकि उनका त्याग भी विलक्षण है। पति लक्ष्मण भाई राम के साथ वनवास चले गए, तब 14 वर्ष उसने विरह की अग्नि में जलकर बिताए। मैथिली जी ने उस दर्द को महसूस करते हुए अपनी कल्पना शक्ति से यह मार्मिक रचना लिखी। इस रचना के द्वारा उन्होंने उपेक्षित और शोषित नारी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वे शोषण मुक्त समाज के पक्षधर हैं। उन्हें वही राम राज्य पसंद है जहां एक राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सभी सुखों का त्याग कर देता है।
1: साकेत में उर्मिला जी के विरह के दुखों का वर्णन करते हुए मैथिली शरण जी ने लिखा, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने तू वो हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिक अनी, ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगंबू सनी, तू ही उष्ण उसे रखेगी मेरी तपन मनी।
0: श्रोता 1931 में पंचवटी और साकेत छपकर आए। 1932 में यशोधरा का प्रकाशन हुआ। यशोधरा में उन्होंने लिखा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको ही अपनी पग बाधा ही पाते, मुझको उन्होंने बहुत माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते।
1: नारी सशक्तिकरण के अलावा मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के उत्थान और जन जागरण का स्वर प्रमुख होता है। भारत भारती के अलावा किसान, आर्य, जय भारत और मातृभूमि जैसी कविताओं में उनके देश और समाज के प्रति रुझान का साफ परिचय मिलता है। अपनी आर्य कविता संग्रह में उन्होंने लिखा है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन भारतवर्ष है, वो कौन भारतवर्ष है।
0: और श्रोताओं आइए अब बात करते हैं मैथिली शरण जी की मुख्य कृतियों की। 1910 में सबसे पहले आया जयद्रथ वध, फिर 1912 में उनकी अमर कृति भारत भारती, 1925 में पंचवटी, 1933 में साकेत, 1932 यशोधरा, 1957 विष्णुप्रिया, झनकार आया 1929 में जय भारत 1952, द्वापर 1936 और फिर कुणाल गीत, अजित, अर्जन और विसर्जन और काबा करबला। इन रचनाओं के साथ ही गुप्त जी ने कुछ मौलिक नाटक भी लिखे हैं, जैसे अनघ, चरणदास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय प्रतिरोध और विसर्जन।
1: उनकी कुछ अनुवाद की हुई कृतियां भी हैं। मैथिली शरण जी ने रुबाइयात उमर खय्याम और संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदता का अनुवाद भी किया। उन्हें कई सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले। 1936 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साकेत के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। 1946 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग में साहित्य वाचस्पति का सम्मान मिला। सन 1948 में लखनऊ विश्वविद्यालय से मानद डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया। हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1952 से 1964 तक वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। सन 1953 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1962 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। सन 1954 में मैथिली शरण जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
0: श्रोताओं, अपने इस साहित्यिक सफर के दौरान समृद्ध साहित्य का खजाना देकर 12 दिसंबर 1964 को चिरगांव में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना से हिंदी को समृद्ध किया। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंडकाव्य, काव्य गीत और नाटिकाएं लिखी। हिंदी कविता के इतिहास में मैथिली शरण जी का ये सबसे बड़ा योगदान है। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। साकेत में उर्मिला के दर्द को करुणा के साथ व्यक्त किया गया है कि इस करुण चित्रण को पढ़कर पाठक के मन में करुणा की ऐसी तरंग उठना अनिवार्य है कि आंखें बरबस ही नम हो जाएं और राष्ट्र कवि की साहित्यिक क्षमता को नमन कर उठें। कमल तुम्हारा दिन है और कुमुद यामिनी तुम्हारी है, कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान बारी है। धन्य कमल दिन जिसके, धन्य कुमुद रात साथ में जिसके, दिन और रात दोनों होते हैं, हाय हाथ में किसके।
1: श्रोताओं, महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को हम शत शत नमन करते हैं। और आइए अंत में हम आपको सुना रहे हैं उनकी ही एक कविता जो हमने अपने स्कूल के दिनों में बहुत मन लगाकर पढ़ी है। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में,
0: स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में,
1: पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों की नोकों से,
0: मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से,
1: पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना,
0: जिसके बाहर स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना,
1: जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है,
0: भोगी अनुगामी योगी सा बना दृष्टिगत होता है,
1: बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है,
0: जिसकी सेवा में रत इसका तन मन जीवन है।
1: श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, जो आज केंद्रित था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी पर। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने विवेकानंद के बचपन की बातें तथा उनके रायपुर प्रवास के दिनों के बारे में जाना। लगभग 1.5 वर्षों तक रायपुर में रहकर नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ परिवार के साथ कलकत्ता लौट आए। रायपुर में नरेंद्र के स्वास्थ्य में काफी सुधार आ गया था। वे स्वस्थ, सबल और हष्टपुष्ट हो गए थे। बुद्धि काफी बढ़ गई थी तथा आत्मसम्मान के प्रति वे सचेत हो गए थे। ज्ञान में भी वे अपने हम उम्र साथियों से काफी आगे बढ़ गए थे। परंतु दीर्घ काल तक विद्यालय में नियमित अध्ययन नहीं करने के कारण कलकत्ते में शिक्षक गण उन्हें 10वीं कक्षा में भर्ती करने को तैयार न थे। बाद में विशेष अनुमति के फलस्वरूप उन्हें उसी कक्षा में ले लिया गया। नरेंद्र मेधावी तो थे ही, अल्प समय में ही उन्होंने अनपढ़े विषयों को जान लिया और सन 1879 में प्रवेशिका परीक्षा दी। परीक्षा फल प्रकाशित होने पर सभी आश्चर्यचकित हो गए। नरेंद्र सिर्फ पास ही नहीं हुए बल्कि उस वर्ष विद्यालय से वे अकेले ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। इस सफलता के लिए उनके पिता ने उन्हें एक चांदी की घड़ी दी थी।
1: नरेंद्र शुद्ध किताबी कीड़ा नहीं होना चाहते थे। वे मनपसंद विषयों को अधिक समय देते। इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी, इसलिए मार्शमैन, एल्फिंस्टन आदि विद्वानों की भारतीय इतिहास की पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली। अंग्रेजी और बंगला साहित्य भी उन्होंने खूब पढ़ा, परंतु गणित उस ओर तो ध्यान ही नहीं देते थे। प्रवेशिका परीक्षा के मात्र 2 दिन पहले उन्होंने देखा कि रेखा गणित तो छुआ ही नहीं। तब सारी रात जाकर पढ़ने लगे और 24 घंटों में रेखा गणित की 4 पुस्तकें पढ़कर परीक्षा दे दी।
0: इन्हीं दिनों उन्होंने पुस्तक पढ़ने की एक नई रीति की खोज की। उन्होंने एक बार कहा था,
2: ऐसा अभ्यास हो गया था कि किसी पुस्तक को पंक्तिशः नहीं पढ़ने पर भी मैं उसे समझ लेता था। हर पैराग्राफ की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़कर ही उसका भाव ग्रहण कर लेता। ये शक्ति जब और बढ़ गई तब पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पृष्ठ की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़कर ही समझ लेता।
1: नरेंद्र बड़े ही साहसी और न्यायपरायण थे। कलकत्ते में उन दिनों रंगशालाओं का सूत्रपात हुआ था, जहां नरेंद्र प्रायः नाटक देखने जाया करते थे। एक बार की बात है, नरेंद्र एक रंगशाला में नाटक देख रहे थे। अचानक वहीं का एक चपरासी रंगमंच पर चढ़ाया और नाटक के बीच में ही एक अभिनेता को रोककर कहा,
3: यह आपकी गिरफ्तारी का वारंट है, आपको गिरफ्तार किया जाता है, अदालत का आदेश है, मेरे साथ चलिए।
0: अचानक इस रुकावट से सभी अभिनेता और दर्शक सकपका गए। नाटक रुक गया, नरेंद्र से रहा नहीं गया, वे गरज उठे,
4: स्टेज से बाहर निकल जाओ, जब तक नाटक खत्म ना हो बाहर खड़े रहो, इस तरह लोगों को तंग करने का क्या मतलब।
0: सभी दर्शकों ने उनका समर्थन करते हुए कहा, निरुपाय हो चपरासी बाहर चला गया। सभी ने नरेंद्र की पीठ थपथपाई।
5: वाह नरेंद्र, बहुत अच्छी बात, अगर तुम नहीं होते तो आज का नाटक बंद ही हो जाता।
0: नाटक फिर से शुरू हुआ। विद्यालय में पढ़ते समय ही नरेंद्र वक्तत्व कला में पारंगत हो गए थे। एक बार मेट्रोपॉलिटन स्कूल में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होना था। उसी दिन एक प्रिय शिक्षक का विदाई समारोह भी होना था। सभी छात्रों ने मांग की कि नरेंद्र ही छात्रों की ओर से विदाई भाषण देगा और वो भी अंग्रेजी में।
1: नरेंद्र उन दिनों अंग्रेजी जानते तो थे, पर दोस्तों के साथ बातें करना और मंच पर भाषण देना अलग बात थी। उस अनुष्ठान का समापतित्व कर रहे थे श्री सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, जो अपने भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। नरेंद्र राजी हो गए और निर्भीक होकर आधे घंटे तक अपने प्रिय शिक्षण की विदाई पर भाषण दिया कि उनके स्थानांतरण से छात्रगण कितने दुखी हैं और विद्यालय की कितनी क्षति हुई। सभापति महोदय ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। बाद में एक बार उन्होंने नरेंद्र के लिए कहा था कि भारत में मैंने जितने वक्ताओं को सुना है उनमें नरेंद्र सर्वोत्तम है।
0: सिर्फ भाषण कला ही नहीं, वाद विवाद में भी वे निपुण थे। कहानी सुनाना, सहपाठियों को विभिन्न विषय आसानी से समझा देना, किसी भी तर्क सभा या विचार विमर्श में भाग लेना उनके लिए बहुत ही सामान्य बात थी। उनकी ईश्वर प्रदत्त सुंदर आकृति, गंभीर आवाज, सुमधुर संगीत और काव्य पाठ उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देते थे।
1: आइए अब उनकी संगीत चर्चा के विषय में कुछ जानें। स्वामी विवेकानंद एक मेधावी सन्यासी, एक महान सुधारक, एक उत्साही देशभक्त, एक प्रचंड वक्ता और एक सुयोग्य संगठक के रूप में अपने सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। परंतु बहुत लोगों को ये पता नहीं कि वे एक महान संगीतज्ञ भी थे।
0: पहले पहल उन्होंने अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा लेना शुरू की। खासकर संगीत प्रेमी विश्वनाथ जब रायपुर में थे, तब उन्होंने नरेंद्र को अपने पास पाकर कई प्रकार के गाने सिखाए। कार्यवश जब विश्वनाथ पश्चिमी भारत में थे, तब ठुमरी, टप्पा, गजल आदि उन्होंने सीखे थे, तथा मौका मिलते ही अपने पुत्र को भी इन सब में उत्साहित और प्रवीण कर दिया था। बाद में उस्ताद से नरेंद्रनाथ ने संगीत विद्या शास्त्रीय नियम के अनुसार सीखी थी। उन्होंने वेणी उस्ताद या वेणी माधव अधिकारी महोदय से संगीत की शिक्षा पाई थी। उस्ताद अहमद खान साहब से उन्होंने ध्रुपद व ख्याल सीखा और ब्रह्म समाज के एक सदस्य श्री काशी घोषाल से उन्होंने इसराज एवं मृदंग सीखा। दूसरे शिक्षकों से उन्होंने तबला और सितार भी सीखा था।
1: परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी की एकनाथ पंडित नामक एक वरिष्ठ संगीतज्ञ से मुलाकात हुई। पंडित जी ध्रुपद गायक थे। स्वामी जी के गाने के साथ स्वामी जी मृदंग पर संगत करने लगे। स्वामी जी के इस मृदंग वादन से गायक और श्रोता पूर्णतः संतुष्ट हुए, और जब सबको पता चला कि वे स्वयं भी अच्छे गायक हैं, तो लोगों ने उनसे गाने का अनुरोध किया। वे तानपुरा उठाकर ध्रुपद का आलाप लेने लगे। जब वे गीत के लय पर आए तो कोई भी मृदंग पर संगत नहीं कर पाया। सहसा उन्होंने तानपुरा एकनाथ पंडित के हाथ में सौंपते हुए मृदंग उठा लिया और स्वयं ही अपनी संगत करने लगे। इस अद्भुत घटना पर विस्मित होकर पंडित जी ने कहा था, स्वामी जी आप केवल गायक ही नहीं नायक भी हैं।
0: नायक की उपाधि ऐसे संगीतज्ञ को दी जाती है जिसमें सफल प्रदर्शन, संगीत रचना की क्षमता, संगीत शास्त्रों का ज्ञान और श्रोताओं को अभिभूत करने की क्षमता हो। जानकारों को मालूम है कि ध्रुपद गायन जिसमें षट प्राण और षट संगत लगते हैं, उसके साथ मृदंग से स्वयं ही संगत कर पाना प्रायः असंभव सा है। इन दोनों को एक साथ अकेले ही सफलतापूर्वक कर दिखाना एक अति मानवीय कार्य है।
1: उनके समकालीन बंगाल के संगीतज्ञों में प्रमुख थे रविंद्रनाथ ठाकुर, शैलोक्यनाथ सान्याल और द्विजेंद्रनाथ ठाकुर। स्वामी जी ने सुव्यवस्थित ढंग से ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन और टप्पा का अध्ययन किया था। वे एक रचनाकार भी थे। उन्होंने संस्कृत, बंगला और हिंदी में अनेक गीतों की रचना की थी और उन्हें विभिन्न शास्त्रीय रागों एवं तालों में निबद्ध भी किया था, जिनमें से सबसे प्रमुख है खंडन भव बंधन, जो राग यमन और ताल चौताल में है। यही भजन आज भी रामकृष्ण आश्रम के सभी केंद्रों में गाई जाने वाली दैनिक प्रार्थना है।

0: गायन के सभी अंगों में ध्रुपद उनका सबसे प्रिय था। वे कहा करते थे,
1: ख्याल टप्पा बंद करके ध्रुपद गाना सुनने का अभ्यास लोगों को कराना होगा। वैदिक छंदों के उच्चारण से देश में प्राण संचार कर देना होगा।
0: वे गायन के बारे में और भी बहुत कुछ कहा करते थे। गायन में भावों के उपयोग को वे श्रेष्ठ मानते थे, ये एक पूर्व वर्णित प्रसंग में आप जान चुके हैं। वे कहते थे,
1: भाई ध्रुपद और ख्याल गायन एक विज्ञान है, परंतु भजन, कीर्तन, माथुर और विरह तथा ऐसी अन्य रचनाओं में सच्चा संगीत निहित है, क्योंकि उनमें भाव है। भाव ही संगीत की आत्मा है, रहस्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल भाव मात्र ही संगीत है, पर ऐसी बात नहीं। दूसरी ओर भाव विहीन परंतु संगीत के व्याकरण शास्त्र पर आधारित शब्दों की कसरत भी संगीत नहीं है। लोक संगीत की मधुरता, शास्त्रीय संगीत का विज्ञान और कीर्तन का भाव, इन्हें मिलाने से ही आदर्श संगीत की सृष्टि होगी।
2: स्वरचिन्ह और श्रुतियों के बारे में उनका कहना था,
1: जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं, उन्हें तो टप्पा कर्कश ही लगता है। क्या आप सोचते हैं कि टप्पा को नाक से गाते हुए बिजली के समान एक सुर से दूसरे सुर दौड़ना कोई उत्कृष्ट संगीत है? नहीं, जब तक प्रत्येक सुर में ठहराव ना हो, संगीत की सृष्टि नहीं हो सकती। तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक स्वर के पीछे दूसरा स्वर इतनी द्रुत गति से आता है तो केवल संगीत की सुषमा ही नष्ट नहीं होती, वरन एक प्रकार का बेसुरापन पैदा हो जाता है।
2: स्वामी जी को पाश्चात्य संगीत के बारे में भी अच्छा ज्ञान था। उसमें गहराई तक बैठने के बाद उन्होंने उसके बारे में उच्च धारणा बना ली थी। उन्होंने कहा था,
1: जब मैंने पाश्चात्य संगीत को ध्यान पूर्वक सुनना शुरू किया और उसके शास्त्रीय पक्ष का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सभी कलाओं का यही हाल है, पर हमारे संगीत में स्वरों का आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ता है। फ्रांस के लोगों ने भारतीय संगीत के इस गुण को पहचाना और अपने संगीत में अपनाने का प्रयत्न किया। उनको देखकर यूरोप भर में इसका अनुसरण होने लगा।
0: विवेकानंद केवल संगीतज्ञ ही नहीं थे, वे बहुत उच्च कोटि के कवि भी थे। वे भाव और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल कर कविता लिखा करते थे। यथा स्थान हम आपको उनके कवि रूप का परिचय देंगे।

0: सन 1879 में प्रवेशिका परीक्षा में पास होकर नरेंद्रनाथ जब कॉलेज में भर्ती हुए उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। परीक्षा की तैयारी करते समय 3 वर्षों का पाठ केवल 1 वर्ष में ही समाप्त कर लेने पर उनको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा था। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन तो करने लगे पर मलेरिया से पीड़ित होकर उन्हें उस वर्ष के लिए कॉलेज छोड़ना पड़ा। दूसरे वर्ष वे जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में भर्ती होकर एफए पढ़ने लगे।
1: जिस समय नरेंद्रनाथ एकाग्र चित्त से दर्शन शास्त्र या उच्च साहित्य संबंधी पुस्तक पढ़ते होते उस समय वे एक दूसरे ही व्यक्ति प्रतीत होते थे। एफए परीक्षा के पहले ही उन्होंने मिल आदि पाश्चात्य न्याय शास्त्रविदों की पुस्तकों को पढ़ लिया था और ह्यूम व हर्बर्ट स्पेंसर आदि के दार्शनिक ग्रंथों को भी आत्मसात कर लिया था।
0: उस कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी साहब बड़े पंडित कवि और दार्शनिक थे। नरेंद्रनाथ और ब्रजेंद्रनाथ आदि कुछ प्रतिभाशाली छात्र उनके विशेष प्रिय थे। वे उनके पास नियमित रूप से दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते थे। हेस्टी साहब एक दिन कॉलेज में नरेंद्र का दार्शनिक विश्लेषण करते सुन बहुत संतुष्ट हुए और कहा, नरेंद्र दर्शन शास्त्र के अति उत्तम छात्र हैं। इंग्लैंड और जर्मनी के सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा एक भी छात्र नहीं जो इनके समान मेधावी हो।
1: पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन शास्त्रों की आलोचना ने नरेंद्र के हृदय में एक विराट द्वंद्व पैदा कर दिया। उनका

0: काम नहीं चलेगा, परंतु उपाय क्या है?
1: अतः वे सत्य की खोज में अपने मन को केवल दर्शन, साहित्य, विज्ञान एवं इतिहास की चर्चा में ना लगाकर जीते जागते आदर्श की खोज करने लगे। नरेंद्रनाथ सत्य की उपलब्धि की प्रेरणा से ही ब्राह्म समाज में गए थे। वे साधारण ब्राह्म समाज के सदस्य तो बने, पर कुछ बंधे हुए मतवाद और नियमित उपासना आदि द्वारा उनकी आध्यात्मिक तृष्णा शांत नहीं हुई। ब्राह्म समाज में सम्मिलित होने के पहले ही नरेंद्र राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पुस्तकों तथा लेखों से परिचित हो चुके थे। वे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र के पास भी आलोचना के लिए जाया करते थे, परंतु उपासना के विषय में वे समाज के दूसरे व्यक्तियों से सहमत न हो सके। बुद्धिमान तथा दृढ़ निश्चय नरेंद्र दूसरों के विचार को बिना स्वयं विचार किए मान लेने वालों में से नहीं थे। लोगों के द्वारा आपत्ति करने पर वे पाश्चात्य दार्शनिकों की युक्तियों को समझते और लोगों को हार माननी पड़ती।
0: रविवार को अक्सर नरेंद्र उपासना के समय ब्रह्म संगीत गाकर सदस्यों को प्रसन्न करते थे, परंतु उनका वैराग्यशील मन ब्रह्म समाज में त्याग और धार्मिक बुद्धि की कमी देखकर सिर्फ उनकी उपासना से तृप्त न होता था।
1: उन दिनों नरेंद्रनाथ महर्षि देवेंद्रनाथ के कहने पर अधिक से अधिक समय ध्यान करते थे। यही नहीं, उन्होंने निरामिष भोजन भी शुरू कर दिया। जमीन पर सोते थे, सफेद धोती और चादर पहनते थे, यानी शारीरिक कठोरता का पालन करते थे। उन्हीं दिनों उन्होंने पास ही में अपनी नानी के घर में ऊपर दो मंजिले पर एकांत में एक कमरे की इच्छा जाहिर की। इस पर किसी ने आपत्ति भी नहीं की। वे उस कमरे में अध्ययन, संगीत और शेष समय साधना, भजन और ध्यान किया करते थे।
0: इस तरह दिन बीतते गए, पर उनकी सत्य की खोज पूरी नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई। अतः वे इस निष्कर्ष पर आए कि सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की शरण चाहिए जिसने स्वयं उस सत्य का साक्षात्कार किया हो। उन्होंने उसी समय प्रण कर लिया था कि या तो इस जीवन में सत्य को प्राप्त करना होगा, नहीं तो प्राण त्याग देंगे।
1: पाश्चात्य दार्शनिकों के विचारधाराओं से आलोकित तथा युक्तिवादी ब्राह्म समाज के सदस्य होते हुए भी वे सद्गुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठे।
0: कलकत्ते के शिमला मोहल्ले में सुरेंद्र नाथ मित्र महोदय एक दिन अपने घर पर श्री राम कृष्ण देव को ले आए। उस दिन एक उत्सव का आयोजन किया गया, काफी लोग उसमें शामिल हुए। उन्हें रामकृष्ण देव का दर्शन जो करना था।
1: उस दिन किसी अच्छे गायक के न मिलने पर मित्र महोदय पड़ोस से नरेंद्र को बुला लाए। सन 1881 के नवंबर मास में श्री रामकृष्ण देव के साथ नरेंद्र नाथ की पहली मुलाकात हुई। उस दिन वे नरेंद्र का गाना सुनकर अति संतुष्ट हुए और बड़े आग्रह के साथ पूछताछ करके उन्होंने नरेंद्र से एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में आने का अनुरोध भी किया।
0: इस बीच एफए परीक्षा के लिए व्यस्त रहने के कारण नरेंद्र दक्षिणेश्वर जाने की बात भूल गए। परीक्षा समाप्त होने पर उनके पिता उनसे विवाह के लिए आग्रह करने लगे, क्योंकि उनके भावी श्वसुर ने दहेज के रूप में 10,000 रुपए देने का वचन दिया था। पर नरेंद्र तो बचपन से ही विवाह के घोर विरोधी थे। किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना विश्वनाथ बाबू के स्वभाव में न था। उन्होंने स्वयं पुत्र से और कुछ नहीं कहा, पर रिश्तेदारों के द्वारा नरेंद्र को मनाने का प्रयत्न किया।
2: नरेंद्र, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब उचित समय है कि तुम विवाह करके अपना घर बचा लो।
3: बिली बेटा, तेरे पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं।
4: माँ, मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। आपको तो पता है मैंने बचपन में ही प्रण कर लिया था कि विवाह नहीं करूंगा।
3: बचपन की बातें छोड़, अब तो तू बड़ा हो गया है।
4: माफ करना माँ, मुझे अपनी राह पर अकेले ही चलना है। आप लोग उस यात्रा को मत रोकिए। मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ, मुझे अकेले ही सत्य की खोज करने दीजिए।
0: माता पिता दुखी मन से चुप हो गए। प्रसिद्ध डॉक्टर रामचंद्र दत्त उनके रिश्तेदार थे। उन्होंने नरेंद्र से कहा,
5: अगर वास्तव में सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो ब्रह्म समाज आदि स्थानों में ना भटक कर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें सही रास्ता दिखा देंगे।
0: नरेंद्र न जाने क्या सोचकर सहमत हुए और थोड़े दिनों बाद ही दो चार दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। उस दिन नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल गई।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।